ये आकाशवाणी जोधपुर की प्रसारण सेवा का FM सन सिटी चैनल है। FM बैंड 102.1 MHz पर। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की 13वीं तिथि, तदनुसार 4 जुलाई 2026। सवेरे के 5:57 हो रहे हैं। हमारी आज की ये सभा अब आरंभ होती है।

0: वह अब आप आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचारों का बुलेटिन सुनेंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज।
2: प्राइम मिनिस्टर विल आल्सो बी विजिटिंग
3: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे और संशोधित उड़ान योजना की शुरुआत करेंगे। इसके बाद वे बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे। वे चुरू सादुलपुर और चुरू रतनगढ़ रेल लाइन दोहरीकरण परियोजनाओं तथा राष्ट्रीय राजमार्ग 125 ए के 4 लेन वाले हिस्से को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में चयनित लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री गुजरात के सानंद जाएंगे, जहां वे भारत सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत सीजी सेमी के सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। ये देश की शुरुआती आधुनिक सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण इकाइयों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया की यात्रा पर रहेंगे। उन्होंने कहा कि यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
1: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
0: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। गृहमंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को किसानों को उपयुक्त फसलों की बुआई के बारे में परामर्श देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। केंद्रीय गृह सचिव और केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण सचिव सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस साल $1 ट्रिलियन की निर्यात लक्ष्य को हासिल करेगा। पहली तिमाही में ही सालाना निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% पूरा हो चुका है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि इसके लिए वस्तुओं का निर्यात $440 अरब से बढ़ाकर करीब $530 अरब और सेवाओं का निर्यात $421 अरब से बढ़ाकर करीब $470 अरब करना होगा। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तुओं के निर्यात में 15% और सेवाओं के निर्यात में लगभग 10-11% की वृद्धि की उम्मीद है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब तक 1,02,000 से ज्यादा गणना प्रपत्र डिजिटाइज किए जा चुके हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत लगभग 33,14,000 फॉर्म बांटे गए हैं। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर के बीच दर्ज की जा सकती हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को जारी की जाएगी। मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि E20 यानी 20% एथेनॉल मिले ईंधन से गाड़ियों का माइलेज कम हो जाता है, जो कि गलत और भ्रामक है। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून और सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर परीक्षण किए। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका के मियामी गार्डन्स में खेले जा रहे राउंड ऑफ 32 के मैच में अर्जेंटीना और कार्बो वर्डे 3-2 गोल की बराबरी पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

जी आकाशवाणी जोधपुर की प्रसारण सेवा का एफएम सेंसिटिव चैनल है। अब आपको सुनाते हैं चिंतन और कार्यक्रम वंदनवार, जिसे हम रिले कर रहे हैं हमारे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा से।

प्रस्तुत है भारतीय संगीत का कार्यक्रम वंदनवार, प्रस्तुत है चिंतन। प्रसिद्ध कवि विलियम वर्ड्सवर्थ का कथन है, प्रकृति ने कभी कभी उस दिल को नहीं दुखाया जिसने उससे प्यार किया। हमें इससे सीखना यह है कि प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रहना चाहिए, सदैव प्रकृति का सम्मान और प्रेम करना चाहिए। ये था आज का चिंतन। अब प्रस्तुत है भक्ति रचनाएं।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण, लीजिए सुनिए आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। अब से थोड़ी देर बाद यानी 6:35 पर सुनेगा श्री रामचरित मानस गान भाग 239। 6:45 पर सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम। संगीत सरिता कार्यक्रम में आज सुनिए श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका भाग 4। कलाकार हैं बांसुरी वादक पंडित रोनू मजूमदार, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। सात बजे से भूले बिसरे गीत 7:30 से हम हैं राही प्यार के। पर त्रिवेणी और 8:30 पर चित्रलोक कार्यक्रम। सुबह 9:30 पर आज के फनकार। आज का ये कार्यक्रम सुबह का केंद्रित होगा संगीतकार रामलाल पर, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। सुबह 10 पिटारा के अंतर्गत गीतों भरी कहानी। कहानी सुनहरी पूंछ वाला अमर पंछी, लेखक मनीष वैद्य, वाचक स्वर ममता सिंह का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह ने की। 11 चित्रपट संगीत 11:30 पर मैटनी शो। 12:05 पर यादों की महफिल। 1 सुरीला सफर। 2 त्रिवेणी सुनिएगा। 2:30 पर सदाबहार नगमे। 3 मन चाहे गीत। 3:30 पर नाट्य तरंग के अंतर्गत सुनिए नाटक। नाट्य तरंग में आज नाटक मालविकाग्निमित्र पहला भाग, इसका सुनिएगा मूल संस्कृत नाटक महाकवि कालिदास, हिंदी अनुवाद सीताराम चतुर्वेदी, रेडियो नाट्य रूपांतर एवं निर्देशन चिरंजीत। शाम 4 पिटारा के अंतर्गत बॉम्बे टॉकीज, गीतकार सुधाकर शर्मा से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का दूसरा भाग, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। 5:30 पर तराने नए पुराने। 6:35 पर भक्ति संगीत का कार्यक्रम संध्या रंजन। 6:45 पर संगीत सरिता। 7 विशेष जयमाला, मोहम्मद अजीज पर केंद्रित ये विशेष जयमाला कार्यक्रम सुनिएगा। पार्श्व गायक मोहम्मद अजीज पर केंद्रित ये कार्यक्रम 7 से विशेष जयमाला कार्यक्रम के अंतर्गत। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत जिज्ञासा। 8:00 में रात 8 सुनिए सुनो कहानी विश्वास का पहला भाग, मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी है, वाचन अमरकांत दुबे, प्रस्तुति हर्षवर्धन गवई। 8:15 पर चित्रलोक। 9 आपके लिए 9:30 पर आज के फनकार। रात 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा गीतकार भरत व्यास पर, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। 10 छाए

गीत प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी 10:30 पर ढलती जाए रात 11 बजे सुनिए चित्रपट संगीत। आप सुन रहे थे आज दिनभर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। अब प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान भाग 239।

भरत के पीछे पीछे अयोध्या और जनकपुर से आए स्वजनों के विदा होने का करुण अवसर है। सबको विदा करने का अच्छा दिन है, ऐसा जानकर भी श्री राम को उनसे कुछ कह सकने में संकोच होता है। उपस्थित समाज उनके इस शील के सम्मुख नतमस्तक है। श्री राम की मनोदशा से भरत को अपनी उद्गार निवेदित करने की प्रेरणा मिलती है। अग्रज ने उनकी हर रुचि को मान दिया है, किंतु भरत ये सोचकर व्यथित हैं कि उनके कारण श्री राम, लक्ष्मण तथा जनक नंदिनी ने कितने संताप और कष्ट सहे हैं। अतः अब वो आज्ञा मांगते हैं और जिस प्रकार के आचरण से उन्हें श्री राम के चरणों के दर्शन फिर प्राप्त हों, ऐसी सीख की याचना भी करते हैं।

0: श्रोताओं नमस्कार, संगीत सरिता कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित रोनू मजुमदार। आपसे बातचीत कर रही हैं ममता सिंह। लीजिए आज सुनिए इस श्रृंखला की चौथी कड़ी।
1: श्रोताओं नमस्कार, आज की चौथी कड़ी लेकर हम फिर उपस्थित हैं। रोनूदा, हमें बताइए हमारे श्रोताओं को कि आपने बांसुरी में कुछ रागों का समावेश किया, वो किन किन रागों का समावेश किया है?
2: बांसुरी में ज्यादातर सुनाई पड़ता था झिंझोटी, यमन, बागेश्वरी, हंसध्वनि और कुछ रागों को ऐसे माना जाता था कि अरे ये तो गाने का राग है। वो बात मुझे हजम नहीं होती थी
1: जी,
2: क्योंकि मैंने गाना सीखा है
1: जी।
2: तो दरबारी कानाड़ा से मैं बहुत प्रभावित था और ऐसी दरबारी मैंने पंडित रविशंकर जी से सुनी कि उनके सितार में और विलायत खान साहब, इन दोनों का अंग अलग है मगर दोनों अलग ढंग से उसमें गहराई लाते हैं। विलायत खान साहब भी, पंडित रविशंकर जी भी
1: जी।
2: और अमीर खान साहब, ये लोग दरबारी के बादशाह हैं। तो दरबारी में मैंने मेहनत करना शुरू किया। मुझे ये कहना है अपने श्रोताओं से कि दरबारी को कण उपकण से दरबारी खड़ा नहीं होगा। दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए तो वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया। तो दरबारी कानाड़ा एक राग है, एक राग है जो भीम पलासी से भी पुराना है, राग भीम
1: जी जी,
2: वो भी मैंने बचाया। भीम का तो मेरा रिवरी एल्बम ही है
1: जी।
2: और बागेश्वरी बहुत बसता था मगर रागेश्वरी नहीं बसता था, रागेश्वरी भी मैंने पॉपुलर किया
1: जी।
2: और नट भैरव और ये सब लोग बजाते थे मगर शुद्ध भैरव कम बसता था
1: जी।
2: तो सेक्रेट स्पेस करके मेरा एक एल्बम है जो कि लंदन से रिलीज हुआ, उसमें शुद्ध भैरव है
1: जी।
2: और चौताल में मैंने बजाया, पखावज की तरह बड़े मुंह का तबला लेके उसके साथ मैंने बजाया। कई प्रयोग मैंने किए
1: जी।
2: और बांसुरी में डेप्थ की कमी दिखती थी, हल्का हल्का लगता था
1: जी जी।
2: और जैसे ही रुद्रवीणा आए तो लगता था बांसुरी तो ठहर ही नहीं रहा है उसके सामने
1: जी।
2: तो वो क्यों नहीं ठहर रहा है, उस पर मैंने मीड़ घसीट और घसीट के साथ साथ आंदोलन
1: जी जी।
2: तो मैं आपको थोड़ा सा दरबारी कानाड़ा मैं बजा के सुना रहा हूँ। और सीधी साधी बंदिश जो बच्चे फिफ्थ ईयर सिक्स्थ ईयर में सीखते हैं, जब वो संगीत अलंकार की तरफ जाते हैं तो दरबारी भी आ जाता है। विशारद के आगे जब जाने लगते हैं तो दरबारी आ जाता है। तो मैं दरबारी में जो गुरु कृपा करे
1: जी,
2: थोड़ा सा आलाप सुनिए आप, सिर्फ दो तीन फ्रेज
1: जी। हम तो ये कहेंगे पंडित जी कि आप दरबारी कानाड़ा के साथ साथ राग भीम की भी प्रस्तुति आप दें।
2: बहुत सुंदर। मैं भीम और गावती एक ही स्वर है मगर उसको भीम क्यों कहा जाता है वो बताऊंगा
1: जी।
2: गुणी लोग ऐसा मानते हैं कि राग भीम से ही भीम पलासी निकला
1: जी जी। तो पहले दरबारी कानाड़ा,
2: पहले मैं दरबारी कानाड़ा सुना रहा हूँ।

0: वाह बहुत सुंदर।
1: आप देखिए भीम को देखिए
0: जी,
1: गावती पे पहले मैं बजा रहा हूँ
0: जी।
1: गावती में सामा ज्यादा मध्यम को प्रधान किया जाता है।

0: और भीम में ऊपर में जाके कोमल गाल लगता है।
1: तो इसमें तीव्र मध्यम था कि मध्यम था?
0: शुद्ध मध्यम,
1: शुद्ध मध्यम।
0: दोनों में शुद्ध मध्यम।
1: अच्छा,
0: गावती में भी और भीम में भी।
1: जी जी,
0: भीम में बस थोड़ा सा फर्क है, तार सप्तक में जब कोमल गाल लगेगा।

0: वाह अद्भुत था। रुनुदा यहाँ पर एक फिल्मी गाना हमें याद आ रहा है, फिल्म बैजू बावरा का, तो क्या ये गाना सुनवाते हैं अपने श्रोताओं को जिसमें बांसुरी?
1: अवश्य। इस गाने को रफी साहब ने ऐसा गाया कि कहते हैं ना कि भूतों न भविष्यति
0: जी,
1: न कोई पहले ऐसा गाया न कोई ऐसा गा सकेगा
0: जी।
1: शायद ईश्वर के दरबार में एक ही मोहम्मद रफी उनको बनाना था, एक ही किशोर कुमार बनाना था, एक ही मुकेश बनाना था, तो वो सुनवा देते हैं। दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे मेरे नाले
0: जी।

0: नाले।
1: फिल्म बैजू बावरा का ये गाना था मोहम्मद रफी की आवाज में। और अब इस कड़ी को समेटने का वक्त आ गया है, तो इस कड़ी को यहीं समेटते हैं। श्रोताओं से कहते हैं नमस्कार।
2: नमस्कार।
3: शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका। श्रोताओं, संगीत सरिता कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की चौथी कड़ी। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित रोनू मजुमदार। आपसे बातचीत की है ममता सिंह ने। बांसुरी संगत कल्पेश सांचला की और तबला संगति अजीत पाठक की। श्रोताओं, इस श्रृंखला के लिए तकनीकी सहयोगी किरण बंग, संपादन सहयोगी झरना सोलंकी और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। कल उपस्थित होंगे इस श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ। अनुमति दीजिए, नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम सुनिएगा थोड़ी ही देर में।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी सुनने वालों को सविता सिंह का नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं मुकेश के आवाज में, मुकेश के गाए इस गीत से। रचना है भरत व्यास की, संगीतकार आनंद सागर, फिल्म का नाम आरोही।

मुकेश और बेला सावेर की आवाजों में आप सुन रहे थे आरोही फिल्म का गीत। रचना भरत व्यास की थी, संगीतकार आनंद सागर। श्रोताओं, भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में आज हम याद कर रहे हैं सुप्रसिद्ध गीतकार भरत व्यास को। लीजिए अब सुनिए भरत व्यास का लिखा ये गाना, जिसे लता मंगेशकर ने गाया है। अमर ज्योति फिल्म का ये गीत है, रचना भरत व्यास की और वसंत देसाई संगीतकार हैं।

0: लता मंगेशकर की आवाज में अमर ज्योति फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। रचना भरत व्यास की थी, संगीतकार थे वसंत देसाई।
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
2: नसीब
1: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: मैं और हिमेश भाई कहीं टाउन जा रहे थे तो मेरे को हिमेश भाई बोले, सर कोई ऐसा वर्ड बताओ जो अभी तक नहीं आया हो। मैं, ऐसा कोई वर्ड नहीं है। फिर अचानक मुझे आया, हाँ सर एक वर्ड है, बर्दाश्त। तो सर ये बनाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकता, दूसरी लाइन की अब दूर नहीं रह सकता। तो उन्होंने तीसरी खुद कह दी, तेरे बिन, और हमारा गाना बना।
2: बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब दूर नहीं रह सकता, एक दिन तेरे बिन।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 4 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारत।

बेदर्द जमाना क्या जाने, इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजों में आप सुन रहे थे। इसे भी लिखा था भरत व्यास ने। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। इस कार्यक्रम में एक बहुत छोटा सा अंतर

0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।

0: दो आंखें बारह हाथ, इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर की आवाज थी, रचना भरत व्यास की थी, संगीतकार थे वसंत देसाई।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है।
3: राजस्थान की

0: भूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 135,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।

लता मंगेशकर, महेंद्र कपूर की आवाजों में भारत मिलाप फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, जिसे भरत व्यास ने लिखा था और वसंत देसाई ने इस गीत की धुन बनाई थी। आज भोले बिसरे गीत कार्यक्रम में हम याद कर रहे हैं गीतकार भरत व्यास को। उन्होंने अपने गीतों में भारतीय संस्कृति, अध्यात्म और मानवीय संवेदनाओं को अत्यंत सुंदर भाव और शब्द दिए हैं। लीजिए सुनिए एक और गाना दो दोस्त फिल्म से। आवाज आशा भोसले की है।

घटलाई क्या छुपा के, घटलाई क्या छुपा के, बिन पारे बदरा के कैसी बरस गई बरसात, ये तो बतला।

बूंद जो बन गई मोती, इस फिल्म का गीत मुकेश और साथियों की आवाजों में आप सुन रहे थे। रचना थी भरत व्यास की, संगीतकार सतीश पाटिया। इस कहानी के पहले आपने सुना था दो दोस्त फिल्म का गीत, आशा भोसले की आवाज थी, रचना भरत व्यास की थी और संगीतकार थे एस मोहिंदर। और मुकेश के गाए इसी गीत के साथ ही आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है।

ये विविध भारती है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। हम है राही प्यार के इस कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

हम हैं राही प्यार के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी सुनने वालों को नमस्कार। सविता सिंह का

कल्पना के घन बरसते, लता मंगेशकर महेंद्र कपूर का गाया ये गीत आपने सुना। ऐसे भरत व्यास ने लिखा था और वसंत देसाई ने इस गीत की धुन बनाई थी। हम हैं राही प्यार के, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से।

0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।

0: कलाकार भरत व्यास का लिखा गीत आप सुन रहे थे लाल किला फिल्म से। आवाजें मोहम्मद रफी लता मंगेशकर की थी। संगीतकार थे SN त्रिपाठी।
1: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
2: मैं और हिमेश भाई कहीं टाउन जा रहे थे तो मेरे को हिमेश भाई बोले, सर कोई ऐसा वर्ड बताओ जो अभी तक नहीं आया हो। मैं ऐसा कोई वर्ड नहीं है। फिर अचानक मुझे आया, हाँ सर एक वर्ड है, बर्दाश्त। तो सर ये बनाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकता। दूसरी लाइन की अब दूर नहीं रह सकता। फिर उन्होंने तीसरी खुद कह दी, तेरे बिन, और हमारा गाना बन गया।
3: बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब दूर नहीं रह सकता, एक बिन तेरे बिन।
1: जरूर सुनिएगा।

0: बॉम्बे टॉकीज में 4 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: जिनके बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति

0: किया।
1: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।
2: प्यार की जीत फिल्म का गीत, प्यार की प्यास फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर, तलत महमूद की आवाज़ें थी। भरत व्यास ने इसे लिखा था और बसंत देसाई ने धुन बनाई थी। हम है राही प्यार के, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर। इस कार्यक्रम में एक छोटा सा अंतराल लेते हैं, अंतराल के बाद फिर से हाजिर होंगे।

0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।

हमें रहे प्यार के इस कार्यक्रम में आज हम श्रद्धा पूर्वक नमन कर रहे हैं गीतकार भरत व्यास को। सारंगा फिल्म का गीत लता मंगेशकर मुकेश की आवाजों में आप सुन रहे थे। इसे भरत व्यास ने इस गीत को लिखा था और सरदार मलिक ने इस गीत की धुन बनाई थी। ये है श्रवण कुमार फिल्म का गीत।

0: श्रवण कुमार फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाजें थीं महेंद्र कपूर, सुमन कल्याणपुर की, रचना भरत व्यास की थी, संगीतकार थे शिवराम।
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
2: नसीब
1: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
3: अपनी आप रातों में चिलमने सरकती है।
2: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
4: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
2: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
4: तेरा जवाब नहीं,
2: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
4: प्यार का राग सुनो रे।
2: बजता है छाया गीत विविध भारती से,
4: सदा रही है सदा रहेगी।
2: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

सिंघल द्वीप की सुंदरी इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाज़ें लता मंगेशकर मुकेश की थी। इस गीत को भरत व्यास ने लिखा था और इस गीत की धुन एसएन त्रिपाठी ने बनाई थी। इसी गीत के साथ ही आज का हम है राही प्यार के ये कार्यक्रम समाप्त करने की इजाजत दीजिए सविता सिंह को। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी जोधपुर की प्रसारण सेवा का एफएम सेंसिटी चैनल है। एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज पर सवेरे के 8 बजने को है। अब आप हिंदी में समाचार प्रभात सुनेंगे, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। बालोतरा में देश के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर का उद्घाटन करेंगे। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया। केंद्र ने सामान्य से कम वर्षा और अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में संभावित सूखे के हालात की समीक्षा की। मौसम विभाग ने गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप में म्यामी में हुए रोमांचक मुकाबले में अर्जेंटीना काबो वर्डे को 3-2 से हराकर अंतिम 16 में, मिस्र भी अंतिम 16 में पहुंचा। और मैनचेस्टर में दूसरे टी20 क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला

0: इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना से प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री जोधपुर में उन्नत उड़ान योजना का भी शुभारंभ करेंगे। इसके बाद श्री मोदी बालोतरा जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण सहित कई क्षेत्रों में फैली हुई हैं। प्रधानमंत्री बालोतरा के पचपदरा में भारत के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जो देश के ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।
1: रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स प्रदेश के पश्चिमी जिलों में निवेश, रोजगार और विकास के नए द्वार खोलेगा। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना एमएसएमई, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स व एग्री फिल्म्स जैसे उद्योगों को भी सशक्त करेगी, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण में उत्तर दक्षिण कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जो शहर में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। इस चरण से एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर संबंधित परिवहन साधनों एवं मेट्रो सुविधा का एकीकरण किया जाएगा, जिससे नागरिकों को सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
0: प्रधानमंत्री चूरू शार्दुलपुर और चूरू रतनगढ़ रेल दोहरीकरण परियोजनाओं और राष्ट्रीय राजधानी 125A जोधपुर रिंग रोड खंड 2 भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती किए गए लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। प्रधानमंत्री आज शाम गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां वे सानंद में सीजी सेमी आउटसोर्स सेमी कंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। ये उद्घाटन भारत के सेमी कंडक्टर विनिर्माण क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
2: सानंद में शुरू हो रही यह अत्याधुनिक सीजी सेमी ऑसेट सुविधा भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर निर्माण के मानचित्र पर एक भरोसेमंद केंद्र के रूप में स्थापित करेगी। पूरी क्षमता से शुरू होने के बाद इस संयंत्र से हर साल लगभग 5 अरब सेमीकंडक्टर चिप्स का उत्पादन किया जा सकेगा। यह प्लांट डिजाइनिंग, वेफर सॉर्टिंग से लेकर फाइनल टेस्टिंग तक की पूरी श्रृंखला को एक छत के नीचे उपलब्ध कराएगा। वर्तमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के कारण दुनिया भर में बढ़ रही उच्च स्तरीय मेमोरी और स्टोरेज सॉल्यूशंस की जरूरतों को पूरा करने में भी यह प्लांट अहम भूमिका निभाएगा। इसके साथ ही यहां निर्मित होने वाली चिप्स की विशेष रूप से ऑटोमोटिव, दूरसंचार, 5G और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे अग्रणी क्षेत्रों को आपूर्ति की जाएगी। अपर्णा खूट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: गुजरात में आतंकरोधी दस्ते एटीएस ने पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन्हें गुजरात और मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से गिरफ्तार किया गया। गुजरात एटीएस ने बताया कि आरोपी पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे और गुजरात में जैश ए मोहम्मद का नेटवर्क स्थापित करने और आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे थे। वे जैश ए मोहम्मद की विचारधारा का गुजराती में अनुवाद और प्रसार भी कर रहे थे। जांच में पता चला है कि पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन आरोपियों को वित्तीय सहायता भी पहुंचा रहा था। आरोपियों को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। गृहमंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा बैठक की। केंद्रीय गृह सचिव और केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण सचिव सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।
3: गृह मंत्री ने कहा कि सरकार अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को किसानों को उपयुक्त फसलों की बुवाई के बारे में परामर्श देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। श्री शाह ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को देश के सभी जल भंडारों की निगरानी करने तथा विद्युत मंत्रालय के सचिव को बिजली की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई का निर्देश भी दिया। श्री शाह ने कहा कि गृह मंत्रालय के अंतर मंत्रालय केंद्रीय दल को असम और अरुणाचल प्रदेश भेजा जाए, ताकि बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन किया जा सके। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से दुर्गा प्रसाद।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए

आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस साल $1 trillion के निर्यात लक्ष्य को हासिल कर लेगा। पहली तिमाही में ही सालाना निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% पूरा हो चुका है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि इसके लिए वस्तुओं का निर्यात $440 अरब से बढ़ाकर करीब $530 अरब और सेवाओं का निर्यात $421 अरब से बढ़ाकर करीब $470 अरब करना होगा। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तुओं के निर्यात में 15% और सेवाओं के निर्यात में लगभग 10-11% की वृद्धि की उम्मीद है। श्री गोयल ने कहा कि भारत ने वित्त वर्ष 2025-26 में $863 अरब का अब तक का सबसे अधिक निर्यात किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और फ्रांस के वित्त मंत्री होला लेस्क्योर ने कल फ्रांस में भारत फ्रांस आर्थिक और वित्तीय वार्ता की सह अध्यक्षता की। दोनों मंत्रियों ने भारत में आर्थिक विकास के लिए फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी के काम की महत्ता को स्वीकार करते हुए भविष्य की परियोजनाओं की संभावनाओं का स्वागत किया। दोनों मंत्रियों ने भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक, वित्तीय, तकनीकी, निवेश और व्यापार से जुड़े मामलों पर बातचीत के लिए इस आर्थिक और वित्तीय वार्ता को मुख्य मंच के तौर पर इस्तेमाल करने का संकल्प लिया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब तक 1,02,000 से ज्यादा गणना प्रपत्र डिजिटाइज किए जा चुके हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत लगभग 33,14,000 फॉर्म बांटे गए हैं। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर के बीच दर्ज कराए जा सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को जारी की जाएगी। मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज मध्य प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री कुमार आज इंदौर पहुंचेंगे, जहां वे लता मंगेशकर सभागृह में आयोजित बूथ लेवल अधिकारियों के सम्मेलन में शामिल होंगे। इस दौरान वे इंदौर, उज्जैन, देवास, धार और खंडवा जिले के 1,500 से अधिक बूथ लेवल अधिकारियों के साथ सीधा संवाद करेंगे। गुजरात राज्य चुनाव आयोग ने विभिन्न स्थानीय स्वशासन निकायों में 15 रिक्त सीटों के लिए आगामी उपचुनावों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। इन सीटों के लिए मतदान 28 जुलाई और मतगणना 30 जुलाई को होगी। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। वहीं जिला और तालुका पंचायत सीटों के लिए 16 जुलाई तक नाम वापस लिए जा सकते हैं, जबकि नगर निगम और नगर पालिका सीटों के लिए नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 17 जुलाई है। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई का 6 दिवसीय राजकीय अंतिम संस्कार तेहरान में आज से शुरू होगा। अधिकारियों को लाखों शोक संतप्त लोगों के इसमें शामिल होने की उम्मीद है। ईरान के वरिष्ठ नेताओं, सैन्य कमांडरों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने तेहरान के मोसल्ला में आयतुल्लाह अली खामेनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन, संसद अध्यक्ष मोहम्मद बगेर गालिबफ, विदेश मंत्री अब्बास अराकची और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर अहमद वाहिदी शामिल थे। भारत की ओर से बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों की राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा अंतिम संस्कार में शामिल हुए। अन्य विदेशी गणमान्य व्यक्तियों में रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव, चीन के वरिष्ठ प्रतिनिधि हे वेई, अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री अमीर खान मुताकी और कई देशों के प्रतिनिधिमंडल शामिल थे। अंतिम संस्कार यात्रा अगले कुछ दिन तक जारी रहेगी और इस महीने की 9 तारीख को पवित्र शहर मशहद में सुपुर्दे खाक किया जाएगा। इसके बाद 40 दिन तक सार्वजनिक शोक मनाया जाएगा। पेरू में केको फुजिमोरी को राष्ट्रपति चुनाव के 2रे दौर का विजेता घोषित किया गया है। इस महीने के अंत में पदभार ग्रहण करने पर वे पिछले 10 वर्ष में पेरू की 9वीं राष्ट्रपति बनेंगी। पेरू के चुनाव आयोग ने कल औपचारिक रूप से उनकी जीत की पुष्टि की। फुजिमोरी ने 7 जून को 2रे दौर के चुनाव में रॉबर्टो सांचेस को हराया। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि 20% एथेनॉल मिले ईंधन से गाड़ियों का माइलेज कम हो जाता है, जो कि गलत और भ्रामक है। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने बड़े पैमाने पर परीक्षण किए। इन परीक्षणों में गाड़ियों की ईंधन दक्षता पर कोई खास असर नहीं देखा गया।

0: अरब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: फीफा फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना ने अमेरिका के मियामी गार्डन्स में खेले गए रोमांचक राउंड ऑफ 32 के मैच में काबो वर्डे को अतिरिक्त समय के बाद 3-2 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। लियोनेल मेसी ने टूर्नामेंट में अपना 7वां गोल करते हुए मैच के 29वें मिनट में अर्जेंटीना को बढ़त दिलाई। मैच का फैसला 111वें मिनट में निर्णायक गोल से हुआ। प्री क्वार्टर फाइनल में अब मंगलवार को अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। इससे पहले मिस्र ने ऑस्ट्रेलिया को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से कर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की की थी। फिलहाल राउंड ऑफ 32 के मैच में कोलंबिया और घाना का मुकाबला अभी जारी है। और अगर बात करें क्रिकेट की तो भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार ये मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। इसके अलावा विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता में नोवाक जोकोविच ने पुरुष सिंगल्स वर्ग में सर्वाधिक मैच जीतने में रोजर फेडरर के रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली है।
0: मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश और उड़ीसा में मूसलाधार और कुछ स्थानों पर आज तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में अगले 2 दिन तक मूसलाधार बारिश की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है फरहत नाज।
2: धन्यवाद कनक। रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC की बैठक में 52,000 करोड़ रुपए के सौदे स्वीकृत, हिंदुस्तान की सुर्खी है। पत्र लिखता है ड्रोन टैंक मिसाइल की खरीद को दी मंजूरी, लोकसत्ता लिखता है सेना की बढ़ेगी ताकत। हिंदुस्तान, पंजाब केसरी, अमर उजाला, दैनिक ट्रिब्यून सहित अनेक अखबारों ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रतिक्रिया को प्रमुखता से छापा है। लोकसत्ता ने संघ के सह कार्यवाह दत्तात्रेय होसवाले का बयान दिया है, राम भक्तों को पहुंचा आघात, दोषियों को मिले सजा। सरकार द्वारा 7 चीनी ऐप हटाए जाने पर दैनिक भास्कर की हेडलाइन है, अब बीच रास्ते बंद नहीं होंगे ई रिक्शा। अमर उजाला ने लिखा है बैट BMS जैसे ऐप पर सख्ती, ब्लूटूथ से कमजोर पासवर्ड वाली बैटरियों को बंद कर देते थे बदमाश। राजस्थान पत्रिका ने 3 तलाक और हलाला जैसी प्रथाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा 9 आरोपियों की याचिका खारिज करते हुए फटकार लगाने की खबर दी है। हलाला 3 तलाक की आड़ में नहीं दे सकते यौन शोषण की अनुमति। दैनिक भास्कर ने आजकल की भागदौड़ जिंदगी, ऑफिस का तनाव और हर वक्त काम करने की सनक से बर्नआउट हुए लोगों को लाई डाउन की सलाह दी है। घास पर चादर बिछाएं, लेट जाएं और कुछ ना करें, मानसिक थकान दूर, दिल दिमाग रिचार्ज होंगे। देशबंधु ने लिखा है अमरनाथ श्राइन बोर्ड और प्रशासन के सामने खड़ी हुई नई चुनौती, बिना पंजीकरण हजारों की तादाद में पहुंचे श्रद्धालु। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का आकलन जनसत्ता की पहली खबर है, अलनीनो के ताकतवर होने से दुनिया के कई हिस्सों में लू, सूखा और भारी वर्षा का बढ़ेगा खतरा।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। बालोतरा में देश के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर का उद्घाटन करेंगे। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया। केंद्र ने सामान्य से कम वर्षा और अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में संभावित सूखे के हालात की समीक्षा की। मौसम विभाग ने गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप में मियामी में हुए रोमांचक मुकाबले में अर्जेंटीना काबो वर्डे को 3-2 से हराकर अंतिम 16 में, मिस्र भी अंतिम 16 में पहुंचा। और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला इंग्लैंड से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी जोधपुर की प्रसारण सेवा का FM सेंसिटिव चैनल है। FM बैंड 102.1 MHz पर। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। फिल्म संगीत की शुरुआत में आपको सुनाते हैं इजाजत फिल्म का गीत आशा भोसले की आवाज़ में। गीत है गुलजार का, संगीत RD बर्मन का है।

0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।
2: फिल्म संगीत में आइए अब सुनते हैं किशोर कुमार को फिल्म शौकीन से। गीत हैं योगेश का, संगीत राहुल देव बर्मन का है।

आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत की अंतिम पेशकश के रूप में अवाम फिल्म का गीत। आशा भोसले की आवाज़ है, संगीत है रवि का। आशा भोसले के साथ आवाज़ों में साथ दिया है महेंद्र।

आशा भोसले और महेंद्र कपूर के गाए इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये सफर यहीं तक। ये आकाशवाणी जोधपुर के प्रसारण सेवा का FM सन सिटी चैनल है। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार सूर्यनगरी चैनल से अनुप्रसारित करेंगे जिसे हम

0: साल 2026 के 185वें अंक के साथ आपसे मुखातिब गुलनाज खान और
1: अर्चना चौहान,
0: स्वीकार करें हम दोनों की ओर से नमस्कार।
1: और नमस्कार के आज के अंकुर पहुंचा रही है आप तक हमारी टीम, जिसमें है आज ट्रांसमीटर पर चंद्राराम पटेल और कैलाश चंद्र सोलंकी।
0: तकनीकी सहयोग के साथ कंट्रोल रूम में मौजूद हैं सुनील जयपाल।
1: अनाउंसर ऑन ड्यूटी प्राइमरी चैनल पर हमारे साथ है नीतू सिंधी और एफएम से हमारा साथ दे रही हैं रेखा भाटिया। नमस्कार कार्यक्रम की प्रस्तुति है राजेश लामरोड की।
0: पूरी टीम के साथ आवाज और जज्बात के साथ आपसे मुखातिब गुलनाज खान और
1: अर्चना चौहान।
0: श्रोताओं, जिंदगी का एक और नया दिन, उम्मीदों का दिन और वे लम्हे यकीनन हमें और प्रेरित करते हैं जिसमें हम उम्मीद रखते हैं। हौसलों का एक और दिन है और साथ ही कुछ कर गुजरने का एक और दिन है और कुछ लोगों के लिए बहानों का भी दिन है। जी हाँ, कुछ लोगों के लिए आज सुकून भरा दिन है तो कुछ लोगों के लिए बहुत सारी प्लानिंग का दिन है। आपका दिन कौन सा है हमें बताइए और ज़रा उसके लिए तैयारी भी कीजिए। बहरहाल हमारे लिए आज का दिन बड़ा ही खुशी का है, जोधपुर शहरवासियों के लिए। आज बहुत कुछ होने वाला है हमारे शहर में और हमारे प्रदेश के लिए भी। आज एक नई डगर की शुरुआत हो रही है। बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ आज के कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं और नित नए दिन उजले सवेरे हाजिर होते हैं हम लेकर गाने नए नवेले।

0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।
2: जी हाँ दोस्तों, मन मस्त मगन होता रहता है, क्योंकि जो मौसम है वो बदल चुका है, और जब मौसम बदलता है तो दिल के हालात भी बदलते हैं और आपका जो मूड है वो भी बदलता है। और कहा भी जाता है कि जिंदगी पल पल ढलती है जैसे रेत मुट्ठी से फिसलती है। शिकवे कितने भी हो हर पल, फिर भी हंसते रहना, क्योंकि ये जिंदगी जैसी भी है बस एक ही बार तो मिलती है।

जोश और जिंदगी से लबरेज ये गीत श्रोताओं अभी आपने सुना। और जिंदगी में खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता, हमेशा एक नई शुरुआत आपका इंतजार करती है। और हमारी जानिब हम ये कहना चाहेंगे कि जिंदगी को खुला छोड़ दीजिए जीने के लिए, बहुत संभाल के रखी हुई चीज वक्त पर नहीं मिलती। इश्क क्या, हुस्न क्या और क्या फसाना, हम ना होंगे तो ये रंगे जमाना क्या और अफसाना क्या। जी हाँ, हर हाल में मुस्कराने की ठानी है, ऐ जिंदगी हमने अभी हार कहाँ मानी है।

0: भूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 135,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।

0: उफ़, इस पथरी की परेशानी ने तो परेशान कर रखा है। कहाँ कहाँ इलाज ना करवाया।
1: अब चिंता की कोई बात नहीं, गुर्दे की पथरी का सफल इलाज, बिना ऑपरेशन, बिना चीरा, बिना टाके,
2: सीमेंस आधुनिकतम लिथोट्रिप्सी मशीन से।
3: प्रोस्टेट गुर्दा रोग के इलाज हेतु कमला नगर अस्पताल, पाल लिंक रोड, जोधपुर।
4: राजस्थान की मरुभूमि।

दोस्तों आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार, और नमस्कार में हम गाने लेकर आए हैं आपके लिए नए नवेले। और अभी जो आपने गाना सुना वो कहता है कि जिंदगी आईना है, जैसा आप उसे देखना चाहेंगे वैसा ही दिखेगी। और जब भी खुशियों की और ख्वाहिशों की बात आती है तो कहा जाता है कि छोटी छोटी खुशियाँ ही तो जीने का सहारा बनती है, ख्वाहिशों का क्या, वो तो पल पल बदलती है। और इन बदलते पलों के साथ हम भी बदलते हैं, कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, अनुभव करते हैं और इन खुशियों को साझा करते हैं।

0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।

जी हाँ श्रोताओं, ये एक हकीकत है कि ज़िंदगी में कोई ना कोई बहुत दिल के करीब होता है, और जब कोई दिल के करीब होता है तो उनको यही नसीहत जाती है कि सचमुच जुड़े हो अगर किसी की ज़िंदगी के साथ, तो कबूल कर लो उस व्यक्ति को हर कमी के साथ। क्योंकि शब्दों से अगर किसी को एतराज़ होता है ना, तो उसे कहना चाहिए कि क्या तुम मौन पढ़ सकोगे। जी हाँ, ज़िंदगी हमें ऐसे ऐसे सबक देती है कि खामोशी के साथ हम ज़िंदगी को समझने की कोशिश करते हैं, और कोई हमसफ़र मिल जाए तो फिर जिंदगी का ये सफर और भी सुहाना हो जाता है।

0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।

0: श्रोताओ 9 बज रहे हैं, यहाँ हम रुकेंगे न्यूज़ ब्रेक के लिए और 9:10 में नमस्कार कार्यक्रम फिर से जारी रहेगा आकाशवाणी के जोधपुर केंद्र पर।
1: ये आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है, प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार जिसे हम आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले करेंगे।

एक समाचार। मुख्य समाचार। साथ ही प्रदेशवासियों को देंगे विभिन्न सौगात। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्रालय की ओर से आज से माउंट आबू में दो दिन के सुधार उत्सव तथा चिंतन शिविर का आयोजन। दक्षिण पूर्वी जिलों से होते हुए मॉनसून प्रदेश के बाकी इलाकों में पहुंचा। मारवाड़ के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर सभी जगह आज बारिश का येलो अलर्ट। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अल नीनो के प्रभावों की समीक्षा की। कम पानी वाली फसलों को बढ़ावा देने पर जोर दिया। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रदेश के दौरे पर रहेंगे और राज्य को विभिन्न सौगात देंगे। वे जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे और संशोधित उड़ान योजना का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद वे बालोतरा जाएंगे जहां वे लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री उत्तरा के पचपदरा में देश के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को राष्ट्र को समर्पित करेंगे।

0: हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और राजस्थान सरकार के संयुक्त उपक्रम के रूप में विकसित 9 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष क्षमता वाले इस ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की स्थापना 79,450 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से की गई है। प्रधानमंत्री जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण का शिलान्यास भी करेंगे, जिसकी कुल लागत 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की है। हमारे संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती किए गए लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी वितरित करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
1: रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स प्रदेश के पश्चिमी जिलों में निवेश, रोजगार और विकास के नए द्वार खोलेगा। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना एमएसएमई, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स व एग्री फिल्म्स जैसे उद्योगों को भी सशक्त करेगी, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण में उत्तर दक्षिण कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जो शहर में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। इस चरण से एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर संबंधित परिवहन साधनों एवं मेट्रो सुविधा का एकीकरण किया जाएगा, जिससे नागरिकों को सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पचपदरा में एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर को राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा, जिससे देश के ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र को मजबूती मिलेगी तथा रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला रखे जाने और जोधपुर एयरपोर्ट का नए टर्मिनल का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इससे पर्यटन और व्यापार को नई गति मिलेगी। हमारे जोधपुर संवाददाता ने बताया कि नए टर्मिनल को लेकर वहां लोगों में बहुत उत्साह है। इसके बनने से अधिक पर्यटक जोधपुर आएंगे, जिससे स्थानीय व्यवस्था मजबूत होगी।
2: जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का लोकार्पण केवल एक बुनियादी ढांचा परियोजना नहीं, बल्कि पश्चिमी राजस्थान के पर्यटन और आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम है। बेहतर हवाई संपर्क से देश विदेश के पर्यटकों की आवाजाही बढ़ेगी, जिससे मेहरानगढ़, उम्मेद भवन, ओसिया और थार जैसे क्षेत्र पर्यटन स्थलों को नई पहचान मिलेगी। होटल, हस्तशिल्प, परिवहन, रेस्तरा और स्थानीय व्यापार को भी सीधा लाभ होगा और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। आधुनिक एयरपोर्ट निवेश और व्यावसायिक गतिविधियों को भी गति देगा, जिससे जोधपुर क्षेत्रीय विकास का एक मजबूत केंद्र बनकर उभरेगा। रामेश्वर बेड़ा, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
0: इस बीच मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल पचपदरा में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि रिफाइनरी का इंतजार लंबे समय से था, जो अब पूरा होने जा रहा है।
3: काफी समय से इंतजार था रिफाइनरी का, रिफाइनरी का भी उद्घाटन होने वाला है। मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जो उन्होंने 17 जनवरी 2018 में इसका शिलान्यास किया था और उद्घाटन भी उसका वही कर रहे हैं। हमें बहुत बड़ी खुशी की बात है। इससे राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। ये एक राजस्थान के लिए ग्रोथ का इंजन है।
0: मुख्यमंत्री ने कल पचपदरा स्थित मंडापुरा में एचपीसीएल के नए फ्लैगशिप रिटेल आउटलेट का भी उद्घाटन किया। सिरोही के माउंट आबू में आज से सुधार उत्सव और चिंतन शिविर 2026 आयोजित किया जा रहा है। दो दिन का ये शिविर विधि और न्याय मंत्रालय के विधिक कार्य विभाग और विधायी विभाग की ओर से आयोजित हो रहा है। शिविर में मंत्रालय की प्रमुख उपलब्धियों की समीक्षा की जाएगी और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे सिरोही संवाददाता।
4: कार्यक्रम में देश भर से विधि एवं न्याय मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, कानूनी विशेषज्ञ तथा नीति निर्माण से जुड़े अधिकारी भाग लेंगे। चिंतन शिविर में न्याय प्रक्रियाओं के आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकी आधारित न्याय प्रणाली, नागरिकों को सरल एवं सुलभ कानूनी सेवाएं उपलब्ध करवाने, संस्थागत सुधार तथा सुशासन को मजबूत बनाने जैसे विषयों पर विस्तृत विचार विमर्श होगा। मंत्रालय की प्रमुख उपलब्धियों की समीक्षा तथा विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के अनुरूप भावी कार्य योजना तैयार की जाएगी। साकेत गोयल, आकाशवाणी समाचार, सिरोही।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में मॉनसून आगे बढ़ रहा है और उसने ज्यादातर हिस्सों पर अपनी पहुंच बना ली है। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल मॉनसून की उत्तरी रेखा उदयपुर, अजमेर और झुंझुनू जिलों से होकर गुजर रही है। अगले दो तीन दिन में इसके शेष भागों में आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां

0: अनुकूल बनी हुई हैं। विभाग ने आज जैसलमेर, बीकानेर, फलौदी को छोड़कर पूरे राज्य में बारिश का येलो अलर्ट बताया है। इसके अलावा कुछ दक्षिण पूर्वी जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। इनमें बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, झालावाड़, प्रतापगढ़, सलूम्बर और उदयपुर शामिल हैं। यहां भारी बारिश की चेतावनी है। इस बीच जयपुर में आज भी बादल छाए हुए हैं। सुबह कुछ स्थानों पर छिटपुट बरसात भी हुई। करौली में हल्की फुहारों ने जिले का मौसम खुशनुमा बना दिया है। भरतपुर और बांसवाड़ा में कल देर रात से शुरू हुआ बरसात का सिलसिला सुबह तक जारी रहा। जालौर में कल रात हवा के साथ हल्की बरसात हुई। सिरोही के पिंडवाड़ा, आबू रोड, स्वरूपगंज सहित विभिन्न क्षेत्रों में कल देर शाम घंटे भर तक झमाझम बादल बरसे। हमारे डूंगरपुर संवाददाता ने बताया कि वहां दो दिन से चल रही बारिश से लगभग सभी इलाके तरबतर हैं।
1: राजस्थान में मानसून के प्रवेश के बाद दक्षिणी राजस्थान में मूसलाधार बारिश का दौर चल रहा है। दो दिनों से डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और उदयपुर जिलों में रुक रुक कर बरसात हो रही है। वहीं बारिश की वजह से खेत भी पानी से लबालब हो गए हैं। वहीं नदी नालों में भी पानी की आवक बढ़ने लगी है। बारिश के साथ ही किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं और किसान अब खेती बाड़ी में जुट गए हैं। चिंतन जोशी, आकाशवाणी समाचार, डूंगरपुर।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में कम वर्षा की स्थिति और उसके संभावित प्रभावों पर समीक्षा की। बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। गृह मंत्री ने संबंधित मंत्रालयों को राज्य सरकारों के साथ मिलकर किसानों को उपयुक्त फसल बुवाई की जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने जलाशयों और भूजल स्तर की निगरानी, पशु चारे की उपलब्धता तथा कम पानी वाली फसलों को बढ़ावा देने पर जोर दिया। बैठक में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। राष्ट्रीय युवा संसद कार्यक्रम के तीसरे संस्करण का आयोजन कल जयपुर में किया गया। कार्यक्रम में देश के 25 राज्यों से आए युवा प्रतिभागियों ने भाग लिया। युवाओं ने विभिन्न राजनीतिक दलों और जनप्रतिनिधियों की भूमिका निभाते हुए संसद की कार्यवाही का प्रस्तुतीकरण दिया। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि युवा शक्ति विकसित भारत की आधारशिला है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रदेश दौरे पर। देश की पहली ग्रीन फील्ड रिफाइनरी के साथ ही प्रदेशवासियों को देंगे विभिन्न सौगात। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्रालय की ओर से आज से माउंट आबू में दो दिन के सुधार उत्सव तथा चिंतन शिविर का आयोजन। दक्षिण पूर्वी जिलों से होते हुए मानसून प्रदेश के बाकी इलाकों में पहुंचा। मारवाड़ के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर सभी जगह आज बारिश का येलो अलर्ट। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अल नीनो के भावों की समीक्षा की। कम पानी वाली फसलों को बढ़ावा देने पर जोर दिया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: प्रादेशिक समाचारों के बाद आप सभी श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आकाशवाणी जोधपुर की प्रसारण सेवा के सूर्य नगरी चैनल और एफएम सन सिटी चैनल से इस समय आप सुन रहे हैं हमारा दैनिक कार्यक्रम, नाम है जिसका मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार। और आज के अंक के साथ आपसे मुखातिब हैं गुलनाज खान और
3: अर्चना चौहान। अब नमस्कार कार्यक्रम में बड़े चलते हैं आगे और जानते हैं इतिहास के पन्नों में आज का दिन क्यों है खास। जी हाँ दोस्तों, आज है 4 जुलाई का दिन और साथ ही साथ आज के दिन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जो आज के दिन को विशेष बनाती है। जैसे बात कर ली जाए 1776 की, तो अमेरिका को ब्रिटेन से आज़ादी मिली थी और जिस वजह से अमेरिका में आज का दिन मनाया जाता है स्वतंत्रता दिवस के रूप में।
2: जी हाँ श्रोताओं, 2 जुलाई 1776 को महाद्वीपीय कांग्रेस ने स्वतंत्रता के पक्ष में मतदान किया और दो दिन बाद 13 उपनिवेशों के प्रतिनिधियों ने ग्रेट ब्रिटेन से अपनी स्वतंत्रता और मिलकर नया देश बनाने की घोषणा की थी। श्रोताओं, ये एक ऐसी घटना थी जिसने अंततः संयुक्त राज्य अमेरिका के गठन को जन्म दिया था। और आपको ये भी बता दें कि उस वक्त उनके ध्वज पर 13 उपनिवेशों के आधार पर 13 स्टार थे और आज 50 राज्यों के आधार पर 50 स्टार हैं।
3: बात कर ली जाए 1871 की, तो दुनिया के पहले विद्युत संचालित सक्शन आधारित वैक्यूम क्लीनर बनाने वाले इंग्लैंड

के इंजीनियर हुबर्ट सेसिल बूथ का जन्म भी आज ही के दिन हुआ। उन्होंने फेरिस पहियों यानी व्हील्स सस्पेंशन ब्रिज और कारखानों को डिजाइन किया था।

0: साल 1884 में अमेरिका की आज़ादी के 100 साल 1876 में पूरे होने पर फ्रांस ने एक प्रतिमा उपहार स्वरूप देने की घोषणा की थी, जिसका नाम विश्व को स्वतंत्रता का प्रकाश देने वाली रखा गया था। प्रतिमा निर्माण में अपेक्षा से अधिक समय लगा, इसलिए शताब्दी वर्ष 1876 को वो तैयार ना हो सकी और आज ही के दिन साल 1884 को विश्व प्रसिद्ध स्टैचू ऑफ लिबर्टी औपचारिक रूप से भेंट की गई थी। श्रोताओं, इस मूर्ति पर अमेरिकी स्वतंत्रता की तारीख भी लिखी है, 4 जुलाई 1776।
1: बात कर ली जाए 4 जुलाई 1933 की, तो हंगेरियन आविष्कारक लियो जे लार्ड ने परमाणु बम के इतिहास में सबसे पहले न्यूक्लियर चेन रिएक्शन पर अवधारणा प्रस्तुत की थी। 1934 में इसका पेटेंट रजिस्टर कराने हेतु आवेदन किया और इसके साथ ही लियो अमेरिका को न्यूक्लियर शक्ति बनने वाले प्रोजेक्ट का हिस्सा बने थे।

1934 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाली पहली महिला मैडम मैरी क्यूरी का निधन हुआ था आज के दिन। उन्हें पोलोनियम और रेडियम जैसे रासायनिक पदार्थों की खोज के लिए जाना जाता है। वे भौतिकी और रसायन जैसे वैज्ञानिक क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली व्यक्ति भी थीं।

0: और दोस्तों आज ही के दिन फिलीपींस को संयुक्त राज्य अमेरिका से स्वतंत्रता मिली थी 1946 में। 1898 में स्पेनिश अमेरिकन के बाद स्पेन ने फिलीपींस को अमेरिका को सौंप दिया था। 48 साल अमेरिकी शासन के अधीन रहने के बाद यह स्वतंत्रता उसे मिली थी।
1: जी हाँ श्रोताओं, फिलीपींस को जब स्वतंत्रता मिली तो वो ट्रीटी ऑफ मनीला के तहत 4 जुलाई 1946 को अमेरिका ने फिलीपींस की स्वतंत्रता को औपचारिक मान्यता दी थी और फिलीपींस संप्रभु राष्ट्र बना था। रोचक बात यह है कि 1962 तक वहां पर स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई को मनाया जाता था और फिर उसे बदलकर 12 जून किया गया। ये वो तारीख थी जब स्पेन से आज़ादी की घोषणा हुई थी। तो आज वहां पर फिलीपींस अमेरिकन फ्रेंडशिप डे मनाया जा रहा है।
0: बात कर ली जाए 4 जुलाई 1947 की, तो आज ही के दिन भारत के बंटवारे का विधेयक पेश हुआ था। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने इसकी घोषणा की थी। 30 जून 1948 तक ब्रिटेन भारत को आजाद कर देगा। आजाद कैसे होगा, इसकी पूरी योजना बनाने की जिम्मेदारी मिली लॉर्ड माउंटबेटन को। उन्होंने सबसे पहले एक डिकी बर्ड प्लान बनाया जिसे नेहरू ने रिजेक्ट कर दिया और उसके बाद माउंटबेटन ने एक और प्लान बनाया जिसे 3 जून प्लान भी कहा जाता है।

0: श्रोताओं, ब्रिटेन के शासन से आजाद होने के बाद भारत का स्वरूप कैसा होगा, यही तय करने के लिए ब्रिटेन की संसद में द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पेश किया गया था। इसी विधेयक में भारत के बंटवारे और एक अलग देश यानी पाकिस्तान के बनाए जाने का प्रस्ताव भी रखा गया था। ये विधेयक 18 जुलाई को पारित हुआ था। इसके तहत ब्रिटिश हुकूमत के हटने यानी भारत के आजाद होने की तारीख 15 अगस्त तय की गई थी। और 1960 में अमेरिकी झंडे में 50वें सितारे को जोड़ा गया था, जो नए राज्य हवाई का प्रतिनिधित्व करता है।
1: उन्नीस सौ छियासठ में आज ही के दिन

0: भारत में प्रेस काउंसलिंग ऑफ इंडिया का आधिकारिक रूप से स्थापना की गई थी। इस संस्था का मुख्य कार्य प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा के साथ पत्रकारिता के नैतिक मानकों को बढ़ावा देना है, समाचार पत्रों और पत्रकारों को सलाह जारी करना और प्राप्त शिकायतों की सुनवाई करना भी इसका मुख्य उद्देश्य है।
1: श्रोताओं, 1997 में नासा का रोबोटिक रोवर यान सोजनर मंगल ग्रह पर पहुंचा था। ये नासा के मार्स पाथफाइंडर यान का हिस्सा था। 7 महीने के सफर के बाद ये मंगल ग्रह पर पहुंचा था और वो ऐतिहासिक दिन आज ही का था।
0: और ठीक एक साल बाद यानी 1996 में आज ही के दिन जापान ने मंगल ग्रह के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए प्लैनेट बी नामक अपना पहला अंतर्ग्राहिक मिशन भेजा था। इस मिशन को बाद में नोजोमी नाम दिया गया और इसी के साथ यह मिशन आगे बढ़ा।
1: साल 2005 में ऑस्ट्रिया में डॉल्फिन की एक नई प्रजाति सन बफिन खोजी गई। उत्तर ऑस्ट्रेलिया के तटीय जल और संभवतः पापुआ न्यू गिनी के आसपास के इलाके में पाई गई थी ये प्रजाति। इस नई प्रजाति की पहचान को ऑस्ट्रेलियन सन बफिन डॉल्फिन नाम दिया गया। ये लगभग 30 वर्षों में वैज्ञानिक रूप से मान्यता प्राप्त पहली नई डॉल्फिन प्रजाति थी।
0: वहीं बात कर ली जाए सन 2006 की, तो आज ही के दिन नाथुला दर्रा व्यापार के लिए फिर से खुला था। 1962 के भारत चीन के बाद नाथुला दर्रा को बंद कर दिया गया था और बाद में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए 4 जुलाई 2006 को इसे दोबारा खोला गया था।

0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।

0: बोल बोल के थक गया।
1: क्या हुआ?
0: नया किड बैग चाहिए।
1: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
0: करेक्ट।
2: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर।
1: चले ले आ गया नया किड बैग।
3: RBI कहता है
4: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
5: जी हाँ दोस्तों, इतना प्यारा सा गीत था और वाकई वादियां भर जाएगी जब बारिश होगी। अभी एक बार बारिश हुई है लेकिन हमें इंतज़ार ज़रूर है। और जब बारिशों की बात करते हैं तो साथ की बात करते हैं, और जब साथ की बात करते हैं तो सहकारिता की भी बात करते हैं। और आज का दिन है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। जी हाँ, प्रत्येक वर्ष जुलाई के पहले शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है, और इसका उद्देश्य है

0: सहकारिता और सहकारी समितियों के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकास में उनके योगदान को उजागर करना। और इसकी शुरुआत की बात कर ली जाए तो सन 1923 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी और इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन यानी ICA का गठन किया गया था। इसमें सतत विकास, सामाजिक न्याय, लैंगिक समानता और ग्रामीण समृद्धि को बढ़ावा देना मुख्य उद्देश्य था। इसके लिए साझे प्रयास किए जाते हैं और प्रतिवर्ष इसके लिए एक थीम भी निश्चित की जाती है।
1: जी हाँ श्रोताओं, संगठन में शक्ति होती है, ये सिर्फ कहावत नहीं है, अनुभव है, पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे बुजुर्गों का। देश का इतिहास गवाह है कि जब जब समाज देश की खातिर एकजुट हुआ है तब तब हमें कामयाबी मिली है। मानव समाज में ही नहीं, पशु पक्षियों में भी संगठन के गुण मिलते हैं जो उन्हें अस्तित्व के नुकसान से बचाते हैं। संगठन और सहकारिता को नया नाम नहीं, ये तो हमारे अस्तित्व की विकास यात्रा से जुड़ा है, लेकिन इस आंदोलन का जब जब एक रूप में हम उसे देखते हैं तो उसमें कई विचार जुड़ते चले जाते हैं। और जैसा कि अभी हमने आपको बताया, आज अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जा रहा है, तो इस दिवस पर सहकारिता को सर्वमान्य पहचान देने का उद्देश्य छुपा है और भावना भी यही कि इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एकता, आर्थिक दक्षता, शांति, समानता और आपसी सामंजस्य को बढ़ावा मिले। दरअसल सहकारिता से समाज के उपेक्षित वर्ग को शक्ति मिलती है। सहकारिता की जन्मस्थली रही है भारत भूमि। हमारे संस्कारों में, हमारे आयोजनों में संगठित होकर रीति रिवाजों को मनाने की एक लंबी परंपरा रही है। और जब जब अपने देश के इतिहास के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं तो संगठन की बात हमें नज़र आती है, कि चाहे वो वृक्षों को बचाने की बात हो, और सबसे बड़ी बात है कि वो दुग्ध क्रांति आपको याद होगी, जब सभी ने संगठित होकर एक क्रांति को जन्म दिया था और आज वो संगठन कितनी मजबूती के साथ विश्व पटल पर अपना नाम किए है।
0: इसलिए कहा जाता है कि जब भी हम कोई कार्य साथ मिलकर करते हैं तो वो सक्सेस होने के उसके चांस बढ़ जाते हैं, यानी कि अगर हम साथ रहेंगे तभी विकास करेंगे। और कहा भी यही जाता है कि जब कड़ी से कड़ी मिलती है तो एक जंजीर बन ही जाती है।
1: जी हाँ, भारत में ही नहीं, चीन जैसे विशाल देश में और साथ ही साथ सिंगापुर, फिजी जैसे छोटे देश में भी सहकारिता है, तो बस कड़ी छोटी हो चाहे बड़ी हो, कड़ी को कड़ी से मिलना होगा।

0: भाई, काफी बिजी लग रहे हो।
1: मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस शुरू करूँ। एक एजेंट ने कहा कि मुद्रा लोन जल्दी सैंक्शन करवा देगा, बस प्रोसेसिंग फीस और लीगल फीस देनी होगी। पेमेंट लिंक भी भेजा है।
2: अरे मोहन भाई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कोई एजेंट नहीं होता। धोखेबाज नकली वेबसाइट, सैंक्शन लेटर्स और दस्तखत से लोगों को फंसाते हैं।
1: सच?
2: सीधा बैंक या वित्त संस्था में जाओ या सरकारी वेबसाइट से लोन अप्लाई करो। सतर्क रहें और ऑनलाइन ठगों से बचें।
1: समझ गया।

0: कड़ी दर कड़ी जब मिलती है तो संगठन बनता है, और जब जिंदा तस्वीर की हम बात करते हैं तो हर तस्वीर का एक नाम होता है।
1: जी हाँ, और उसका नाम है आधार कार्ड। आज काम की बात में हम कर रहे हैं बात आधार कार्ड की अपडेट से जुड़े नए नियमों की। जी हाँ, आधार कार्ड हमारे मुख्य दस्तावेजों में से एक है जिसके द्वारा हम सरकारी योजनाओं का हिस्सा बन सकते हैं और उसका लाभ भी उठा सकते हैं, और इसके लिए समय समय पर हमें उसे अपडेट करना पड़ता है, जैसे मोबाइल नंबर चेंज हो गया है या एड्रेस चेंज हो गया है या कोई और अपडेट। 1 जुलाई 2026 से आधार से अपडेट को लेकर एक राहत दी गई है। पहले इसके अपडेशन के लिए आपको शुल्क देनी पड़ती थी, जिसे अब हटा दिया गया है। इसके तहत अब आप माय आधार पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन दस्तावेज मुफ्त अपडेट करवा सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल ऐप के माध्यम से ईमेल आईडी अपडेट करने पर लगने वाला 75 रुपये का शुल्क भी 6 महीने के लिए पूरी तरह से हटा दिया गया है। और महत्वपूर्ण बदलाव इसमें जैसे जन्मतिथि है या जेंडर में सुधार के नियमों में एक सख्त कानून लाया गया है, और इसे आप जीवन में केवल एक ही बार बदला सकते हैं। 5 साल से लेकर 15 साल के बच्चों के लिए बायोमेट्रिक अपडेट करवाना अनिवार्य है, और अब UIDAI द्वारा केवल नए प्रकार के आधार कार्ड जारी किए जा रहे हैं, जिसमें किसी भी व्यक्तिगत जानकारी को नहीं रखा गया है, जैसे पता या 12 अंक का नंबर। इसके बजाय केवल आपकी फोटो और एक सुरक्षित QR कोड दिखाई देगा। तो अगर आपको अपडेट करवाना है अपना आधार, तो जल्दी ही करवा सकते हैं।

0: श्रोताओं, आज का दिन हमारे शहर और हमारे राज्य के लिए बहुत खास है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिन में जोधपुर के बहुप्रतीक्षित नए एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे और एलईडी स्क्रीन के माध्यम से रिमोट का बटन दबाकर नए एयरपोर्ट का लोकार्पण करेंगे। इसी दौरान क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना उड़ान 2 का भी शुभारंभ किया जाएगा। श्रोताओं, नए टर्मिनल के एप्रन पर एक साथ 12 से अधिक विमानों की पार्किंग की व्यवस्था की गई है। वर्तमान में यहां पर 3 से 4 विमानों को ही खड़ा किया जा सकता है और भविष्य में उड़ानों की संख्या बढ़ाने और पश्चिमी राजस्थान की हवाई कनेक्टिविटी मजबूत करने में भी मदद मिलेगी। राजस्थान के यात्रियों को वैसे भी हवाई सफर के लिए एक सौगात मिली है। जोधपुर जयपुर एयरपोर्ट से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की नियमित उड़ान सेवा के रूप में यह सौगात हमें मिली है। और श्रोताओं, राजस्थान के लिए ही नहीं पूरे देश के औद्योगिक विकास के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राजस्थान के बाड़मेर जिले के पचपदरा में स्थित HPCL राजस्थान रिफाइनरी राष्ट्र को समर्पित करेंगे।
1: जी हाँ, रिफाइनरी के निर्माण में एफिल टावर से 40 गुना ज्यादा लगभग 3 लाख मेट्रिक टन स्टील, बुर्ज खलीफा से 5 गुना ज्यादा 16 लाख घन मीटर कंक्रीट और गीजा के पिरामिडों से 6 गुना ज्यादा करीब 1.5 करोड़ घन मीटर मिट्टी की खुदाई की गई है। परियोजना में 28,000 किलोमीटर केबल बिछाई गई है जो पृथ्वी के 2 चक्कर लगा सकती है। रिफाइनरी में 125 मीटर ऊंचा डोम, जो कोक डोम स्थापित किया गया है, जो गोल गुंबज से 3 गुना अधिक बड़ा है। अगर बात कर ली जाए कि ये रिफाइनरी हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, तो अमेरिका में लुसियाना के गैरीविले रिफाइनरी के बाद 50 साल में सबसे बड़ी रिफाइनरी नहीं बनी है और अनुमान के मुताबिक 2030 तक 1 से 1.5 मिलियन बैरल प्रतिदिन क्षमता कम होने की आशंका है। एक अन्य अनुमान के अनुसार 2035 तक विश्वभर में कई रिफाइनरियां बंद होने के दायरे में हैं और ऐसे में हमारी रिफाइनरी जब बनेगी और काम में होगी तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा और इसी के लिए आज रिफाइनरी का जो उद्घाटन किया जा रहा है।
0: श्रोताओं, राजस्थान की ये पहली रिफाइनरी है और राज्य की पहली रिफाइनरी होने के नाते आज के लिए हमारा दिन खास है। इससे राजस्थान ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स ये एक कच्चे तेल को ईंधन में बदलने वाली रिफाइनरी नहीं है बल्कि एक इंटीग्रेटेड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पेट्रोल, डीजल, LPG, ATF के साथ साथ पेट्रोकेमिकल उत्पाद भी बनाए जाएंगे और कच्चे तेल का उपयोग भी बढ़ेगा। बाड़मेर बेसिन में उत्पादित कच्चे तेल का उपयोग करने से परिवहन लागत कम होगी और स्थानीय संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल भी होगा। साथ ही साथ इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हजारों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। बाड़मेर और आसपास के क्षेत्रों में उद्योग, परिवहन और दूसरी सेवाओं का भी विकास होगा। इससे पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। इससे स्वच्छ ईंधन का उत्पादन संभव होगा और सभी कुछ मिलाकर पचपदरा रिफाइनरी राजस्थान की सबसे बड़ी औद्योगिक परियोजनाओं में से एक है और इससे राज्य की अर्थव्यवस्था और भारत के ऊर्जा क्षेत्र के लिए एक परिवर्तनकारी योजना माना जा रहा है। तो श्रोताओं, आइए इस ऐतिहासिक अवसर पर हम सब राजस्थान और देश के विकास यात्रा के इस नए अध्याय का

0: श्रोताओं, आज शनिवार है और शनिवार को हम खास तौर पर आपके लिए शनिवार की रेसिपी लेकर आते हैं। और आज का दिन खास है तो खास बात भी होनी चाहिए, वो भी हो गई, काम की बात भी हो गई, तो अब रेसिपी का टाइम है। और आज का दिन विशेष यूं भी है कि आज इंटरनेशनल जैक फ्रूट डे है, यानी कटहल दिवस। तो जब आज दुनिया के लोग कटहल दिवस मना रहे हैं तो हम कटहल की ही क्यों ना कोई रेसिपी तैयार करें। हर साल 4 जुलाई को ये दिन मनाया जाता है।
1: जी हाँ, और यह दिन खास इसलिए है क्योंकि पेड़ पर लगने वाले दुनिया के सबसे बड़े फल और शाकाहारी लोगों के लिए प्लांट बेस्ड मीट के रूप में कटहल को महत्व दिया जाता है। कटहल दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया का मूल फल है और कटहल की बाहरी परत जो होती है वो नुकीली होती है। यह फल दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया के कुछ हिस्सों में पाया जाता है, हालांकि दुनिया भर में ये ज़्यादातर एशिया में पैदा होता है। और अगर जानकारी की बात कर ली जाए तो जानकारी के मुताबिक 1888 में पहले हवाई में उगाने की इसको कोशिश की गई थी, लेकिन जो इसका जैकफ्रूट शब्द है वो पुर्तगाली के जैका से लिया गया था और मलयालम में इसे कहा जाता है चाका।
0: और श्रोताओं, कटहल सालों पहले भारत में उगा था क्योंकि दक्षिण भारत के साथ ही उत्तर भारत के राज्यों में कटहल के पेड़ हजारों साल से हैं। भारत के साथ ही कटहल पड़ोसी देश बांग्लादेश, बर्मा, मलेशिया, श्रीलंका, इंडोनेशिया, फिलीपींस और पश्चिमी अफ्रीका में पाया जाता है। श्रीलंका और बांग्लादेश में इस कटीले छिलके वाले फल को राष्ट्रीय फल घोषित किया गया था। भारत में इसे सन 2018 में केरल का आधिकारिक राज्य फल घोषित किया गया और तमिलनाडु का भी ये राजकीय फल है। कटहल के पेड़ पर लगने वाले फूलों में केवल मादा फूल से ही कटहल होता है, नर फूल खिलकर जमीन पर बिखर जाते हैं। फूलों से इसकी उत्पत्ति होने के कारण ही कटहल सब्जी ना होकर फल माना जाता है। और कटहल स्वाद और पोषण दोनों में भरपूर होता है। कटहल में प्रोटीन, फाइबर, विटामिन ए, सी और पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। तो चलिए आज हम बनाते हैं कटहल का कुछ खास और कटहल रोगन जोश नाम देते हैं आज जो हम बनाने जा रहे हैं, पूरे जोश के साथ बनाने वाले हैं। ये कश्मीर के प्रसिद्ध रोगन

0: जोश का हम शाकाहारी रूप आपको बताने जा रहे हैं। इसमें कच्चे कटहल का रेशेदार टेक्सचर और कश्मीरी मसालों की खुशबू मिलकर इसे बेहद लजीज बनाने वाली है। चार जनों के लिए हम बनाएंगे, वैसे कार्यक्रम हम दो जने दे रहे हैं तो एक से हमारा क्या होगा। आप ले लीजिए 500 ग्राम कच्चा कटहल, बड़े टुकड़ों से कटा हो आप उस तरह से काट लीजिए। एक कप दही ले लीजिए अच्छे से फेंट कर, दो बड़े चम्मच सरसों का तेल ले लीजिए, दो तीन तेज पत्ता ले लीजिए, दालचीनी ले लीजिए, इतना तो अंदाज़ा होता है, एक डेढ़ इंच दालचीनी ले लीजिए, तीन चार हरी इलायची ले लीजिए, चार पांच लौंग ले लीजिए, छोटी इलायची ले लीजिए एक, और एक छोटा चम्मच सौंफ का पाउडर ले लीजिए, साथ ही इतना ही सौंठ का पाउडर ले लीजिए, दो छोटे चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लीजिए, आधा छोटा चम्मच हल्दी ले लीजिए, एक छोटा चम्मच धनिया ले लीजिए, और गरम मसाला भी तो डाल ही देंगे ना, और नमक तो आपको पता ही, आप अपने स्वाद अनुसार डाल देंगे। करना क्या है, करना ये है कि दो कप गरम पानी में थोड़ा सा हरा धनिया सजावट के लिए आप ले लीजिएगा, और कटहल के टुकड़ों को हल्का सा उबाल लें, फिर सरसों के तेल में सुनहरा होने तक इसे तलें या फिर शैलो फ्लाई कर लें, और उसी तेल में तेज़पत्ता, दालचीनी, इलायची और लौंग डालकर खुशबू आने तक भूनें। अब आंच धीमी करके फेंटा हुआ दही डाल दें और लगातार चलाते रहें ताकि दही फटे नहीं। कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी, धनिया, सौंफ और सौंठ का पाउडर डालकर दो तीन मिनट के लिए भूनें। तला हुआ कटहल डालकर मसाले में अच्छी तरह से मिलाएं। गर्म पानी और नमक डालकर ढक दें। धीमी आंच पर तकरीबन 20 से 25 मिनट तक चलाएं और उसके बाद देख लें कि मसाले अच्छे से कटहल में समा गए हैं या नहीं, और अंत में गर्म मसाला डाल दें। धनिया जो हमने काट कर रखा था ना, फेंके नहीं, उसे उस पर सजाना है। इसे आप कटहल रोगन जोश को तंदूरी रोटी, नान, रुमाली रोटी या ज़ीरा राइस के साथ में गर्मा गर्म परोसें, और शेफ़ की कुछ ख़ास टिप्स भी होती हैं, अगर उपलब्ध हो जाएं तो फिर कहना ही क्या। तो चलिए, यहाँ पर गुल शेफ आपको कुछ बता रही है। तो मेरी ख़ास टिप ये है कि सब कुछ तैयार हो जाए तो चुटकी भर रतन जोत का तड़का सरसों के तेल में देकर उसकी ग्रेवी में मिला दें। अब अर्चना आप पूछे कि रतन जोत होता क्या है?
1: जी,
0: रतन जोत एक प्राकृतिक जड़ है, मसाला नहीं है। इसका उपयोग मुख्य रूप से व्यंजनों में गहरा लाल रंग देने के लिए किया जाता है, खासकर कश्मीरी व्यंजनों में जैसे रोगन जोश में। तो आपको करना क्या है कि दो तीन इंच रतन जोत का टुकड़ा ले लें, जो कि सूखी जड़ होती है, छोटे छोटे टुकड़े कर लें। एक छोटे पैन में दो से तीन बड़े चम्मच सरसों का तेल या घी डाल दें अपने श्रद्धानुसार, और तेल जब धुआं छोड़ने लगे तो आंच धीमी कर दीजिए और रतन जोत डालकर उसे धीमा कर दें। तेज नहीं करना है क्योंकि रंग खराब हो सकता है। बस इसी रंग को आपको अपने डिश में मिला देना है और फिर गर्मा गर्म परोसना है। खाने वाले भी कहेंगे वाह क्या जोश है।
1: जी बिल्कुल, और रेसिपी के साथ में एक और टिप जो आपकी आ गई कि इसका कलर आप ऐसे कैसे सुधार सकते हैं। तो आज के शनिवार की रेसिपी में हमने जाना कटहल रोगन जोश।

0: जी
1: श्रोताओं,
0: हाँ
1: अब आपको लिए चलते हैं खेल के मैदानों की तरफ। और फीफा वर्ल्ड कप में कल के मुकाबले में स्पेन ने फीफा वर्ल्ड कप के राउंड 32 में ऑस्ट्रिया को 3-0 से शिकस्त दी। एक तरफा जीत के साथ स्पेन ने अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। और 2010 के बाद वर्ल्ड कप फाइनल में स्पेन ने किसी वर्ल्ड कप के नॉकआउट में पहली जीत हासिल की है। और वहीं पुर्तगाल ने क्रोएशिया को 2-1 से हरा कर अंतिम 16 में जगह बना ली है। और समय जब पिछड़ गया था, पुर्तगाल ने एक शानदार वापसी की थी।
0: श्रोताओं, आज नमस्कार कार्यक्रम में बस अब हम उस मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां पर हम श्रद्धा से उन सभी लोगों को याद करते हैं जिन्होंने अपने जीवन में समाज के लिए बहुत कुछ किया। उसी कड़ी में हम याद कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद जी को। भारत के महान संत, विचारक और राष्ट्रभक्त थे, और उनका असल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। वे रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे और वेदांत दर्शन के प्रमुख प्रवक्ता थे। 1893 में शिकागो धर्म संसद में उनका ऐतिहासिक भाषण हुआ था। इससे विश्व भर में मशहूर हुए और भारत की आध्यात्मिक विरासत को विश्व में पहचान दिलाई थी। और 39 वर्ष की आयु में आज ही के दिन 1902 में उन्होंने समाधि ली थी। वे आज भी युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं और उन्होंने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए।
1: जी हाँ, और साथ ही साथ आज हम याद कर रहे हैं अल्लूरी सीताराम राजू को, एक महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, आदिवासी जननायक, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष का नेतृत्व करने के लिए उन्हें जाना जाता है। उनका जन्म 4 जुलाई 1897 आंध्र प्रदेश में हुआ। रंपा विद्रोह का नेतृत्व करते हुए गुरिल्ला युद्ध के तकनीकों का उपयोग उन्होंने किया और सम्मानपूर्वक मन्नियम वीरडू यानी जंगल का वीर उन्हें कहा जाता है। लंबे संघर्ष के बाद ब्रिटिश सरकार ने 1924 में उन्हें गिरफ्तार कर वीरता से भरे इस युवा क्रांतिकारी को मार दिया, लेकिन आज भी उन्हें एक साहस का प्रतीक माना जाता है।
0: श्रोताओं, यादों की कड़ी में याद कर रहे हैं गुलजारी लाल नंदा जी को। भारतीय राजनेता और स्वतंत्रता सेनानी थे, भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री भी रहे। श्रम कल्याण और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में उन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया। 1997 में भारत रत्न से सम्मानित किए गए। उनका जीवन सादगी, ईमानदारी, सेवा भावना का आदर्श उदाहरण रहा।
1: वहीं आज हम याद कर रहे हैं विमलेश कांति वर्मा को, हिंदी के प्रतिष्ठित भाषाविद, साहित्यकार, शब्दकोश निर्माता के और अनुवादक हैं। हिंदी भाषा और उसके वैश्विक प्रचार प्रसार में योगदान के लिए महापंडित राहुल संक्रियातन सम्मान सहित अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान उन्हें प्राप्त हुए हैं।
0: श्रोताओं, याद कर रहे हैं धन सिंह गुर्जर जी को। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। मेरठ क्रांति की शुरुआत का श्रेय अमर शहीद कोतवाल धन सिंह गुर्जर को जाता है। क्रांति के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने धन सिंह गुर्जर को मुख्य रूप से दोषी ठहराया था और इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर फांसी की सजा दी गई।
1: वहीं आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं चिराग शेट्टी। चिराग शेट्टी हमारे भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी है और बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में सन 2022 में अपने जोड़ीदार साईराज के साथ मिलकर शानदार खेलते हुए देश के लिए पुरुष डबल फाइनल्स का स्वर्ण पदक उन्होंने जीता। चिराग शेट्टी पुरुष युगल प्रतियोगिता और मिश्रित टीम प्रतियोगिताओं में बैडमिंटन खेलते हैं और साथ ही साथ उन्हें 7 वर्ष की उम्र से ही बैडमिंटन खेलना शुरू कर दिया। पहला अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण पदक अर्जुन के साथ स्विस जूनियर ओपन 2014 में पुरुष डबल्स में हासिल किया था।
0: श्रोताओं, याद कर रहे हैं अम्मू स्वामीनाथन को। भारतीय संविधान को बनाने में सहयोग देने वाली महिलाओं में से एक थीं। संविधान को मूल रूप देने वाली समिति में 15 महिलाएं थीं, उनमें अम्मू स्वामीनाथन भी एक थीं। उन्होंने भारत स्काउट्स एंड गाइड्स और सेंसर बोर्ड की भी अध्यक्षता की थी। और श्रोताओं, आज हम याद कर रहे हैं भरत व्यास जी को, गीत कर रहे हैं। और भरत व्यास जी पर आज हम एक फनकार कार्यक्रम भी प्रसारित करेंगे। श्रोता हमारे FM चैनल से उसे सुन सकते हैं। और यादों की कड़ी में याद आते हैं वो जिन्होंने तिरंगे को रूप दिया था। जी हाँ श्रोताओं, भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के अभिकल्पक थे पिंगली वेंकैया।
1: जी हाँ, भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के अभिकल्पक थे।

0: और भारत देशभक्त महान स्वतंत्रता सेनानी और कृषि वैज्ञानिक भी थे। पिंगली वेंकैया की संस्कृत, उर्दू और हिंदी भाषाओं पर अच्छी पकड़ थी, साथ ही वे भू विज्ञान और कृषि के अच्छे जानकार थे। स्वदेशी आंदोलन के दौरान उन्होंने अमेरिका के कंबोडिया नामक कपास की बीज का आयात कर भारत को कपास बीज के साथ अंकुरित किया, और साथ ही साथ जो ये आज हम अपने तिरंगे का स्वरूप देखते हैं वो भी उन्हीं की देन है।
1: जी हाँ साथियों, तिरंगे के तले हम सब एक हैं। आइए दुनिया को दिखा दे, तिरंगा हमारा गौरव है और हम सब भारतवासी एक हैं।

0: जी हाँ श्रोताओं, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कामना करते हैं आज का दिन आप सभी के लिए बहुत शुभ हो। नमस्कार कार्यक्रम समाप्त करने की गुलनाज खान और
1: अर्चना चौहान को दीजिए इजाजत और स्वीकार कीजिए
0: नमस्कार।

श्रोता सुन रहे थे हमारे सूर्य नगरी चैनल से रिले कार्यक्रम नमस्कार। ये आकाशवाणी जोधपुर की प्रसारण सेवा का FM सन सिटी चैनल है। अब प्रस्तुत है प्रोग्राम एक फनकार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी के जोधपुर केंद्र पर और एफएम सन सिटी पर इस वक्त आप जुड़े हुए हैं अपने पसंदीदा कार्यक्रम एक फनकार के साथ। सवेरे के 10 बज चुके हैं, शनिवार का दिन है और इस सुबह के साथ में एक फनकार कार्यक्रम हाजिर लेकर हम हाजिर हैं दो दोस्त, अर्चना चौहान
1: और गुलनाज खान। श्रोताओं, आप सभी का हम एक फनकार कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। शब्दों में बसी आत्मा, याद कर रहे हैं गीतकार भरत व्यास का संगीत सफर।

श्रोताओं, ये गीत हमारी भारत के लोगों की आत्मा में बसा है। गीत जो सिर्फ सुने नहीं जाते बल्कि जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। कुछ गीत वक्त के साथ पुराने हो जाते हैं, लेकिन कुछ गीत सीमा छोड़ देते हैं उस समय की और उसको लांघ कर पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते चले जाते हैं और हर पीढ़ी की धड़कन बन जाते हैं। और ऐसे गीत जब रचे जाते हैं तो वो व्यक्ति भी बहुत ख़ास होता है। और ऐसे ही अमर गीतों की रचनाकार को आज हम अपने एक फनकार कार्यक्रम में याद कर रहे हैं, हिंदी सिनेमा के महान गीतकार भरत व्यास जी को।

0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।
2: अपने खेत, बगीचे, घर, टेरेस या ऑफिस को बनाइए हरा भरा, पौधे उगाइए, पर्यावरण बचाइए।
3: आज ही पधारे लालजी नर्सरी, रानोजी का बाग, खोखरिया, वीरामंडो।
2: लालजी नर्सरी गूगल पर सर्च कीजिए।
4: लालजी नर्सरिया, कुछ समय हरियाली में बिताओ।
5: उफ, इस पथरी की परेशानी ने तो परेशान कर रखा है, कहाँ कहाँ इलाज ना करवाया।
6: अब चिंता की कोई बात नहीं, गुर्दे की पथरी का सफल इलाज, बिना ऑपरेशन, बिना चीरा, बिना टाके,
7: सीमेंस आधुनिकतम लिथोट्रिप्सी मशीन से।
8: प्रोस्टेट गुर्दा रोग के इलाज हेतु
9: कमला नगर अस्पताल, फाल लिंक रोड, जोधपुर।
10: एक फनकार कार्यक्रम श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं हिंदी सीने जगत की सुरहली दुनिया का पहला पर्दा। अपनी चमक दमक के साथ समर्पित है उस शख्स को जिसकी लेखनी ने जीवन के अलग अलग रंगों को अपनाते हुए सेल्युलॉइड की दुनिया के पटल पर उकेरा। उस लेखनी के उजास ने फिल्मी दुनिया में गीतों को नई रोशनी दी।
11: जी हाँ, और हम बात कर रहे हैं भरत व्यास की। भरत व्यास का जन्म 6 जनवरी 1918 में हुआ बीकानेर, राजस्थान में। जी हाँ, उनका संबंध हमारे ही प्रदेश राजस्थान से था। मूल रूप से चूरू के रहने वाले थे और बचपन से ही उनमें कविता लिखने की जो प्रतिभा है वो दिखाई देने लगी। बहुत छोटे से उम्र में उन्होंने लेखन कार्य शुरू किया। चूरू से मैट्रिक करने के बाद वे चले गए कलकत्ता और उनका पहला गीत उस वक्त रामू चन्ना नामक नाटक में लिखा गया। अगर भरत व्यास की बात कर ली जाए तो

0: उनके शब्दों में थी राजस्थान की मिट्टी की खुशबू, धुनों में शास्त्रीय संगीत का अनुशासन। और राजस्थान की मिट्टी से वे भले ही दूर हुए, लेकिन उन्होंने मुंबई की फिल्मी दुनिया में अपनी इस मिट्टी की जो खुशबू है उसको फैलाया था।
1: श्रोता, उन्होंने जो पहला देशभक्ति गीत लिखा था वो गीत था आओ वीरो हिल मिल गाएं वंदे मातरम। बेहद खूबसूरत उनकी लेखनी रही है और जिस तरह से उन्होंने ना सिर्फ गाने लिखे हैं बल्कि बहुत सारे नाटक भी लिखे। और जैसा कि अभी जिक्र किया, रामू चन्ना उन्होंने नाटक लिखा था और ना सिर्फ नाटक लिखे, उन्होंने नाटकों में भाग भी लिया और एक अभिनेता भी थे भरत व्यास जी। इस बारे में भी हम बात करेंगे। आज हम भरत व्यास जी के गीतों के सफ़र के साथ एक फ़नकार कार्यक्रम में आगे बढ़ रहे हैं और बातें करें, उससे पहले आपकी नज़र करते हैं ये गीत।

0: श्रोताओं, आपने गीत सुना आधा है चंद्रमा रात आधी, फिल्म नवरंग का ये गीत था और बेहद खूबसूरत तरीके से ये गीत लिखा गया और फिल्माया गया। ना सिर्फ शब्द बल्कि संगीत भी इसमें नायाब था। नवरंग के गीतों ने साबित कर दिया था कि सरल हिंदी में भी अद्भुत संगीत रचा जा सकता है और भरत व्यास जी की भाषा में कविता भी थी, कल्पना भी थी और भारतीयता की भी सुगंध थी।
1: जी हाँ, वे कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करते थे बल्कि ऐसे शब्दों को चुनते थे जो आम श्रोताओं को आसानी से समझ आ सके। उनके गीतों में भारतीय संस्कृति, प्रकृति, दर्शन, आध्यात्म और प्रेम का सुंदर समन्वय मिलता है।
0: श्रोताओं, भरत व्यास जी के गीतों के सफर के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे, लेते हैं एक मुख्तसर सा ब्रेक।
2: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित। HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।
3: अपने खेत, बगीचे, घर, टेरेस या ऑफिस को बनाइए हरा भरा, पौधे उगाइए, पर्यावरण बचाइए।
4: आज ही पधारे लालजी नर्सरी, राणोजी का बाग, खोखरिया, बिरा मंडो।
3: लालजी नर्सरी गूगल पर सर्च कीजिए।
5: लालजी नर्सरिया, कुछ समय हरियाली में बिताओ।
0: एक फनकार कार्यक्रम में आप सभी का ब्रेक के बाद हम स्वागत करते हैं। हम बात कर रहे हैं गीतकार भरत व्यास जी पर। श्रोताओं, राजस्थान की मरुभूमि से निकलकर उनके जीवन का सफर आगे बढ़ा। बीकानेर से कॉमर्स में इंटर करने के बाद नौकरी की तलाश में कोलकाता पहुंचे, लेकिन भाग्य में शायद कुछ और ही लिखा था। इस दौरान रंगमंच अभिनय में भी उन्होंने हाथ आजमाया और अभिनय में खुद को तराशा। भरत जी ने शायद ये तय कर लिया था कि एक दिन वे अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा कर रहेंगे। चूरू में वे लगातार रंगमंच पर सक्रिय थे और एक रंगकर्मी के रूप में उनकी पहचान भी थी, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर पहली कामयाबी उन्हें मिली जब कोलकाता के ओल्ड एल्फर्ड थिएटर में उनका नाटक रंगीला मारवाड़ प्रदर्शित हुआ। इस सफलता से भरत जी को खूब प्रसिद्धि मिली और यहीं से उनके कामयाब जीवन की शुरुआत हुई। उसके बाद उन्होंने खुद के लिखे नाटक रामू चन्ना, ढोला मरवंड के भी शो किए। कोलकाता में ही प्रदर्शित नाटक मोर ध्वज से भरत जी ने मोर ध्वज की शानदार भूमिका निभाई थी और दूसरे विश्व युद्ध के बाद भरत व्यास जी कोलकाता से लौटे और कुछ समय बीकानेर में रहे। बाद में एक दोस्त के जरिए वे अपनी किस्मत चमकाने सपनों की नगरी मुंबई पहुंच गए और आगे जो कुछ भी है वो है इतिहास।

0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।
2: श्रोताओं, आपका एक बार फिर से स्वागत है। कार्यक्रम है एक फनकार, और एक फनकार में हम बात कर रहे हैं भरत व्यास के बारे में। भरत व्यास बॉलीवुड के जितने थे उतने ही मरुधरा के प्रतिनिधि थे, और साथ ही साथ राजस्थानी सिनेमा के भी भीष्म पितामह थे। उन्होंने राजस्थानी भाषा की पहली रंगीन फिल्म लाजो का निर्देशन किया। इसके बाद बाबा सारी लाडली जैसी फिल्म को उन्होंने राजस्थानी सिनेमा को एक नई पहचान दिलाई। वे अपने जड़ों से कभी दूर नहीं हुए, और अगर फिल्म निर्देशन की बात की जाए तो बीएम व्यास ने भरत व्यास को फिल्मी दुनिया में पहला ब्रेक दिया। फिल्म दुहाई के लिए उनका पहला गीत खरीदा और पैसे दिए मात्र 10 रुपए। जी हाँ, पारिश्रमिक में उन्हें मिले थे 10 रुपए, और इसके बाद एक से बढ़कर एक गीत उन्होंने लिखे और फिल्मी दुनिया के जाने माने गीतकार बन गए।

0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।

इस समय आप एक फनकार कार्यक्रम में गीतकार भरत व्यास जी का सीने सफर के बारे में हमारे साथ में जुड़े हैं और फिल्मी दुनिया का मायावी संसार और सुरीले गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, बात कर रहे हैं। भरत जी का सफर भी इस तरह से रहा कि उनकी लेखनी में एक ख़ास बात उनके गीतों में झलकती रही और उसमें सबसे ख़ास बात थी उनका हिंदी प्रेम। फिल्मी दुनिया में उस वक्त हिंदी का जो प्रयोग था उसके प्रति एक संघर्ष का दौर चल रहा था। हिंदी शब्दों का प्रयोग गीतों में ज़्यादा हो, उस वक्त के गीतकार इसी दिशा में प्रयासरत थे। भरत जी के शामिल होने से इस आंदोलन को और भी मुखरता मिली और भरत जी इस आंदोलन के एक तरह से अगवा हो गए थे। और भरत जी ने बहुत कम गीत फिल्मों की मांग के अनुरूप लिखे। परिस्थितियों से कवि मन में जो भाव उत्पन्न हुए और गीत के रूप में कागज़ पर उतरे और सही समय पाकर फिल्मों में शामिल होते चले गए। कई गीत तो बहुत मकबूल हुए और आज भी श्रोताओं की ज़ुबान पर उनके गीत हैं। गाहे बगाहे हम चाहते हैं कि उनके गीतों को हम गुनगुना लें।

दोस्तों आप सुन रहे हैं भरत व्यास के लिखे गीतों को और उनके गीतों में एक खासियत ये भी है कि सिर्फ गंभीर और प्रार्थना वाले गीत ही उन्होंने नहीं लिखे, उन्होंने मोहब्बत के जज्बातों को भी बेहद सादगी से पिरोया। जब बात करें गूंज उठी शहनाई की तो उनका लिखा एक गीत है अखियां भूल गई है सोना, और ये गीत ऐसा है जैसे कि हर आशिक की दास्तां बयां कर रहा है। संगीतकार वसंत देसाई के संगीत में और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब की शहनाई के साथ यह गीत संगीत का कोहिनूर बन गया।

भरत व्यास जी के लिखे गीतों को सुनकर यकीनन बहुत सारे श्रोताओं की अखियों ने सोना एक तरह से भूल ही गई होंगी अखियाँ। और भरत जी ने जिस तरह से गीत लिखे वो दिल से लिखे और दिल तक का उन गीतों ने सफ़र किया। भरत जी के लिखे ज़्यादातर गीतों को मुकेश जी और लता जी की आवाज़ का सौभाग्य मिला। साथ ही एक वक्त तो ऐसा भी था जब वी शांताराम का निर्माण और पंडित भरत व्यास के गीत एक दूसरे का पर्याय बन गए थे। वैसे भरत जी ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, कल्याण जी आनंद जी, बसंत देसाई, आर डी बर्मन, सी रामाचंद्रन

रांझी आनंद जी, बसंत देसाई, आर डी बर्मन, सी रामाचंद्रन जैसे दिग्गज संगीतकारों के साथ भी काम किया और गीत रचे उनके लिए भी। और भरत जी की जो सुपरहिट जोड़ी रही है वो एस एन त्रिपाठी जी के साथ बनी और बेहद खूबसूरत इनके कॉम्बिनेशन ने जो गीत दिए वो अपने आप में एक अलग पहचान रखते हैं।

श्रोताओं, भरत व्यास प्रकृति के अनूठे चित्रकार थे। चांद, बादल, पवन, नदी, फूल, इन सबको उन्होंने मानवीय भावनाओं से जोड़ा। उनके गीत सुनते समय ऐसा लगता है जैसे कविता स्वयं संगीत बन गई हो, और यही खासियत थी उनके गीतों की। चाहे वो दो आंखें बारह हाथ हो, संत ज्ञानेश्वर, तूफान और दिया, रानी रूपमती, परिणीता, मन की जीत, स्त्री, सारंगा या नवरंग, उनके लिखे जो गीत हैं वो अपने आप में इसी तरह अनूठे हैं। उसमें ना केवल भावनाएं दिखती है बल्कि श्रद्धा दिखती है। जो उनके शब्द होते थे वो बहुत ही सरल होते थे, आम जन को जोड़ देते थे, और जब भी आज भी उनके गीतों को हम सुनते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि बस कल ही लिखे गए हों।

0: बेहद खूबसूरत गीत, बहुत ही नटखटपन हमें स्क्रीन पर देखने को मिला, बहुत ही खूबसूरत शब्द और उसके साथ में जो ताल दी गई है नायाब है। वो वक्त, वो ज़माना, वो लोग आज भी याद आते हैं।
1: बिल्कुल, और कहा यही जाता है कि भरत व्यास किसी भी गीत को लिखने से पहले पूरी कहानी और पात्र की मनस्थिति को समझते थे। उनका मानना था कि गीत कहानी का हिस्सा होना चाहिए, केवल मनोरंजन का साधन नहीं, और इसलिए उनके गीत इतने कालजयी बन गए। अगर बात कर ली जाए वसंत देसाई, एसएन त्रिपाठी और श्री रामचंद्र की, तो ऐसे संगीतकारों के साथ उन्होंने काम किया और एक से बढ़कर एक नायाब गीत फिल्म इंडस्ट्री को दिए।

श्रोताओं, आज ही के दिन 1982 को भरत जी ने इस संसार से विदा ली थी। बेशक वे आज हमारे बीच नहीं, लेकिन उनके लिखे गीत आज भी फिजाओं में गूंज रहे हैं। उनके गीतों के रस में डूबने को उतावला मन, रानी रूपमती फिल्म के लिए लिखे गए गीत भरत जी के नाम के साथ में याद करता है और उसी गीत की तर्ज पर गुनगुनाता है, आ लौट के आजा मेरे भी गीत। और जो मीत के लौट के आने की बात है, वो गीत के साथ में कितनी खूबसूरती से जुड़ती है। सुंदर गीतों की रचना कर वो लेखनी अमर हो गई। ऐसे कवि को हम याद कर रहे हैं जिन्होंने राजस्थान की मिट्टी को गौरव से भर दिया। हाँ, हर दिल हर श्रोता ये कहता है, आ लौट के आजा।

0: घड़ी तो टिक टिक कर कर चल रही है और पुकार कर कौन भला चला आता है। आती हैं तो सिर्फ यादें और यादों के सहारे हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। बस हम आगे बढ़ते हैं, आप जुड़े रहिए आकाशवाणी जोधपुर के साथ और एक फनकार कार्यक्रम से गुलनाज खान और
1: अर्चना चौहान को दीजिए इजाजत। नमस्कार, नमस्कार।

श्रोता सुन रहे थे प्रोग्राम एक फनकार। ये आकाशवाणी जोधपुर की प्रसारण सेवा का FM सेंसिटिव चैनल है। FM बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर पेशे खिदमत है प्रोग्राम।

इसको छेड़ो ना अनवर खुदा के लिए, वरना बीमार का दम निकल जाएगा। जी हाँ, आज के अंदाज़े बयां की अंजुमन हमने मुकर्रर की है तस्कीन इस मौजिज़ा मौजू को। इस हर्फ के माने हैं शांति, सांत्वना, तसल्ली, आराम या संतोष। ये शब्द मुख्य रूप से अरबी और उर्दू भाषा में यूज़ में लिया जाता है, जहाँ इसका प्रयोग किसी पीड़ित व्यक्ति को ढांढस बंधाने और उसके मन को सुकून देने के भाव के लिए किया जाता है।

रेडियो रहबर रेखा भाटिया के साथ आप समाप्त फरमा रहे हैं प्रोग्राम अंदाज़े बयां। आज के अंदाज़े बयां का माजिसा मौजू है तस्कीन, जिसके माने हैं तसल्ली, ढांढस, दिलासा। सरे नाम सर सब्ज हैं जो उन्हें इल्म नहीं कि खुर्शीद कितना ही रोशन क्यों ना हो, बादल का एक टुकड़ा काफी है उसे छुपाने के लिए। घर कर सके तो सरसब्ज कर किसी बाग को, नदी ना दे पाए आप तो हवा ना दे सुलगती आग को। नेक दिल इंसान की यही तो निशानी है, नेक दिल इंसान की यही तो निशानी है, हमारी वजह से ना आ पाए किसी की आंख में पानी है।

0: FM Sun City से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम अंदाज़े बयां। प्रोग्राम में लौटेंगे एक इश्तिहार के बाद।
1: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
2: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।
3: अरे मोहन भाई, काफी बिजी लग रहे हो।
4: मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस शुरू करूँ। एक एजेंट ने कहा कि मुद्रा लोन जल्दी सैंक्शन करवा देगा, बस प्रोसेसिंग फीस और लीगल फीस देनी होगी। पेमेंट लिंक भी भेजा है।
3: अरे मोहन भाई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कोई एजेंट नहीं होता। धोखेबाज नकली वेबसाइट, सैंक्शन लेटर्स और दस्तखत से लोगों को फंसाते हैं।
4: सच?
3: सीधा बैंक या वित्त संस्था में जाओ या सरकारी वेबसाइट से लोन अप्लाई करो। सतर्क रहें और ऑनलाइन ठगों से बचें।
4: समझ गया।
5: अपने खेत, बगीचे, घर, टेरेस या ऑफिस को बनाइए हरा भरा, पौधे उगाइए, पर्यावरण बचाइए।
6: आज ही पधारे लालजी नर्सरी, रानोजी का बाग, खोखरिया, बिरामंडो।
5: लालजी नर्सरी गूगल पर सर्च कीजिए।
7: लालजी नर्सरिया, कुछ समय हरियाली में बिताओ।

जब हम गम में हो, बहुत परेशान हो, और तब हमें हमारे अपनों की तस्कीन की बेहद ज़रूरत होती है। जानते हैं, हमारे कुछ गम ऐसे होते हैं जो हमें अकेले ही सहने पड़ते हैं, जिनका हिस्सेदार कोई भी नहीं हो सकता। उनका दर्द, दंश, नश्तर केवल हमें अकेले ही सहने पड़ते हैं, और जिसका इलाज केवल उसी के पास होता है जिसने ये गम हमें दिए। बाकी दो जहान की ताकत भी हमें उन गमों से बाहर नहीं निकाल सकती। उन गमों का तस्कीन केवल उसी के पास है जो इस गम को देने वाला होता है।

0: लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।
2: हमारे आसपास चाहे कितने ही मनफियत हो, कितने ही नेगेटिव एनर्जी हो, मगर अगर हम पक्का इरादा कर लें तो दुनिया की कोई ताकत हमारी हिम्मत, हमारे हौसलों को हिला नहीं सकती। जिंदगी चाहे कितनी ही जद्दोजहद से जूझ रही हो, अपने जहन और दिल में हमेशा एक बात रखें कि मुस्बत सोच, हमारी पॉजिटिव थिंकिंग अगर हमारे साथ है तो सबसे बड़े जंगजू हैं हम। और इसीलिए हम कहते हैं कि गमों को दिल में छुपा ले, खुशी की बात करें।

0: गम के खजाने को बारिश की बूंदों से धोने लौटेंगे हम एक ब्रेक के बाद।
1: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 135,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय

0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।
2: रात से गले लगकर सुहानी शहर के ख्वाब देख, रो रो कर रोज को रोज रोज न गवा, आंखों में अश्कों की जगह सपनों का इंतखाब देख। मुश्किलें खुद ही भला कब है मुंह मोड़ दी, बर्बादियां भागने से भला कब है पीछा छोड़ दी। बांध सब्र का बांध तू फिर वक्त का इंकलाब देख। रात से गले लगकर सुहानी शहर के ख्वाब देख और इंकलाब उठा उसके जानिब, जिसने तुझे बर्बाद किया है आंखों में आंखें डालकर उसे कह की

0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।
2: FM Sun City 102.1 MHz आकाशवाणी जोधपुर की प्रसारण सेवा से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम अंदाज़े बयां, रेडियो रैबर रेखा भाटिया के साथ। चाहे टूट के बिखरे हजार बार, मगर आंखें ख्वाब देखना नहीं छोड़ती हैं। समंदर की जानिब ही बढ़ना होता है उसे, हजार मुश्किलात के बावजूद नदी अपना रुख पहाड़ों की जानिब नहीं मोड़ती है। जिसका दीदार ही बीमार की तस्कीन है, बेतहाशा बदहवाशियों में भी नजर उसी सिमत दौड़ती है।

मैं हूँ बीमार दिल, मेरे तस्कीन की हर दवा तेरे पलकों के पर्दे में। कई दफ़ा कुछ मुश्किलात ऐसी ऐसी हमें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं कि टूट के चूर चूर दिल आहों में डूब कर कहता है कि अब दुनिया से, दुनियादारी से जी भर गया है। बंदा थक कर खुदा को पुकारना ही छोड़ देता है।

0: मैं हूँ बीमार दिल, मेरे तस्कीन की हर दवा तेरे पलकों के पर्दे में। कई दफ़ा कुछ मुश्किलात ऐसी ऐसी हमें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं कि टूट के चूर चूर दिल आहों में डूब कर कहता है कि अब दुनिया से, दुनियादारी से जी भर गया है। बंदा थक कर खुदा को पुकारना ही छोड़ देता है। जब बंदा खुदा को पुकारना छोड़ देता है तब शुरू होती है खुदाई की उस खुदा की इम्तिहान की घड़ी। अब बंदा कहता है आहों में असर हो या ना हो, मैं तुझे कभी ना पुकारूंगा जब तलक तू मेरी बिना पुकारे ना सुन ले।
1: वो जितने बड़े फन

वही है रात हिजर की, वही है रात वसल की। दोनों की सहर आती है मगर दोनों की सहर में फर्क होता है। सहर माने सुबह। कई दफा ये होता है कि बिना किसी खास वजह के हमारे अजीज अपने चाहने वालों से रूठ जाते हैं, अपने नजदीकी किसी अपने से एक मदूद फासला इख्तियार कर लेते हैं और दूसरी जानिब से भी ऐसा ही रुख देखने को मिलता है। ना वो बात करते हैं एक दूसरे से, ना झगड़ते हैं, मगर उनके जहन और दिल लगातार एक दूसरे से गुफ्तगू करते रहते हैं। शिकायतें, नाराजगी सब जाहिर करते रहते हैं।

0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी।

0: भारत की ऊर्जा शक्ति।
1: कभी कभी कोई तस्कीन काम नहीं आती किसी की भी, क्योंकि जिन मंजिलों की तलाश हमें उम्र भर रहती है उन तक पहुंचते पहुंचते किस्मत हमें इतना थका देती है कि उनके मिल जाने पर उनका चाव ही कम हो जाता है। जब गम की घटाएं घिर के आती हैं तो हर सिमत एक साथ आती हैं और जिंदगी का हर मोड़ हमें अजनबी सा लगने लगता है।

जिंदगी रोज नए रंग दिखाती है हमें, कभी खुशी कभी गम, कभी प्रशंसा कभी नाराजगी। कभी कभी यूं लगता है जिंदगी मानो गला घोंट रही हो। तुमने जो बुलाना छोड़ दिया, हमने भी आना छोड़ दिया। बड़ी मुश्किल था ऐसा कर पाना, मगर फिर भी हमने अब ख्वाब खाना छोड़ दिया। तूफान उठेंगे कुछ रोज दिल में, मगर इस दुनिया से अब दिल ने घबराना छोड़ दिया, छोड़ दिया।

हाँ, ये अंदाज तेरे रुकने का वक्त को भी रुका रुका देगा, लेकिन आज का ये वक्त नहीं रुक रहा, इसलिए हमें आपसे विदा लेनी होगी। आज का अंदाज़े भी आपने सुना रेडियो रहबर रेखा भाटिया के साथ, जिसका मौजूदा मौजू था तस्कीन। अब इस प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।

श्रोता सुन रहे थे प्रोग्राम अंदाजे बयां, ये आकाशवाणी जोधपुर के प्रसारण सेवा का एफएम सेंसिटी चैनल है। श्रोताओं, दिन के 12 बजने को है, कुछ क्षणों में आप आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचारों का बुलेटिन सुनेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। 480 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये नया टर्मिनल भवन प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित नए टर्मिनल भवन से यात्रियों को सुगम और आरामदायक यात्रा का अनुभव मिलेगा। इससे क्षेत्र में पर्यटन, व्यापार और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा। श्री मोदी ने संशोधित उड़ान योजना का भी शुभारंभ किया, जिससे क्षेत्रीय संपर्क के साथ साथ विमानन क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा। इसके बाद श्री मोदी बालोतरा जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण से संबंधित हैं।
1: रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स प्रदेश के पश्चिमी जिलों में निवेश, रोजगार और विकास के नए द्वार खोलेगा। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना एमएसएमई, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स व एग्री फिल्म्स जैसे उद्योगों को भी सशक्त करेगी, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण में उत्तर दक्षिण कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जो शहर में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। इस चरण से एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर संबंधित परिवहन साधनों एवं मेट्रो सुविधा का एकीकरण किया जाएगा, जिससे नागरिकों को सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
0: प्रधानमंत्री मोदी शाम में गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां वे सानंद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कहा कि सरकार अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने असम और अरुणाचल प्रदेश में अत्यधिक बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से हुए नुकसान के आकलन के लिए अंतर मंत्रालय दल भेजने के निर्देश दिए। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता BIA आज से लागू हो गया है। इस समझौते पर पिछले वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे। वित्त मंत्रालय ने बताया कि ये समझौता द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और एक सुरक्षित तथा निवेश का अनुमानित वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरू के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने पर केको फुखिमोरी को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत पेरू के साथ अपनी घनिष्ठ मित्रता को बहुत महत्व देता है और विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला सैयद अली खामनेई को तेहरान में सुपुर्द खाक करने के छह दिन

0: राजकीय कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं। इसमें लाखों शोक संतप्त लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। ईरान के वरिष्ठ नेताओं, सैन्य कमांडरों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने तेहरान के ग्रैंड मोसल्ला में आयतुल्लाह अली खामनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत का प्रतिनिधित्व बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मार्गरीटा ने कहा कि उन्होंने भारत सरकार और जनता की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने हालिया संघर्ष में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की। फीफा विश्व कप में कोलंबिया ने अमेरिका के कंसास सिटी स्टेडियम में राउंड ऑफ 32 के अंतिम मैच में घाना को 1-0 से हराकर अगले दौर में जगह पक्की की। राउंड ऑफ 16 में अब कोलंबिया का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। इससे पहले मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने राउंड ऑफ 32 के रोमांचक मुकाबले में काबू वर्डे को अतिरिक्त समय के बाद 3-2 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार ये मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच चेस्टर ले स्ट्रीट में बारिश के कारण रद्द कर दिया गया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी जोधपुर की प्रसारण सेवा का FM सेंसिटिव चैनल है। FM बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।

लीजिए सुनिए कार्यक्रम यादों की महफिल। दोस्तों इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है। हम आपको बताना चाहेंगे इस कार्यक्रम में आज हम याद करेंगे महान गीतकार पंडित भरत व्यास को। दो आंखें बारह हाथ, ये है फिल्म का नाम जिसका गीत हम कार्यक्रम की शुरुआत में आपको सुनवा रहे हैं। आवाज लता मंगेशकर की, पंडित भरत व्यास की बोल और वसंत देसाई का संगीत।

0: मीना कपूर की आवाज को अभी आपने फिल्म आंखें में सुना। पंडित भरत व्यास की रचना थी और मदन मोहन का संगीत। जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर। ये स्वर है लता मंगेशकर का, फिल्म का नाम है अमर ज्योति। पंडित भरत व्यास की रचना को संगीत में ढाला है वसंत देसाई ने।

यादों की महफिल कार्यक्रम में आज हम याद कर रहे हैं पंडित भरत व्यास को। आइए सुनते हैं उन्हीं का लिखा कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम है जय चित्तौड़। आवाज लता मंगेशकर की और धुन बनाई है SN त्रिपाठी ने।

राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित। HPCL राजस्थान।

0: भागती दौड़ती जिंदगी में अपनी सेहत से हर कोई जूझ रहा है। पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज की समस्या के बारे में लोग आज भी बहुत कम सजग हैं। क्या है पीसीओडी, जानिए गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर आशा लता देवलीकर से।
1: जब पेशेंट आता है एकदम से तो उसको लैप्रोस्कोपी, आईवीएफ या आईयूआई एडवाइज हम लोग नहीं कर सकते हैं, हम नेचुरल वे से करते हैं। पहले उसका डाइट थोड़ा ठीक ठाक करेंगे, एक्सरसाइज ठीक ठाक करेंगे और उसको प्रेगनेंसी के लिए, कंसीव के लिए वो जो मेडिसिन है जिसे पुराने जमाने में हम क्लोमिफेन देते थे, अभी लेट्रोस देते हैं, लेट्रोजॉल और मल्टी विटामिन, विटामिन D3, ओमेगा 3 और क्या कम है दिख जाता है पेशेंट में, कुछ डिफेंसियस सीएनसी है, बिटवेल हो, ये सब देकर।
0: सुनिए 6 जुलाई सेहतनामा शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: पंडित शिवराम के संगीत निर्देशन में पंडित भरत व्यास की रचना सुनिए। गायिका है सुमन कल्याणपुर और ये फिल्म है कण कण में भगवान।

0: उषा खन्ना के संगीत निर्देशन में पंडित भरत व्यास की बोल सुनिए। आवाजें लता मंगेशकर और साथियों की। फिल्म का नाम है हम हिंदुस्तानी।
1: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित। HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।

बेली नार समझाए थके तुहे बार बार मन छुई मुई करु कौन जतन छूते ही हाथ तुम लाए बद मेरा तन मुरारी मत छू मत छू मत छू।

0: जानी मानी फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: मैं और हिमेश भाई कहीं टाउन जा रहे थे तो मेरे को हिमेश भाई बोले, सर कोई ऐसा वर्ड बताओ जो अभी तक नहीं आया हो। मैं ऐसा कोई वर्ड नहीं है। फिर अचानक मुझे आया, हाँ सर एक वर्ड है, बर्दाश्त। तो सर ये बनाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकता, दूसरी लाइन की अब दूर नहीं रह सकता। तो उन्होंने तीसरी खुद कह दी, तेरे बिन, और हमारा गाना बन गया।
2: बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब दूर नहीं रह सकता, एक बिन तेरे बिन।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 4 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। एसएन त्रिपाठी के संगीत निर्देशन में पंडित भरत व्यास की रचना, स्वर लता मंगेशकर का और फिल्म का नाम जन्म जन्म के फेरे।

कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर, मीना कपूर, मन्ना डे और साथियों की आवाजें। फिल्म का नाम है अंगुलीमाल। रचनाकार पंडित भरत व्यास हैं और संगीतकार हैं अनिल बिस्वास।

0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: यादों की महफिल कार्यक्रम की अगली पेशकश, फिल्म का नाम है बेदर्द जमाना क्या जाने। गाने वाले कलाकार मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर, पंडित भरत व्यास के बोलों को संगीत में ढाला है कल्याण जी आनंद।

0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: जो भी
0: आशा भोसले की आवाज, फिल्म का नाम भक्त प्रहलाद, गीतकार पंडित भरत व्यास और संगीत दिया है बी एन बाली ने।

0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।

कार्यक्रम का अगला गीत वसंत देसाई के संगीत निर्देशन में पंडित भरत व्यास का लिखा हुआ, स्वर है मन्ना डे, सुमन कल्याणपुर और साथियों की, और ये फिल्म है भरत मिलाप।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। आशा भोसले की आवाज में फिल्म गृहलक्ष्मी का गीत सुनिए। गीतकार पंडित भरत व्यास और संगीतकार हैं अविनाश व्यास।

0: सुमन कल्याणपुर की आवाज में हम आपको सुनवा रहे हैं बूंद जो बन गई मोती, इस फिल्म का गाना। पंडित भरत व्यास के बोलों को संगीत में ढाला है सतीश भाटिया ने।
1: कैसी उलझन, कैसी पहेली,

कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं इकबाल कुरैशी के संगीत निर्देशन में ये पंडित भरत व्यास की अंतिम रचना। इस कार्यक्रम की आवाजें मोहम्मद रफी और आशा भोंसले की, और ये फिल्म का नाम है चा चा चा।

इस दो गाने के साथ ही आज का यादों की महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है। इस कार्यक्रम में आज हमने पंडित भरत व्यास को याद किया था।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं। ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम। सुरीला सफर लेकर हम उपस्थित हो रहे हैं बस कुछ ही पलों में।

प्रस्तुत है आपका पसंदीदा कार्यक्रम सुरीला सफर। सभी सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। जी दोस्तों, कहिए कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे हैं। हमारे ये कार्यक्रम सुनने के लिए बेताब है ना, बेकरार है ना। चलिए तो आज का ये कार्यक्रम आप सभी के लिए, खास तौर से वो श्रोता जो थोड़ा सा गहराई में जाकर संगीत को पसंद करते हैं, जहाँ उन्हें लगता है कि गजल सुनी जाए, है ना, लगता है ना कभी कभी कि आज धूम धड़ाके से अलग हटकर कुछ गजलों का रसास्वादन किया जाए। जिंदगी में बहुत बार हम जब गमगीन होते हैं, दुखी होते हैं, या बहुत धैर्य और गंभीरता से जीवन बिता रहे होते हैं, तो हम गजलों को बहुत पसंद भी करते हैं। और हमारे कुछ श्रोता तो गजलों को ही पसंद करते हैं, लेकिन हाँ, हमारे कई श्रोता ऐसे भी हैं जो हर तरह का संगीत पसंद करते हैं। तो हम तो हमारे सभी श्रोताओं का ख्याल रखते हैं कि कुछ श्रोता जो आज गजलें सुनना चाहते हैं, तो चलिए उनके लिए कुछ गजलें लेकर हम आते हैं। तो ये जो गजलें हैं, फिल्मी गजलें हैं, जो विशेष रूप से बॉलीवुड के संगीत और फिल्मों के लिए लिखी जाती हैं। और दोस्तों, ये शास्त्रीय गजलों की छंद, तुकबंदी और भाव को बनाए रखती हैं, लेकिन इन्हें फिल्मों के कहानी और मूड के अनुसार थोड़ा सा आसान धुनों में ढाला जाता है। और फिल्मी गजलें उर्दू और हिंदी शायरी के बेहतरीन नमूनों, जैसे कि शेर, मतला, मक्ता, इन सभी को आम लोगों तक पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम है। तो गजलों का उपयोग फिल्मों में तब किया गया जब गहराई, उदासी, प्रेम की तड़प या अंतर मन की उथल पुथल को पर्दे पर दिखाया जाता है। तो आज ऐसी ही उथल पुथल बनी रहेगी सुरीला सफर के इस प्यारे से सफर में। तैयार है ना आप इस सफर में, जहाँ हल्की फुल्की उथल पुथल भी है, गहराई भी है, हो सकता है

उदासी भी हो। लेकिन हाँ, जब हम आपसे कुछ सवाल करेंगे तो ये ध्यान रखिएगा कि आप किस तरह की गजलें पसंद करते हैं, क्योंकि आज हमने उन गजलों को चुना है इस कार्यक्रम में जहाँ गजल की संरचना को कुछ नियमों का पालन भी करना होता है। जैसे जैसे कि गजल में कम से कम 5 शेर होते हैं और प्रत्येक शेर अपने आप में पूर्ण होता है। दूसरी ओर नज्म में एक ऐसा विषय होता है जो उसके शेरों में समाहित होता है, है ना? तो प्रत्येक शेर का जो अंत है रदीफ यानी शब्द या वाक्यांश से होता है, जिसके ठीक पहले काफिया यानी तुकांत शब्द आता है। तो काफिया और रदीफ ही शेरों को आपस में जोड़ते हैं। तो इन शर्तों को ध्यान में रखते हुए हमने आज की कुछ खास गजलें आपके लिए चुनी है इस कार्यक्रम में। तो हमारे जो श्रोता फेसबुक पेज से जुड़ गए हैं www.facebook.com/vbsmumbai पर जाकर जिन्होंने अपने विचार लिख दिए हैं, वे तो समझ ही गए हैं कि आज का विषय गजलें हैं और आज हमने क्या टेक्स्ट आपके लिए लिखा है। लेकिन जो श्रोता फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि आज का टेक्स्ट है, हमारी फिल्मों में गजलें केवल गानों का हिस्सा नहीं बल्कि कहानी को गहराई देने, किरदार के जज्बात बयां करने और माहौल बनाने का सशक्त माध्यम रही हैं। फिल्मों में गजलों का स्थान संगीत, शायरी और भावुकता का एक ऐसा संगम है जो दर्शकों के दिलों को सीधे छू लेता है। जब संवाद ना काफी होते हैं तब गजलें अंतर्मन की पीड़ा, तन्हाई और प्रेम को गहराई से पर्दे पर उतारती है। तो आज सुनीला सफर इन्हीं बेहतरीन पुरानी गजलों के साथ, बताइए आज कौन कौन सी चुनिंदा गजल आपके लिए पेश है। पेशी खिदमत है कार्यक्रम की ये पहली गजल। लता मंगेशकर की आवाज, फिल्म का नाम अदालत, राजेंद्र कृष्ण की बोल, मदन मोहन की धुन।

लता मंगेशकर को आपने सुना, फिल्म का नाम था अदालत। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि आज का विषय गजल जानकर मुझे गीतकार गोपाल दास नीरज की पंक्तियां याद आ रही हैं। लोग लिखते हैं अखबारों में छपने के लिए, हम लोगों के दिलों पर गजल लिखते हैं। बहुत खूब। इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि सुनने वाले के दिल पर गीत से ज्यादा गजल का असर होता है। कभी कभी कोई बात पूरा गीत नहीं समझा सकती तो गजल का एक शेर समझा देता है। एक ही बात को कहने का हर शायर का तरीका अलग अलग होता है। जहां महबूब की तारीफ में गालिब कहते हैं कि वो आए हमारे घर पर, खुदा की कुदरत है, वहीं मीर तकी मीर कहते हैं हम हुए तुम हुए कि मीर हुए, उसके जुल्फ के सब असीर हुए। क्या खूब, बहुत सुंदर। फिल्मों में साहिर, शकील, हसरत, कैफे आजमी ने अपने गजलों के माध्यम से खूब वाहवाही बटोरी है। बहुत सुंदर लिखा है आपने। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि गजल शब्द अरबी भाषा के गजाल शब्द से बना है जिसका अर्थ हिरण होता है। काव्य के संदर्भ में जब हिरण शेर के डर से भागता है तो अंत में गिर जाने पर उसके मुंह से जो दर्द भरी चीख निकलती है उसे गजल कहा जाता है। आपके दिए गए पैराग्राफ के आधार पर गजल का निर्माण संगीत, शायरी और भावुकता के अनूठे संगम से होता है जो अंतर्मन की पीड़ा, तन्हाई, प्रेम, उदासी, तड़प और आध्यात्मिक प्रश्नों जैसे गहरे मानवीय जज्बातों को शब्दों में पिरोने से बनती है। बहुत खूब। एक श्रोता लिखते हैं कि हिंदी फिल्मी नगमों में शायरी और गजलों का एक बेहद खास और गहरा इतिहास रहा है। फिल्मों की कहानी को आगे बढ़ाने और किरदारों के जज्बातों को गहराई देने के लिए कई मशहूर गजलों को बेहतरीन गानों के रूप में पेश किया गया है। हिंदी फिल्मों की कुछ सबसे सदाबहार और मशहूर गजल फिल्म अर्थ है और जगजीत सिंह इस गजल से फिल्म जगत में एक अलग मुकाम बनाते हैं। गिटार और सारंगी के बेहतरीन इस्तेमाल ने इस गजल को सुकून भरा नगमा बना दिया है और इसी प्रकार इन्होंने बहुत सारी गजलों का जिक्र भी किया है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि गजल क्या है, दो मिश्रों में जज्बात की जगमगाहट या बेसिर पैर की बातें। कुछ लोग मानते हैं कि इसने रब नहीं होता मगर शायरों का मानना है कि इसमें जिंदगी होती है। मिर्जा गालिब के जमाने से पहले शुरू हुआ गजलों का दौर हमारे भारतीय फिल्मों में आज तक चल रहा है। फिल्मी गीतकार बदायूनी, मजरूह, राजा मेहदी अली खान, साहिर लुधियानवी, आनंद बख्शी जैसे लोग लिखते हैं। हमारे फिल्मी संगीतकार ने बहुत ही मधुर धुनें बनाई इनके साथ, खासकर नौशाद साहब, मदन मोहन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, खयाम साहब, मुझे तो खासकर लता मंगेशकर जी और जगजीत सिंह की सभी गजलें जो उन्होंने फिल्मों में गाई बहुत ही पसंद आती है। जी हाँ, हमारे सवाल जिसका आप इंतजार कर रहे होंगे, हमारे सवाल हैं हमेशा की तरह दो। और उससे पहले हम आपको ये भी बता दें कि जो सवाल हम आपसे करेंगे जब आप उनका जवाब देंगे तो ध्यान रखिएगा कि जिस भी गजल को आप पसंद कर रहे हैं, वैसे तो आपको जो गीत पसंद है वो सर आंखों पर, हम उसका जिक्र जरूर करेंगे, लेकिन आज हमने कुछ नियमों को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम में वो गजलें चुनी है जिसमें पांच शेर हैं और प्रत्येक शेर अपने आप में पूर्ण है और प्रत्येक शेर का अंत रदीफ यानी वाक्यांश शब्द यानी वाक्यांश से होता है और जिसके ठीक पहले काफिया यानी तुकांत शब्द या वाक्यांश से होता है और काफिया और जो रदीफ ही वही मिलकर जो है इस गजल को बनाते हैं, है ना, शेरों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा कि इस तरह की

गजल आप हमें बताएं जो आप पसंद करते हैं। बहरहाल मैं आपको आज के सवाल बता देती हूं। हमारा पहला सवाल आपसे बिल्कुल सीधा साधा कि अधिकांश हिंदी कवि और फिल्मी गीतकार हिंदी के साथ साथ उर्दू में भी बहुत निपुण थे, तो बताइए कौन से हैं वो हिंदी गीतकार जिन्होंने अपने फिल्मी गीत उर्दू में भी लिखे। हालांकि हमारे कुछ श्रोताओं ने उनका नाम लिख भी दिया है गीतकारों का, लेकिन फिर भी आपकी नजर में ऐसे कौन से गीतकार हैं जिन्होंने फिल्मी गीत लिखे हिंदी के साथ साथ उर्दू में भी। बस उन गीतकारों का नाम लिखना है। और हाँ, हमारा जो दूसरा सवाल है वो ये है कि बहुत सारे जो फिल्मी गजलें हैं उनकी कुछ खास पंक्तियां जिसने आपको आपके दिल को झकझोर दिया हो, आपको पसंद हो, उसका जिक्र करें, यानी वो दो पंक्तियां हमें लिखकर भेज सकते हैं। जैसे अगर हम अपनी बात करें तो मुझे ये पंक्तियां बेहद पसंद है जो अभी आपने फिल्म अदालत की सुनी थी कि मुरझा चुका है फिर भी ये दिल फूल ही तो है, अब आप ही की खुशी से कांटों में सो लिए, खुद दिल से दिल की बात कही और रो लिए। ये पंक्ति मुझे बेहद पसंद है। आपको इस तरह की कौन सी पंक्तियां पसंद है उसका जिक्र आप कर सकते हैं। आइए सुनते हैं एसएन त्रिपाठी का संगीत, बहादुर शाह जफर की रचना, आवाज मोहम्मद रफी साहब की, फिल्म का नाम लाल किला।

ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी और FM सन सिटी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्स और FM बैंड 102.1 मेगा हर्ट्स पर। श्रोताओं लीजिए प्रस्तुत है आधी आबादी नारी शक्ति को समर्पित कार्यक्रम नारी वाटिका का।

0: वंदन अभिनंदन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम नारी वाटिका में। और आज की नारी वाटिका का सफर आप तय करेंगे अपनी दो प्यारी सी सखियों के साथ। मैं हूँ पूर्णिमा और मेरे साथ है
1: मैं हूँ खुशबू। तो स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार।

0: सखियों, आज का हमारा मन और मस्तिष्क एक ही ऐसी दिव्य आवाज की ओर आकर्षित है जिसने पूरे विश्व को जगाया।
1: पूर्णिमा, जब जब दुनिया में समाज सुधार और सशक्तिकरण की बात होती है तब तब हमारा ध्यान जो है वो आधुनिक आंदोलनों की ओर जाता है। लेकिन पता है, आज से 125 साल पहले भगवा वस्त्र पहने एक सन्यासी ने वैश्विक मंच से भारत की नारी शक्ति का जो जयघोष किया था उसकी गूंज आज भी उतनी ही प्रासंगिक है।
0: जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद जी की, जिन और आज के इस प्रोग्राम में हम जानेंगे उनके जीवन की प्रेरणादायक प्रसंग
1: जी।
0: उनके अनमोल विचार, उनके उपदेश, युवाओं के लिए उनका संदेश, महिलाओं के प्रति उनकी सोच, शिक्षा का महत्व और राष्ट्र निर्माण में सबका योगदान।
1: जी, तो सखियों, चर्चा करेंगे इन सभी विषयों के बारे में। तो आज का जो हमारा कार्यक्रम है वो बेहद ही खास रहने वाला है। तो शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की और आप तक पहुंचाते हैं ये पहला म्यूजिकल ट्रैक।

0: सखियों इस म्यूजिकल ट्रैक के बाद स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कार्यक्रम नारी वाटिका में। और जैसा कि हमने बताया, आज का जो हमारा कार्यक्रम है वो विशेष रहने वाला है स्वामी विवेकानंद के जीवन पर। देखिए सखियों, वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु के रूप में हम इन्हें जानते हैं, जिनका वास्तविक नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। 1893 की आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से उन्होंने सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था, साथ ही साथ रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी की थी, जो कि आज भी अपना काम कर रहा है। फिलहाल इनके बारे में और भी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी आपको सुनवाते हैं डॉक्टर रेणुका राठौड़, विवेकानंद केंद्र की सदस्य से पूर्णिमा जैन की फोन आउट बातचीत। आप बने रहिए कार्यक्रम नारी वाटिका के साथ।
1: आप सुन रहे हैं नारी वाटिका।

0: जहां हम बात करते हैं उन महान विभूतियों की जिन्होंने अपने विचार से पूरी मानवता को नई दिशा दी। आज का हमारा विशेष कार्यक्रम समर्पित है भारत के युग पुरुष को, जिनके विचार आज भी युवाओं की रगों में जोश भर देते हैं, जिनकी वाणी आत्मविश्वास जगाती है और जिनका जीवन हमें सिखाता है कि असंभव शब्द केवल कमजोर मन वालों के लिए होते हैं। ये विचार हैं स्वामी विवेकानंद जी के, और आज हम फोन आउट के माध्यम से उनकी जीवन यात्रा पर निकलेंगे डॉक्टर रेणुका राठौर के साथ, जो विवेकानंद केंद्र की बहुत पुरानी कार्यकर्ता हैं। रेणुका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम नारी वाटिका में।
1: बहुत धन्यवाद।
0: तो रेणुका जी, चलते हैं विवेकानंद जी की जीवन यात्रा पे और शुरू करते हैं उनके बचपन से। तो आप उनके बचपन के बारे में हमें कुछ बताएं।
1: देखिए, स्वामी जी बचपन एक ऐसे सुंदर देश में बीतता है जहाँ पर कि उनके माता पिता बड़े उस समय के समृद्ध लोगों में से हैं और बहुत अच्छा उनका घर परिवार है। उससे भी बड़ी बात यह है कि स्वामी जी जो वो एक ऐसे बच्चे की तरह है जो बहुत नटखट है, बहुत चंचल है, बहुत जिज्ञासु है और हर चीज को परख कर जानना चाहता है। तो मुझे एक वाकया याद आता है जो हमने पढ़ा था बहुत
0: जी।
1: बच्चों को कहते हैं ना, पुराने समय में, उस समय तो ये बहुत ज्यादा प्रचलन में था कि देख वो भूत है, उधर मत जाना
0: जी।
1: तो किसी ने जब उनको कहा कि वहाँ दम्भ राक्षस है और तुम उधर मत जाना, और वो रात में वहीं रुक जाते हैं और उस पेड़ पर जहाँ के लिए कहा गया था कि यहाँ भूत रहते हैं, वो उस पेड़ पे लटक गए, वहीं बैठ जाते हैं और पूरी रात बैठे रहते हैं वहीं पे, रात भर कुछ नहीं दिखता। तो फिर सुबह कूद के नीचे आते हैं और उसके बाद अपने दोस्तों को कहते हैं कि ये हमें गलत बताया गया है कि इस तरफ भूत रहते हैं, यहाँ कोई भूत नहीं होता। तो ये वो बच्चा है जो हर चीज अनुभव के माध्यम से जानना चाहता है, हर चीज अपनी आंख से परख कर, खुद देख कर, विश्वास के साथ उसको परख कर और फिर उस पर विश्वास करता है। तो ये बहुत अनोखा और मेरा ख्याल है सबसे सुंदर तरीका है किसी बच्चे को बड़ा करने का, जहाँ पर कि उस बच्चे को पूरी स्वतंत्रता मिले और उसको अपने अनुभव के माध्यम से अपनी पहचान खुद करने का अवसर मिले। तो स्वामी जी का बचपन ऐसा था और इसी कारण आज हमारे सामने एक ऐसा व्यक्तित्व है जिनको हम युवा पीढ़ी ही नहीं, भारत का हर व्यक्ति पूरे आदर्श पुरुष के रूप में देख सकता है, क्योंकि उनका बचपन बहुत बहुत सुंदर सिद्धांतों और बहुत सुंदर परिकल्पनाओं के साथ बीता
0: जी। और कहते हैं कि स्वामी जी जो हैं वो अपने गुरु जी यानी कि गुरु रामकृष्ण परमहंस से बहुत प्रभावित थे, तो उन्होंने उनके जीवन को किस प्रकार प्रकाश दिया?
1: तो स्वामी जी युवावस्था और उसी दौरान वो वहाँ पहुँच गए थे ठाकुर के पास, अपने जो बाद में उनके गुरु बने, वो उनके पास पहले कई बार वहाँ जाते हैं दक्षिणेश्वर और वो उनसे बात करते हैं, उनके पास उनको बहुत दूर चुपचाप बैठ के देखते हैं पहले, और फिर जैसे ही ठाकुर से उनकी आंखें मिलती हैं और ठाकुर उन्हें अपने पास बुलाते हैं, तो वो उनका पहला प्रश्न ही यही होता है कि भाई आप जो ये ईश्वर की बात कर रहे हो तो क्या आपने ईश्वर को देखा है? तो वो ऐसे सीधे विश्वास नहीं कर रहे, ठाकुर के हर प्रश्न पे, हर वाक्य पर पहले प्रश्न चिन्ह लगाते हैं अपने भीतर और उसके बाद उसको परखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आंख मूंद कर किसी पे विश्वास नहीं करना, ये उनके अंदर बहुत गहराई से था
0: जी।
1: तो और ठाकुर ने बड़े सुंदर तरीके से, और वो पहुंचते भी एक ऐसे सिद्ध पुरुष के पास है जो स्वयं पारदृष्टा थे, तो जैसे ही उनके पास जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि क्या आपने ईश्वर को देखा है, तो ठाकुर उन्हें उसी रूप में कहते हैं कि हाँ वैसे ही जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ
0: जी।
1: और तो स्वामी जी एकदम चकित हो जाते हैं और ठाकुर उनकी आंख उनकी भौहों के बीच में अपना अंगूठा लगा देते हैं, और उस वक्त उनका जो अनुभव होता है उसके बाद उन्हें ये अनुभूति, उनको ये विश्वास हो जाता है कि मैं जिस व्यक्ति के पास आया हूँ वो ढोंगी नहीं है, वो पाखंडी नहीं है, वो सचमुच एक गुरु है, वो सच एक बहुत बड़ा ज्ञानी है। और वो उस परखने के कारण फिर वो पूरी तरह से सरेंडर करते हैं। देखिए बहुत सुंदर तरीका, कितना एक जीवन की सुंदर परिभाषा है स्वामी जी के इस एक्शन में, इस कर्म में, कि पहले आप परखो और जब आप परख कर पूर्ण विश्वास कर लो तो फिर समर्पण भी उतना ही पूरा हो, वहां फिर कोई भी संदेह की गुंजाइश ना हो।
0: तभी तो इनका जो गुरु

0: शिष्य का जो संबंध है वो प्रचलित है कि अगर गुरु शिष्य का संबंध होना है तो गुरुजी और स्वामी जी जैसा होना चाहिए?
1: बिल्कुल निश्चित रूप से।
0: तो ये गुरु शिष्य का जो संबंध है जैसा स्वामी जी और उनके गुरुजी में था, वैसा ही आज की पीढ़ी उन गुरु शिष्य के संबंध से क्या सीख ले सकती है?
1: देखिए, मैं ये मानती हूँ कि आज की पीढ़ी में सबसे पहले तो हमें गुरु और शिष्य के संबंध को स्पष्ट करना पड़ेगा। अध्यापक गुरु नहीं है
0: जी,
1: है ना, जिसे आजकल हम कह देते हैं स्कूल में विद्यालय में गुरुजी हैं, वो गुरुजी नहीं है क्योंकि उन्होंने अभी उस गुरु के पद को पूरी तरह से ग्रहण नहीं किया है। अध्यापक है, वो पढ़ा रहे हैं, उन्होंने कुछ पढ़ा है और वो आप तक पहुँचा रहे हैं
0: जी,
1: है ना। तो एक तो ये स्पष्टता आवश्यक है कि विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में गुरु नहीं है, है ना। गुरु एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक पदवी है, गुरु एक बहुत बड़ी साधना है और गुरु वही है जिन्होंने अंदर पहले उस भाव को जिया है, उस सत्य को समझा है, जाना है, उसको अंगीकार और आत्मसात किया है और अब वो स्थिति में है कि वो पूरे विश्व को, आगे आने वाली पीढ़ी को या अपने सामने जो भी व्यक्ति आता है उसको ये बताने में समर्थ है, है ना। ये सामर्थ्य होना बहुत आवश्यक है, ये समर्थ है कि जो सत्य मैंने जाना है उस सत्य को अब मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, तुम्हारे सामने रखना चाहता हूँ। तो ये सबसे बड़ी आवश्यकता है कि गुरु का समर्थ होना आवश्यक है। ज्ञानी का अर्थ है अनुभवजन्य, अनुभूति से आया हुआ ज्ञान, है ना, किताबों से पढ़ा हुआ ज्ञान नहीं। तो वो अनुभूति से जन्य वो सामर्थ्य है, वो जब उस व्यक्ति के पास आ जाता है तब वो गुरु की पदवी को प्राप्त करने के सही योग्य है। और फिर शिष्य कौन है? जो पूरी तरह से समर्पण कर ले, पूरी तरह से सरेंडर करे और वो जो गुरु कहे उस पर, उस मार्ग पर बिना किसी संशय के, बिना किसी उहापोह के पूरी तरह से चले और उस सत्य को उसी प्रकार प्राप्त करे और अंगीकार करे जैसा वो गुरु कह रहे हैं। तो ये जो परस्पर का भाव है, ये जिनके बीच में आज आ पाता है, वे ही वास्तव में गुरु और शिष्य हो सकते हैं, है ना
0: जी।
1: तो जैसे अर्जुन है ना, तो शिष्यस्ते हम शादि माम स्वाम प्रपन्नम, अब मैं आपकी शरण में आ गया हूँ, शरणागत हूँ पूरी तरह से, अब आप जो कहेंगे वो मैं पूरी तरह से करूँगा। तो ये शिष्य का भाव हो और गुरु निश्चित रूप से सामर्थ्यशाली होना चाहिए
0: जी।
1: और ये जहाँ पर भी है वहाँ पर फिर सत्य का उद्घाटन होने से कोई रोक नहीं सकता
0: जी। रेणुका जी, स्वामी जी आदर्श है एक युवा पीढ़ी के लिए, तो आज के युवाओं में जो बढ़ता तनाव और निराशा है उनके लिए उनके जो विचार है वो कितने प्रासंगिक हैं?
1: बहुत बहुत प्रासंगिक हैं। मुझे स्वामी जी जैसा युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत आज तक नजर नहीं आया। स्वामी जी के लिए ये बहुत सुंदर वाक्य है जो मैं हमेशा याद रखती हूँ, स्वामी जी में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे नकारात्मक कोई नेगेटिव हो
0: जी,
1: उनमें सब कुछ सकारात्मक ही है, उनमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो नकारात्मक हो। और स्वामी जी युवाओं के लिए सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत है। मुझे स्वामी जी का वो वाक्य बहुत सुंदर लगता है, बचपन से अपनी युवावस्था मैंने जब उस दौर से गुजरी तब भी मैंने अपने आप को बार बार याद दिलाया। वो कहते थे कि जिसको स्वयं पर विश्वास नहीं है वो नास्तिक है
0: जी।
1: ये नास्तिकता की कितनी सुंदर परिभाषा है और ये हर युवा को ग्रहण करनी चाहिए। सबसे पहले अपने ऊपर विश्वास करें, अपने ऊपर भरोसा करें, अपना सामर्थ्य, आप सब कुछ अच्छा तभी कर सकते हैं जब आपको अपने ऊपर विश्वास हो। और इसलिए आप नास्तिक तभी होंगे जब आप अपने ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। और स्वामी जी कहते थे माँ भी, ये मुझे उन्होंने उपनिषदों से लेकर बार बार कहा इस वाक्य को, डरो मत, है ना
0: जी, डर के आगे जीत है।
1: हाँ, भय किसी चीज से नहीं होना चाहिए, युवाओं में पूरी तरह से आत्मविश्वास होना चाहिए, भय किसी चीज से नहीं होना चाहिए। और आपके अंदर तो, युवाओं के अंदर तो वो सामर्थ्य है कि वो पहाड़ को हिला सके। ये स्वामी जी कहते थे कि युवा क्या नहीं कर सकता। स्वामी जी तो बहुत, उनका बहुत प्रसिद्ध वाक्य और है कि मुझे सिर्फ ऐसे 100 युवा दे दो जिनकी शिराओं और धमनियों में जो पाषाण के हो, मतलब है ना, फौलादी हो
0: जी,
1: तो ऐसे मुझे 100

0: युवा दे दो, मैं पूरे विश्व को बदल के रखूंगा। तो युवा के अंदर तो वो जोश है। स्वामी जी स्वयं एक ऐसे युवा थे कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने उस तमस काल मतलब घोर अंधकार काल में, जब भारत बिल्कुल निराशा में डूबा हुआ था और पूरी तरह से बंधन की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, उस समय एक व्यक्ति यहाँ से निकलता है जिसके पास खुद के पास उस समय कुछ भी नहीं है। दूसरों के द्वारा दिए हुए अर्थ और संपत्ति के सहारे वो अमेरिका पहुंचते हैं और वो वहां पर लोगों के अंदर एक इतना बड़ा परिवर्तन उनकी आवाज के माध्यम से ही और उनके कर्म के माध्यम से, उनके एक्शंस के माध्यम से लोगों तक पहुंचता है और भारत की एक नई छवि पूरे यूरोप और पूरे अमेरिका में फैलती है। और वो एक ऐसे व्यक्ति ने कर दिखाया, उस समय के भारत से निकल कर गए थे। तो एक व्यक्ति ही जब पूरे विश्व में बदलाव ला सकता है, एक युवा है ना
1: जी।
0: तो अगर भारत का युवा, हर युवा अगर जागृत हो जाए और वो स्वामी जी के कहे अनुसार उनकी वाक्यों पर पूरी विश्वास करके और उनका अनुसरण करने लगे, तो क्या हम विश्व नहीं बदल सकते?
1: जरूर
0: रूप से बदल सकते हैं।
1: उन्होंने युवाओं के साथ साथ महिलाओं के उत्थान पे भी बहुत काम किया था, और उनके महिलाओं के उत्थान के लिए उनके क्या विचार हुआ करते थे?
0: स्वामी जी तो वैचारिक सामर्थ्य बहुत कमाल था स्वामी जी,
1: जी।
0: तो वो हमेशा ये मतलब महिलाओं के लिए, तो उनको जब भी पूछा जाता था तो वो ये कहते थे कि भाई महिलाओं के अंदर वो सब सामर्थ्य है जो वो अपना रास्ता स्वयं निकाल लेंगी, तुम उन्हें सिर्फ शिक्षा दे दो
1: जी।
0: और वो हमेशा ये कहते थे कि भाई उस समय जो पाश्चात्य नारी है और जो भारत की नारी है, उन दोनों के अंदर एक बहुत बड़ा अंतर ये है कि भारत की नारी के पास एक बहुत अच्छा सोर्स है कि वो अपने पूर्वजों से उसने जो प्राप्त किया है, जैसे अपने पूर्वजों से उसके अंदर जो गुण प्राप्त हुए हैं, अगर वो केवल उनको अपने जीवन में उतार ले, तो वो उदाहरण देते थे संगमित्रा का, अहिल्याबाई का, मीराबाई का
1: जी।
0: और वो कहते थे कि भारत की जो महान देवियां हैं वो परंपरा को आगे बढ़ाएं और वीर प्रसूता बने, है ना। और उनका ये भी कहना था कि भारत की स्त्रियां बहुत पवित्र हैं, बहुत और त्याग मूर्ति हैं, क्योंकि उनके पास वो बल और वो शक्ति है जो सर्वशक्तिमान परमात्मा के चरणों में अपना सर्वस्व अर्पण करने से प्राप्त होती है। तो वो हमेशा ये कहते थे कि बस शिक्षा महिलाओं को दो, केवल उनको अपने सही और गलत का मतलब उसके बीच में जो भेद करने का विवेक उन्हें प्राप्त हो जाए, और उसके अलावा महिला में स्वयं में वो सब सामर्थ्य है कि स्त्री जाति जो है वो पूरे विश्व के परिवेश को बदल सकती है, वो एक इतनी सुंदर माँ बन सकती है, वो एक इतनी सुंदर गृहिणी बन सकती है, वो अपना कार्य, उसको आप जो भी कार्य देंगे
1: जी,
0: है ना, वो अपने आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकती है। स्त्री के अंदर वो सारा सामर्थ्य है, बस उसे एक सच्ची शिक्षा की आवश्यकता है। और भारत में बहुत समय तक स्त्रियों में शिक्षा का अभाव रहा। आज वो परिवेश निश्चित रूप से बदल रहा है, जो कि बहुत
1: बहुत हद तक बदल भी चुका है,
0: बिल्कुल हर्ष का विषय है। लेकिन यहाँ पर फिर स्वामी जी का वाक्य याद रखना आवश्यक है कि भारत की भूमि में जो अध्यात्म का बीज है वो हमारी स्त्रियों में बना रहे। ये स्वामी जी बहुत कहते थे कि भारत की स्त्री को पाश्चात्य स्त्रियों का अनुकरण करने की आवश्यकता नहीं है, हमारे पास जो गहराई है वो पश्चिम में नहीं है, तो इसलिए उस पश्चिम की गहराई को प्राप्त करने के लिए हमारी स्त्रियों को पहले अपने भीतर झांकना होगा और अपने भारत के उन गुणों को प्रस्फुटित करने का सामर्थ्य भारत की नारी के पास है। ये स्वामी जी का बहुत सुंदर, और ये भारत की स्त्री को जानना है कि उसे पश्चिम का अंधानुकरण नहीं करना है, उसे विचार, उसे खान पान, रहन सहन, पहनावा किसी का अनुकरण करने की आवश्यकता नहीं है। आपको जो सबसे अच्छा लगता है वो करिए, लेकिन अनुभव के आधार पर अपनी उस धरोहर को संजोकर रखते हुए करिए, क्योंकि भारत के पास जो सामर्थ्य है वो दूसरे देशों के पास नहीं है।
1: रेणुका जी, आज के जो माता पिता हैं, आज के जो शिक्षक हैं, उनको स्वामी जी के जीवन से क्या सीख लेनी चाहिए?
0: देखिए, माता पिता जो है, सबसे बड़ी बात ये है कि माता पिता को अपने बच्चों पर विश्वास होना चाहिए
1: जी,
0: है ना। और माता पिता वह कार्य करें जो उनके बच्चे सिर्फ उन्हें देखकर अनुकरण कर सके, है ना
1: जी।
0: हम कहें कुछ और करें कुछ और, ये जो अंतर है कर्म का और विचार

0: संस्कार का ये नहीं होना चाहिए, है ना
1: जी।
0: हम कथनी और करनी में एक रूपता हो और माता पिता स्वयं उस पद्धति का अनुसरण करें जो हमारी अपनी पद्धति है। जैसे स्वामी जी कभी कहते थे कि किसी दूसरे को अपना बनाने के लिए आपको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, आपके विचारों और आपके कर्म के अनुसार वो आपका अनुकरण करने लग जाएगा। तो इसलिए ये बहुत बड़ा एक अंतर है कि माता पिता वह करें जो वो चाहते हैं कि उनके बच्चे करें,
1: क्योंकि बच्चे वही सीखेंगे जो माता पिता को वो देखेंगे करते हुए। और रेणुका जी, जो स्वामी जी के विचार हैं वो अपन अपने दैनिक जीवन में कैसे अपना सकते हैं?
0: स्वामी जी का तो हर वाक्य जीवन में अपनाने योग्य है। स्वामी जी के पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि सिर्फ वाक्य हो या केवल कथन हो। स्वामी जी तो पूरी तरह से एक ऐसा व्यक्तित्व है, एक ऐसा आदर्श व्यक्तित्व है जो जीवन में पूरी तरह से अनुकरण करने योग्य है, है ना
1: जी।
0: उनके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जो केवल विचार मात्र पे हो, वो पूरी तरह से एक अनुकरणीय व्यक्तित्व है जिनकी एक एक बात को जीवन में, चाहे युवा हो, चाहे वो नारी हो, चाहे वो कोई शिक्षक हो, जीवन के हर क्षेत्र में स्वामी जी को उतारा जा सकता है
1: जी। तो चलते चलते जो सखियां हमारा ये प्रोग्राम सुन रही हैं, उनको आप क्या प्रेरणादायक संदेश देना चाहेंगे?
0: स्वामी विवेकानंद भारत का एक ऐसा व्यक्तित्व है जिन्होंने हमें इस आधुनिक युग में भारत की प्राचीन परंपरा से परिचित करवाने के साथ साथ हमें एक ऐसा सूत्र भी दिया कि जीवन में तर्क और जीवन में विश्वास
1: जी।
0: इन दोनों को तभी ग्रहण किया जा सकता है जब वो सत्य की भूमि पर स्थापित हो। तो स्वामी जी का जीवन पूरी तरह से सत्य पर आधारित जीवन है, पूरी तरह से जीवन के अनुभवों को आत्मसात करने का जो उनका संदेश है वो एक बहुत अनोखा संदेश है। और भारत के हर व्यक्ति को स्वामी विवेकानंद बनने के लिए अपने भीतर सत्य का अनुसंधान करना होगा और जीवन में तर्क और विश्वास और समर्पण, इन तीनों जो धुरियां हैं उन पर अपने जीवन को स्थापित करना होगा। कुछ भी आंख बंद करके और उसको ग्रहण नहीं करना है, लेकिन एक बार जब आप उसे अपनी तर्क की कसौटी पर कस लेते हैं तो फिर समर्पण भी पूरा हो। और ऐसा यदि भारत का व्यक्ति, भारत का नागरिक, भारत का बच्चा, भारत की स्त्री, सभी लोग कर पाते हैं तो हम वास्तव में भारत के पुनर अनुसंधान और पुनर्स्थापना पर कार्य कर पाएंगे जो कि बहुत आवश्यक है। आज के समय को देखते हुए और वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए सबसे बड़ी आवश्यकता यही है कि हम अपने भीतर उस सत्य का अनुसंधान करें और फिर दूसरों के लिए उसे सामने रखें। इस रूप में स्वामी विवेकानंद सबसे सुंदर आदर्श व्यक्तित्व हमारे सामने है
1: जी। सखियों, अभी हमने विवेकानंद जी के जीवन यात्रा पे अभी हम चले और इस यात्रा पे हमारे साथ ही डॉक्टर रेणुका राठौर जो कि विवेकानंद केंद्र की पुरानी कार्यकर्ता हैं। रेणुका जी, आपने हमारे और हमारी सखियों का इतना अच्छा मार्गदर्शन किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: मेरा भी बहुत आभार आपका, थैंक यू।
2: सखियों, अभी आपने सुनी डॉक्टर रेणुका राठौर, विवेकानंद केंद्र की सदस्य से पूर्णिमा जैन की फोन आउट बातचीत। और चलिए अब आपको फिर से जोड़ लेते हैं कार्यक्रम के संग और ले चलते हैं इस प्यारे से गीत की ओर।

0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 135,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।
2: अपने खेत, बगीचे, घर, टेरेस या ऑफिस को बनाइए हरा भरा, पौधे उगाइए, पर्यावरण बचाइए।
3: आज ही पधारे लालजी नर्सरी, राणोजी का बाग, खोखरिया, बिरा मंडो।
2: लालजी नर्सरी गूगल पर सर्च कीजिए।
4: लालजी नर्सरिया, कुछ समय हरियाली में बिताओ।
0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों

0: मिलता हो। राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।

है ना, आज का जो युवा है वो सोशल मीडिया के दौर में जी रहा है, तो हर तरफ वही लाइक्स कमेंट्स और दूसरों से तुलना की होड़ मची है। तो इसी चकाचौंध के बीच में आज का जो युवा है, अक्सर ऐसा हम देखते हैं कि खुद को अकेला फील करता है, उदास, और कई बार ऐसा होता है ना कि वो रास्ते से भी भटक जाता है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है या सर्कल ऐसा होता है जो अपने लक्ष्य से उसको भटका देते हैं, तो ऐसे में करियर का भी तनाव होता है, काफी बार ऐसा होता है कि असफलताओं का भी सामना करना पड़ता है, डर भी लगता है, और अक्सर एक जो कॉमन थिंग होती है वो ये होती है कि खुद की काबिलियत पर भरोसा नहीं होता है ना, कदम डगमगा जाते हैं कि भाई हम ये कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे समय में आज से 125 साल पहले स्वामी जी ने कहा था कि युवाओं को भटकाव से निकालने के लिए आत्मविश्वास का एक अचूक महामंत्र भी है, और वो महामंत्र क्या है इस बारे में भी हम हमारी सखियों से जरूर चर्चा करेंगे, लेकिन इस म्यूजिकल ट्रैक के बाद।

0: खुशबू स्वामी जी कहते थे कि एक विचार लो
1: जी
0: और उसी विचार को अपने जीवन बना लो। आज के अधिकांश जो युवा हैं वो एक साथ कई सारे लक्ष्य तय कर लेते हैं और उनपे चल पड़ते हैं। परिणाम स्वरूप क्या होता है, उनका ध्यान बढ़ जाता है क्योंकि एक लक्ष्य नहीं, उनके पास चार लक्ष्य हैं और उन चारों में वो जो उनका केंद्र है वो बढ़ जाता है। तो विवेकानंद जी का कहना है कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो पूरे मन से एक लक्ष्य पर केंद्रित रहते हैं।
1: ये तो बिल्कुल सही कहा पूर्णिमा, क्योंकि अगर आप 10 चीजों के पीछे भागेंगे ना तो उसमें से एक भी हाथ नहीं आएगी। इससे बेटर ये है कि आप एक लक्ष्य के पीछे भागो तो वो जीवन में एक ना एक दिन तो जरूर मिलेगा। और
0: कहते ना कि एक नाव पे ही सवार रहना चाहिए, अगर हम दो नाव पे सवार होते तो गिरने का डर रहता है।
1: बिल्कुल रहता है। और आजकल तो देखिए सोशल मीडिया का

0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।
2: ये देख कैसे।
3: हैप्पी बर्थडे भाई।
2: देखा हाँ, मेरा फेवरेट कलर
3: हमेशा शॉपिंग।
2: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
4: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
5: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
2: आई नो ना।
5: RBI कहता है,
6: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।

0: विवेकानंद की जीवन से जुड़ी कुछ खास। और इसी कड़ी में इस म्यूजिकल ब्रेक से पहले पूर्णिमा बात कर रहे थे कि युवाओं में जब आत्मविश्वास की कमी हो जाती है तो स्वामी जी ने क्या कहा था। तो देखिए, उनका एक बहुत ही खास महामंत्र था और वो था कि खुद पर भरोसा नहीं करता है ना जो इंसान, वो नास्तिक होता है। अक्सर हम कहते हैं कि जो व्यक्ति धर्म में नहीं मानता या भगवान को नहीं मानता वो नास्तिक होता है, लेकिन वो कहते थे कि जो व्यक्ति खुद पर ही भरोसा नहीं करे वो नास्तिक होता है, क्योंकि दुनिया
1: खुद पर भरोसा नहीं करेगा तो वो दुनिया कैसे जीत पाएगा।
0: जी, और वो कहते थे कि कोई भी काम तब तक मुमकिन नहीं होता जब तक कि आपको अपनी स्वयं की शक्तियों पर विश्वास नहीं हो। और उनका ये भी मानना था कि दूसरों की राय से पहले खुद की राय बदलो।
1: और उनका ये भी मानना था कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए।
0: जी,
1: आजकल अधिकांश जो युवा है वो छोटी छोटी असफलताओं से निराश हो जाते हैं। सोशल मीडिया भी है तो वहां पे भी दूसरों की सफलता देख के वो खुद को बहुत छोटा महसूस करने लगते हैं, खुद को बहुत कम आंकने लगते हैं। और ऐसे समय में विवेकानंद का जो ये संदेश है हमें याद दिलाता है कि सफलता निरंतर प्रयास से मिलती है, तुलना से नहीं।
0: और कहते हैं ना कि अपनी नियति के निर्माता तो हम खुद ही होते हैं, और जब तक हम ये नहीं कहेंगे ना कि भाई नहीं, हम कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं जिंदगी में, किसी से हमें कंपैरिजन नहीं करना है, तुलना नहीं करनी है, तो वो व्यक्ति जरूर अपने जीवन में आगे बढ़ता है। और कहते हैं ना कि जब तक खुद को मजबूत नहीं सोचोगे तो, और जब तक खुद भी मजबूत नहीं बनोगे तब तक आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति कभी नहीं कर सकते।

0: जी हाँ सखियों, छोटा सा दिल और इस दिल में बसी जो आशा है वही हमें जो है हमारे लक्ष्य की ओर लगातार लेकर जाती है। और पूर्णिमा, पता है युवाओं को तो प्रेरित किया ही था स्वामी जी ने, लेकिन उनकी एक खास बात ये रही थी कि उन्होंने नारी यानी महिला सशक्तिकरण को भी उस समय बहुत प्रेरित किया था। और उनका ये मानना था कि जब तक किसी समाज की महिला को नहीं सुधारा जाए ना, उनकी स्थिति को नहीं सुधारा जाए, तो शायद वो समाज कभी नहीं सुधर सकता।
1: और उनका ये भी कहना था कि महिलाओं का जो है वो राष्ट्र की शक्ति माना जाता था
0: जी।
1: वो मानते थे कि जो महिलाएं हैं वो राष्ट्र की शक्ति हैं। और उनका कहना था कि किसी भी राष्ट्र की जो प्रगति है उसका जो सबसे बड़ा जो मापदंड है वो वहाँ की जो महिलाएं हैं उनकी स्थिति है। और यही नहीं, उनके अनुसार यदि महिलाएं शिक्षित और आत्मनिर्भर होंगी ना तो पूरा जो समाज है वो आगे बढ़ेगा। और उन्होंने कई बार बोला भी है कि जो गरीबों की जो सेवा है वही भगवान की सेवा माना जाता है।
0: क्या बात है, बहुत बहुत गहरी बात इन्होंने कही थी उस समय। और सखी आपको बता दी कि उसी समय स्वामी जी ने ये साफ भी कह दिया था कि पुरुषों और महिलाओं को समाज के विकास में बराबरी की हिस्सेदारी मिलनी चाहिए और महिलाओं को सिर्फ दया का पात्र नहीं बल्कि शक्ति का साक्षात रूप भी माने। और इसीलिए उनका कहना था कि महिलाओं की हर समस्या का जो समाधान है पूर्णिमा, वो एक ही चीज में है और वो है शिक्षा। जब तक महिला शिक्षित नहीं हो सकती तब तक वो समाज भी शिक्षित नहीं हो सकता।
1: और यही नहीं, महिला शिक्षा, महिला उद्यमिता और आत्मनिर्भरता पर जो उन्होंने उस टाइम जोर दिया, वो सोचो आज उनके जो विचार है वो सत्य साबित हो रहे हैं
0: जी।
1: पर ये उनका जो विचार था वो इतने वर्षों पहले उनका ये विचार था जो आज जाके सहसिद्ध हो रहे हैं।
0: हाँ, और देखिए उस समय वो चाहते थे कि भारत की जो महिलाएं हैं ना, जो बेटियां हैं, वो गार्गी, मैत्रेयी और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जैसी वीर और विदुषी बने। और देखिए जब हम आज 21वीं सदी के भारत को देखते हैं जहां बेटियां अंतरिक्ष में जा रही है, सीमा पर देश की रक्षा कर रही है, व्यापार और राजनीति का नेतृत्व कर रही है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि स्वामी विवेकानंद जी का जो सपना था वो आज सच साकार हो रहा है। और देखिए आज की नारी आत्मनिर्भर भी है, निर्भीक भी है, लेकिन कहीं ना कहीं सफर अभी थोड़ा सा बाकी है, क्योंकि समाज के हर कोने तक हमें इस भेदभाव को पूरी तरीके से खत्म करना है और स्वामी जी का संदेश हमें उस हर कोने तक पहुंचाना है।

0: बिल्कुल सखियों, माटी को माँ कहते हैं और ये जो मिट्टी है ना, यही मिट्टी कहीं ना कहीं हमारी युवाओं की प्रेरणा भी है और इसी प्रेरणा का उपदेश स्वामी विवेकानंद ने दिया कश्मीर से लेकर और कन्याकुमारी तक।
1: और यही नहीं, कन्याकुमारी की जो चट्टाने हैं वहाँ बैठकर उन्होंने भारत के भविष्य का चिंतन किया और वहीं से उन्होंने राष्ट्रीय सेवा का संकल्प लिया।
0: क्या बात है पूर्णिमा। और देखिए उनका ये कहना भी था कि जो अपनी माँ का सम्मान नहीं करता वो कभी भी महान नहीं बन सकता, और माटी तो आपकी माँ है, ये देश आपका है, तो युवा शक्ति जो है वो अपने देश के लिए हमेशा क्या रहे, डेडिकेटेड रहे,
1: तत्पर रहे। जी हाँ, और आज का युवक जो आज का युग है वो तकनीक का युग है और जानकारी बहुत है लेकिन ज्ञान कम है, दोस्त हजार है लेकिन सच्चे संबंध कम है, मनोरंजन बहुत है लेकिन मन की शांति बहुत कम है।
0: तो ऐसे में हमें स्वामी जी सिखाते हैं, क्या सिखाते हैं वो हम हमारी युवाओं को बताते हैं, हमारी सखियों को बताते हैं। सबसे पहला तो ये कि आपके हाथ में जो मोबाइल है ना उसका उपयोग करें लेकिन उसका गुलाम नहीं बनना है, क्योंकि मोबाइल जो है वो आपके यूज के लिए है, आपके आसानी के लिए है। बिल्कुल भी ऐसा ना करें कि आप उसके ऊपर पूरा निर्भर रह गए और अपने दिन के 24 घंटे में से कई सारा समय आप मोबाइल पर बिताएं।
1: अब तुलना नहीं करें, खुद पर खुद का जो है आत्म विकास करें,
0: ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल, साथ ही साथ शरीर और मन दोनों को स्वस्थ रखें, क्योंकि जब ये स्वस्थ रहेंगे तो आप अपने लक्ष्य की ओर अधिक केंद्रित रह सकते हैं।
1: आप जिस देश में रहते हैं उस राष्ट्र के लिए आप सोचें, उसके लिए आगे बढ़े और हमेशा तत्पर रहें।
0: इसके अलावा समय का सम्मान करें, क्योंकि समय जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो समय का जब तक आप सम्मान नहीं करेंगे समय भी आपका सम्मान नहीं करेगा।
1: आत्मविश्वास बनाए रखें, क्योंकि जब तक आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं होगा आप अपनी सफलता के कदम नहीं चूम पाएंगे।
0: और अगला पॉइंट जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है अपने भीतर की शक्ति को पहचानें, क्योंकि उनका मानना था कि सारी शक्ति जो है वो हमारे भीतर ही है, इसलिए डरो मत, स्वयं पर विश्वास करो, और स्वयं पर विश्वास करना ही सफलता का पहला कदम है। जो दूसरों के लिए जीते हैं वही वास्तव में जीते हैं।

0: सखियों, स्वामी जी एक सन्यासी नहीं थे, वे विचारों की एक ऐसी क्रांति थे जो आज भी हर युवा, हर विद्यार्थी और हर माता पिता और हर नागरिक को प्रेरित करते थे।
1: और उन्होंने हमें सिखाया कि सफलता धन से नहीं, चरित्र से मापी जाती है। शिक्षा केवल नौकरी पाने के लिए नहीं बल्कि समाज को बेहतर बनाने के लिए होनी चाहिए।
0: धर्म का अर्थ विभाजन नहीं बल्कि मानवता है, और सबसे बढ़कर हर व्यक्ति के भीतर असीम शक्ति छिपी है, आवश्यकता है केवल उसे पहचान कर सही दिशा देने की।
1: तो आज का जो हमारा ये कार्यक्रम है, ये विशेष रहा स्वामी विवेकानंद जी के जीवन पर और उनकी प्रेरणादायक संदेशों पर।
0: तो अब आपको हम रूबरू करवा देते हैं हमारी टेक्निकल टीम से। HPT पे थे विक्रम सिंह भाटी और राय सिंह राव
1: जी। कंट्रोल रूम से हमारे साथ थी प्रवीण कुमार, और साथ ही कंसोल से आप तक इतनी प्यारी प्यारी गाने पहुंचाए उगम सिंह राजपुरोहित ने,
0: और इस प्रोग्राम की प्रस्तुति तैयार की थी मनीष सोलंकी ने। और हम दो रेडियो दोस्त आपके साथ, मैं हूँ पूर्णिमा, मेरे साथ,
1: और मैं थी खुशबू।
0: तो लेते हैं विदा फिर मिलने के वादे के साथ, तब तक स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार।

0: आधी आबादी नारी शक्ति को समर्पित कार्यक्रम नारी वाटिका अभी आप सुन रहे थे। यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी और FM सन सिटी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलोहर्ट्ज और FM बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, दिन के 2:15 होने को हैं। थोड़ी ही देर में हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से दोपहर समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार

0: चार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बालोतरा में भारत का पहला ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर देश को समर्पित किया। उन्होंने जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत पाकिस्तान स्थित 23 लोगों को आतंकवादी घोषित किया। सरकार ने बड़े पैमाने पर पायरेसी की रिपोर्ट मिलने के बाद मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता आज से लागू। दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 4 दिनों में गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में और आगे बढ़ेगा। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण सहित कई क्षेत्रों से जुड़ी हैं। प्रधानमंत्री ने बालोतरा के पचपदरा में भारत का पहला ग्रीन फील्ड एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित किया। ये देश के ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और राजस्थान सरकार का संयुक्त उद्यम है। प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये रिफाइनरी हजारों लोगों के लिए रोजगार का माध्यम बनेगी।
1: आज इस रिफाइनरी को देश को समर्पित किया गया है। ये रिफाइनरी यहाँ हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। आज का दिन साक्षी है कि बीजेपी सरकारें परियोजनाओं को सिर्फ शिलान्यास करके नहीं छोड़ती है, बल्कि हम उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी दिन रात एक कर देते हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की कुल लागत वाली जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण का भी शिलान्यास किया। दूसरे चरण में प्रहलादपुरा से तोड़ी मोड़ तक 41 किलोमीटर लंबा उत्तर दक्षिण मेट्रो कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने चुरू सादुलपुर और चुरू रतनगढ़ रेल दोहरीकरण परियोजनाओं और राष्ट्रीय राजमार्ग 125A जोधपुर रिंग रोड खंड 2 के 4 लेन निर्माण को भी राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड की 1000 मेगावाट बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना भी राष्ट्र को समर्पित की। श्री मोदी ने राजस्थान नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र REZ से बिजली निकासी के लिए 1,900 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित पारेषण लाइन का उद्घाटन किया। उन्होंने REZ के लिए 530 किलोमीटर लंबी बिजली पारेषण प्रणाली की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती किए गए लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। 480 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये नया टर्मिनल भवन प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। श्री मोदी ने संशोधित उड़ान योजना का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के नागर विमानन परिदृश्य में इस महत्वपूर्ण योजना से उड़े देश का आम नागरिक पहल को बल मिलेगा।
1: जोधपुर से ही आज उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
0: प्रधानमंत्री आज शाम गुजरात जाएंगे, जहां वे सांणंद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सीजी सेमी के सेमीकंडक्टर प्लांट का दौरा करेंगे और यहां की अत्याधुनिक क्लीन रूम

0: विधा का निरीक्षण करेंगे। उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस खास कार्यक्रम में केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी भी मौजूद रहेंगे। वर्तमान में इस प्लांट में 300 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं और आने वाले 5 सालों में यहां 5000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है, जिससे इस पूरे क्षेत्र के विकास को एक नई रफ्तार मिलेगी। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: गुजरात में विभिन्न रेलवे परियोजनाओं की समीक्षा के बाद अहमदाबाद में संवाददाताओं से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विश्वास जताया कि अहमदाबाद और मुंबई को जोड़ने वाला पूरा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर 2029 के अंत तक तैयार हो जाएगा। उन्होंने बताया कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है।
2: बुलेट ट्रेन का कंस्ट्रक्शन भी बहुत तेजी से चल रहा है और अगले साल सूरत से बिलीमोरा का पहला सेक्शन आरंभ करेंगे, उसके बाद में वापिस से सूरत का सेक्शन आरंभ करेंगे, उसके बाद में वापिस से अहमदाबाद का पूरा कंप्लीट करेंगे, फिर अहमदाबाद से ठाणे और उसके बाद में अहमदाबाद से मुंबई। इस तरह से सेक्शन बाय सेक्शन, फेज बाय फेज 2029 के एंड तक कंप्लीट करेंगे प्रोजेक्ट। बहुत 80% काम गुजरात के क्षेत्र में कंप्लीट हो चुका है और बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान स्थित 23 व्यक्तियों को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए के तहत आतंकवादी घोषित किया है। ये लोग जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और अन्य संगठनों से जुड़े हुए थे। मंत्रालय ने कहा कि देश और नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार हर आतंकी मॉड्यूल को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। एक रिपोर्ट।
3: गृह मंत्रालय द्वारा आज घोषित किए गए 23 आतंकवादियों में से 17 पाकिस्तान के जबकि 6 भारतीय नागरिक हैं। इस समय ये सभी नामित आतंकवादी पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से अपनी आतंकवादी गतिविधि चला रहे हैं। ये आतंकवादी भारत विरोधी गतिविधियों, हथियारों की तस्करी, सीमा पार घुसपैठ, आतंकवादी संगठनों की मदद, धन जुटाने और आतंकियों की भर्ती जैसी गतिविधियों में शामिल हैं। इन व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित किए जाने के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA इनकी आर्थिक गतिविधियों पर रोक लगा सकेंगी, हथियारों की खरीद बिक्री पर प्रतिबंध और उनकी संपत्तियां जब्त कर सकेंगी। वर्ष 2019 में गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम में संशोधन लागू होने के बाद से केंद्र सरकार अब तक 80 व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित कर चुकी है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: व्यापक पायरेसी की खबरों को देखते हुए सरकार ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और OTT कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार प्लेटफॉर्म को 15 दिनों के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा गया है। इस कदम का उद्देश्य भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था, फिल्म उद्योग, प्रसारकों, OTT प्लेटफॉर्म निर्माताओं और वितरकों की रक्षा करना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि खिलौनों के आयात में भारी गिरावट आई है और घरेलू खिलौना बाजार में देश में ही बने उत्पादों की हिस्सेदारी बढ़ गई है। नई दिल्ली में आयोजित 17वें टॉय बिज इंटरनेशनल B2B एक्सपो को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारतीय खिलौना निर्माता राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी की सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि भारत का खिलौना उद्योग जमीनी स्तर पर रचनात्मकता, नवाचार, उद्यमिता और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र देश की लोकल से ग्लोबल पहल का एक सशक्त उदाहरण बनकर उभरा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया के अंतर्गत गणना प्रपत्र जमा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने सभी पात्र मतदाताओं से इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने को कहा है। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता BIA आज से लागू हो गया है। इस समझौते पर पिछले वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे। वित्त मंत्रालय ने बताया कि यह समझौता द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सुरक्षित तथा निवेश का अनुमानित वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मंत्रालय ने बताया कि BIA से सीमा पार निवेश गतिविधियों में वृद्धि होने और भारत तथा इसराइल के बीच आर्थिक साझेदारी और मजबूत होने की उम्मीद है। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में भारतीय सेना की एक विशेष चिकित्सा टुकड़ी तैनात की है।

0: वेनेजुएला के विदेश मंत्री इवान गिल ने भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने आज भूकंप प्रभावित लोगों के इलाज के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत स्थापित भारतीय सैन्य फील्ड अस्पताल का दौरा किया। ये अस्पताल वेनेजुएला के लोगों को 24 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरू के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने पर केकी फुखिमोरी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत पेरू के साथ अपनी घनिष्ठ मित्रता को बहुत महत्व देता है और विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद अली खामनेई को तेहरान में सुपुर्दे खाक करने के 6 दिन के राजकीय कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं। ईरान के वरिष्ठ नेताओं, सैन्य कमांडरों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने तेहरान के ग्रैंड मोसल्ला में आयतुल्ला अली खामनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। समाचार सेवा प्रभाग विशेष श्रृंखला में प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत देवेंद्र सूरा के साथ परिचर्चा प्रस्तुत कर रहा है।
1: चंडीगढ़ शहर अगर सुंदर है तो पेड़ पौधों की वजह से है, तो मेरे मन में आया क्यों ना इस प्लान से हम भारत के हर गांव को हरा भरा बनाएं। मातृशक्ति ने वहां के जो भी सम्मानित या जितने प्रिंसिपल सभी ने भागीदारी दिखाई, अब भी बेटी के नाम के आगे ऊपर लिखना है माता का नाम। जनता नर्सरी बनाई है, उसमें फ्री में पेड़ दिए जाते हैं। ये कार्य तो अभी शुरू हुआ है, अंतिम सांस तक इस अभियान को मतलब एक बड़ी खुशी से और समर्पित भाव से चलता रहेगा।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: ये परिचर्चा आज शाम 5:10 पर आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रसारित की जाएगी। इसे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। इसका पुनः प्रसारण कल सुबह 10:30 भी होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में कल मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। महाराष्ट्र से हमारी संवाददाता ने बताया है कि कई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है।
3: मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और सातारा, पुणे व नासिक के घाट इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी और पालघर जिलों की नदियों में जल स्तर बढ़ रहा है और अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। मुंबई शहर और आसपास के इलाकों में आज लगातार 5वें दिन जोरदार बारिश जारी है। बारिश की वजह से स्कूलों और कॉलेजों में दोपहर की क्लास के लिए छुट्टी घोषित कर दी गई है। नगर निगम ने लोगों से अपील की है कि वे तभी घर से बाहर निकले जब बहुत जरूरी हो। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं आनंद पाठक।
4: क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। फीफा विश्व कप में कोलंबिया ने घाना को 1-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। अब अगले दौर में उसका मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। वहीं मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने अतिरिक्त समय तक चले रोमांचक मुकाबले में कार्बो वर्डे को 3-2 से हराकर अंतिम 16 में जगह बना ली है। अर्जेंटीना के लिए लियोनल मेसी ने टूर्नामेंट का अपना 7वां गोल किया।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बालोतरा में भारत का पहला ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर देश को समर्पित किया। उन्होंने जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत पाकिस्तान स्थित 23 लोगों को आतंकवादी घोषित किया। सरकार ने बड़े पैमाने पर पायरेसी की रिपोर्ट मिलने के बाद मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने को कहा। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता आज से लागू और भारत इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा देश के सूर्य।

सुबीर सेन और लता मंगेशकर को आपने सुना। फिल्म का नाम था छोटी बहन। गीतकार थी हसरत जयपुरी और संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने।

0: लता मंगेशकर की आवाज में अभी आपने फिल्म अमरदीप का ये गीत सुना। राजेंद्र कृष्ण की रचना थी और सी रामचंद्र का संगीत था। विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा होगी।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। श्रोताओं, हम आपको एक बार फिर बताना चाहेंगे, जो गीत अभी आप सुन रहे थे वो आशा भोसले की आवाज में था। फिल्म का नाम था आखिरी दाव। गीतकार मजरू सुल्तानपुरी थे और संगीतकार थे मदन मोहन। और अब जो गीत आप सुनने वाले हैं वो है फिल्म अमरदीप से, आवाज लता मंगेशकर की, राजेंद्र कृष्ण की रचना है और सी रामचंद्र की धुन है।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: मैं और हिमेश भाई कहीं टाउन जा रहे थे तो मेरे को हिमेश भाई बोले, सर कोई ऐसा वर्ड बताओ जो अभी तक नहीं आया हो। मैं ऐसा कोई वर्ड नहीं है। फिर अचानक मुझे आया, हाँ सर एक वर्ड है, बर्दाश्त। तो सर ये बनाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकता, दूसरी लाइन की अब दूर नहीं रह सकता। तो उन्होंने तीसरी खुद कह दी, तेरे बिन, और हमारा गाना बन गया।
2: बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब दूर नहीं रह सकता, एक बिन तेरे बिन।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 4 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। फिल्म हावड़ा ब्रिज का दो गाने सुनिए। गाने वाले कलाकार आशा भोसले और मोहम्मद रफी हैं, शब्दकार कमर जलालाबादी और धुन बनाई है ओपी नैयर ने।
3: मोहब्बत का हाथ

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: फिल्म काला पानी का गीत सुनिए, आवाज लता मंगेशकर की। इस गीत को मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखा है और तर्ज बनाई है सचिन देव बर्मन ने।

आशा भोसले की आवाज में अभी आपने फिल्म फागुन का गीत सुना। इसे कमर जलालाबादी ने लिखा था और ओपी नैयर ने धुन बनाई थी। इस गाने के साथ ही आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम मन चाहे गीत लेकर हम उपस्थित हो रहे हैं। प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गानों का कार्यक्रम मन चाहे गीत। मन चाहे

0: की।
1: मन चाहेगी
2: मनचाहे गीत कार्यक्रम में लेकर हाजिर हूँ आपकी दोस्त मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
3: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
4: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
3: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
4: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
5: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
3: कार्यक्रम मन चाहेगी,
4: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
5: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।
2: प्रस्तुत है कार्यक्रम मन चाहे गीत। आप सबकी पसंद पर कार्यक्रम का पहला गीत सुनने के ख्वाहिशमंद है आप सभी। ये हैं सदर नागपुर से कमल गोलचा, अंकित, अभिषेक, प्रेमलता गोलचा और इनका पूरा परिवार। अगला खत हमें मिला है कोलार रोड भोपाल से। लिखने वाले हैं रामबाबू मालवीय, मनीषा, शीतल, उमंग मालवीय और इनके परिवार वाले। ये खत है ग्राम पंचायत काले गांव जाफाबाद से श्री सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे, कुमारी संचित वायल का और मोताड़ा से कुमार प्रथमेश देशमुख, कुमारी प्रणाली देशमुख का। आप सभी सुनना चाहते हैं लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म खानदान का गीत। गीतकार हैं नक्श लायलपुरी और संगीत खयाम साहब का।

यह आवाज थी लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम था खानदान। अगला गीत सुनना चाहते हैं। आप सबने हमें खत लिखा है, ये है काशी निवास बंगाली नागपुर से प्रकाश रंबाड़े, भारती रंबाड़े, हर्षेल रंबाड़े, वैष्णवी रंबाड़े, जानवी रंबाड़े और बनर्जी और इनका टोनी बारूकर, ललिता बोरकर इनके साथी हैं ये। इन सभी के साथ मिलकर ये गीत सुनना चाहते हैं। आप हैं रावर करनाल से ज्ञानभूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया। ये खत हमें मिला है गौतम नगर नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले, आरती जोंधले और इनके परिवार वालों का। और ये है नसवाला चौक मलकापुर से संजय पाटिल, उषा पाटिल, प्रथमेश, निवृत्ति क्षीर सागर और संजय चौहान। आप सभी अपनी पसंद का गीत सुनना चाहते हैं। फिल्म का नाम है धर्मात्मा, आवाज किशोर कुमार की। गीत को इंदिवर ने लिखा है और तर्ज कल्याण जी आनंद जी की है।

किशोर कुमार को आपने सुना, फिल्म का नाम था धर्मात्मा। अगले गीत की फरमाइश की है आप सभी ने। ये है हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैजल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल, नफीसा प्रवीण। ये खत हमें लिखा है बीड शहर से रंजीत कुमार नामदेव, थोराल प्रकाश दादा और इनके परिवार वालों ने। जिला नांदेड़ शहर से प्रकाश जैन, सूरज जैन और संगीता जैन ने यह खत लिखा है और इसी गीत को सुनना चाहते हैं। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, विमला अनेजा हमारे नियमित श्रोता। आप सभी सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म पगला कहीं का गीत। गीतकार हसरत जयपुरी हैं, संगीतकार शंकर जयकिशन हैं।

यह अवस्थी मोहम्मद रफीकी और फिल्म का नाम था पगला कहीं का। विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मनचाहे गीत। अगला गीत सुनने के ख्वाहिशमंद आप सभी उड़नताल बिलासपुर छत्तीसगढ़ से श्यामता प्रसाद गायकवाड़, हेमलता, जागृति, सरला, आकांक्षा, समीर और इनका गायकवाड़ परिवार। आप हैं सदर नागपुर से कमल गोलछा, अंकित, अभिषेक, प्रेमलता और इनका पूरा गोलछा परिवार। और ये खत हमें मिला है रावर करनाल से ज्ञानभूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया का। गांव दलपतपुरा से सुनने वाले हमारे नियमित श्रोता हैं दुर्गा देवी, हरि सिंह, प्रेम, बलबीर सिंह, अनिल, अनुप्रिया और इनके परिवार वाले। आप सभी मिलकर सुनना चाहते हैं अभिमान फिल्म का दो गाना, आवाजें मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की, गीत रचना मजरूह सुल्तानपुरी की और धुन सचिन देव बर्मन की।

मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में अभी आपने फिल्म अभिमान का ये दो गाना सुना। और आइए अब सुनते हैं आप सबकी पसंद पर ये गीत। फिल्म का नाम है गैम्बलर, आवाजें किशोर कुमार और लता मंगेशकर की, शब्दकार नीरज हैं और संगीतकार हैं सचिन देव बर्मन। सुनने के लिए आप सभी ने हमें खत लिखा। चंडीगढ़ से आप हैं शेफाली, शेफी अरोड़ा, मास्टर डेविस बिमला, सतीश अनेजा और इनके परिवार वाले। ये खत आया है शीतला नगर दुर्ग से शिव चंद्राकर, भगवान चंद्राकर, अर्पा पैरी, पार्वती, राधा चंद्राकर का, और जिला बड़ौदा बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से नीतीश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, तनुजा देवांगन और ईशांत देवांगन का। आइए आप सभी मिलकर सुनिए फिल्म गैम्बलर का ये दुगाना।

0: इस युगलगान के साथ ही आज का फरमाइशी फिल्मी गानों का कार्यक्रम मनचाहे गीत अब समाप्त होता है। आज का ये कार्यक्रम आपके लिए पेश किया मंदाकिनी जोशी ने।
1: मनचाहे गीत।
2: मनचाहे गीत।

0: निर्देशक चिरंजीव।
1: विदिशा के राज प्रासाद की संगीत शाला में नृत्य सीखती हुई अनुपम सुंदरी मालविका की नूपुरों की ये मधमाती ध्वनि। नव वसंत की मादक बेला में शुंग वंशीय विदिशापति महाराज अग्निमित्र के प्रेम पीड़ित मन को ये ध्वनि तड़पा रही थी, अधीर और पागल बना रही थी। महाराज अग्निमित्र ने मालविका का अभी चित्र ही देखा था, साक्षात दर्शन नहीं किए थे, परंतु चित्र से ही उन्हें विश्वास हो गया था कि मालविका जैसी अनुपम सुंदरी न बड़ी रानी धारणी है न छोटी रानी इरावती। पूछने पर पता चला कि वो लड़की महारानी धारणी की एक नई दासी मालविका है। उसे महारानी के भाई और राज्य के सीमावर्ती दुर्ग के रक्षक वीरसेन ने अपनी बहन की सेवा के लिए भेजा था। चित्र पर गड़ी अपने पति की लुब्ध मुग्ध दृष्टि के मर्म को महारानी धारणी तुरंत समझ गई। उसी दिन से उसने ऐसा कड़ा प्रबंध किया कि मालविका संगीत शाला में ही बंद रहे, ताकि वो महाराज अग्निमित्र की आंखों के सामने न जा सके। और उसी दिन से महाराज मालविका की एक झलक पाने को तरस रहे थे।
2: मित्र गौतम, जिसका चित्र इतना सुंदर है वो स्वयं कितनी सुंदर होगी। शीघ्र ही कोई ऐसा उपाय करो कि हम मालविका को अपनी आंखों से साक्षात देख सकें।
1: गौतम नामधारी विदूषक उपाय ढूंढने में लग गया। मालविका से मिलने को व्याकुल महाराज अग्निमित्र का मन राजकाज में भी नहीं लग रहा था। वैसे भी पड़ोसी विदर्भ के राजा यज्ञसेन से बहुत ही रुष्ट थे, उससे उनका पुराना वैर था। अग्निमित्र ने उसके चचेरे भाई कुमार माधव सेन को अपने साथ मिला लिया था। तय पाया था कि माधव सेन की बहन का विवाह विदिशापति महाराज अग्निमित्र से होगा। इसी उद्देश्य से कुमार माधव सेन अपनी बहन को विदिशा ला रहा था कि विदर्भ राज यज्ञसेन ने रास्ते में ही उसे उसके परिवार सहित बंदी बना लिया। रुष्ट होकर अग्निमित्र ने जब यज्ञसेन से बंदियों को छोड़ने को कहा तो उसने बड़ी ही धृष्टता से उत्तर भेजा,
3: मंत्री जी पढ़िए पत्र।
4: महाराज, उस दुष्ट यज्ञसेन ने लिखा है, मैं आपको सूचित करना चाहता हूँ कि इस धरपकड़ में माधव सेन की बहन तो कहीं खो गई है। रही माधव सेन को छोड़ने की बात, सो आपने भी मेरे साले मौर्य सचिव को बंदी बना रखा है। यदि आप उसे छोड़ दें तो मैं माधव सेन को छोड़ दूंगा।
3: ओह, हमारे साथ ये यज्ञसेन अदला बदली का व्यवहार कर रहा है, ये दुष्ट ऐसे नहीं मानेगा। मंत्री जी, अपने सीमांत रक्षक वीरसेन को आज्ञा दीजिए कि वो सेना लेकर विदर्भ पर चढ़ाई कर दे और यज्ञसेन जैसे खोटे शत्रु को जड़ से उखाड़ कर फेंक दे।
1: इधर विदिशापति अग्निमित्र की सेना ने विदर्भ पर चढ़ाई की, उधर अग्निमित्र के पिता और शुंग वंश के संस्थापक सेनापति पुष्यमित्र का दिग्विजय का प्रचंड अभियान चल रहा था। सेनापति पुष्यमित्र ने अपने जीवन काल में दूसरा अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प कर रखा था। और इधर अग्निमित्र का ध्यान मालविका की ओर लगा था। उनके हृदय में संगीत शाला में नृत्य सीखती मालविका की चित्रांकित छवि बसी थी। बहुत सोच विचार के बाद महाराज के मित्र विदूषक ने मालविका को उनकी प्यासी आंखों के सामने लाने का उपाय ढूंढ लिया। संगीत शाला में गणदास और हरदत्त नाम के दो नाट्याचार्य थे। मालविका गणदास की शिष्या थी। दोनों नाट्याचार्यों में से कौन अधिक योग्य है, इस प्रश्न को लेकर विदूषक ने गणदास और हरदत्त के बीच झगड़ा करा दिया। दोनों महाराज के पास आए। निर्णय के लिए महाराज ने बड़ी रानी धारिणी

नाट्य तरंग कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है नाटक मालविकाग्नि मित्र। महाकवि कालिदास के मूल संस्कृत नाटक का हिंदी अनुवाद किया है सीताराम चतुर्वेदी ने। रेडियो नाट्य रूपांतरकार एवं

और राज प्रासाद में रहने वाली पंडिता कौशिकी नाम की परिव्राजिका को बुला लिया। परिव्राजिका से विदूषक ने पहले ही साठगांठ कर ली थी, उसी को तटस्थ मानकर निर्णय का कार्यभार उस पर सौंपा गया। दोनों नाट्याचार्यों की योग्यता अयोग्यता की जांच के लिए ये तय पाया कि दोनों ही संगीत शाला में अपनी अपनी शिष्याओं का नाट्य कौशल राजा महारानी और परिव्राजिका कौशिकी के सामने प्रदर्शित करें। निश्चय हुआ कि सबसे पहले नाट्याचार्य गणदास अपनी शिष्या मालविका का अभिनय दिखाएं।

0: अति सुंदर।
1: महाराज देखा?
0: पितृ गौतम, इसे साक्षात देखकर हम सोचने लगे हैं कि चित्रकार ने ठीक ध्यान से इसका चित्र नहीं बनाया।

0: इसने तो इस केक के बहाने अपने आप को आप पर न्योछावर कर डाला।
1: मैं भी यही समझता हूँ। सब इसने हमको संबोधित करके कहा है कि ना तुम पशु पर अपनी ही समझो।
2: मालविका अब तू जा।
3: ठहरो ठहरो ठहरो, अभिनय में कुछ भूल रह गई। मैं पूछना चाहूंगा कि अच्छा पहले कौशिकी जी आप ही पूछ लीजिए।
0: महाराज जी भर कर
4: मैं क्या पूछूंगी, मैंने तो जो देखा है उसमें कहीं कोई दोष दिखाई नहीं दिया। मालविका ने गीत के सब भावों का ठीक ठीक अर्थ अंगों के अभिनय से भली भांति दिखा दिया है। आपका क्या विचार है महाराज?
1: मेरा विचार हम हरदत्त जी के अभिभावक हैं और गणदास जी की अभिभाविका हैं महारानी। जो देखा है उससे अपने पक्ष का हमारा अभिमान कम हो गया है।
2: गणदास जी, अपने परीक्षकों को संतुष्ट करने के लिए आपको बधाई। और हाँ आर्य गौतम, तुम क्या कहना चाहते हो?
3: महारानी, मुझे तो गणदास से ही एक बात कहनी है। जब पहले पहल अपनी सिखाई विद्या का लोगों के सम्मुख प्रदर्शन किया जाता है तो सर्वप्रथम हम जैसे ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए।
4: वाह, क्या नाट्य कला के मर्म की बात पूछी है।
1: मालविका की ये मुस्कुराहट, हमें तो मनचाही वस्तु देखने को मिल गई।
3: मालविका, जब भगवती कौशिकी ने तुम्हारे अभिनय को निर्दोष और सुंदर कह दिया तो लाओ मैं भी तुम्हें पुरस्कार स्वरूप महाराज का यह स्वर्ण कंगन देता हूँ।
2: ठहरो गौतम, दूसरे पक्ष का अभिनय देखे बिना तुम पुरस्कार स्वरूप ये कंगन कैसे दे सकते हो?
3: दे दूसरे का है यही समझ कर दे रहा हूँ।
2: गणदास जी, आपकी ये शिष्य अपना अभिनय दिखा चुकी, अब इसे अपने साथ ले जाइए। जाओ मालविका।
5: जो आज्ञा।
3: लीजिए महाराज, जहाँ तक मेरी बुद्धि की सामर्थ्य थी मैंने आपका काम कर दिया।
1: क्या कहते हो मित्र, उसके जाने से मुझे ऐसा लग रहा है मानो मेरी आंखों का भाग्य फूट गया हो, मेरे हृदय का उल्लास ठंडा पड़ गया हो, मेरे धैर्य का द्वार बंद हो गया।
3: ओहो महाराज, आप तो निर्धन रोगी की तरह ये भी चाहते हैं कि व्यक्ति ही अपने पास ही औषधि भी दे।
2: आर्य पुत्र, अब हरदत्त की शिष्या का भी अभिनय देख लिया जाए।

0: जो देखना था सो देख लिया। क्यों नहीं, हम तो देखने को उतावले हो रहे हैं।
1: तो हरदत्त जी, अब आप अपनी शिष्या को बुलाइए और

0: अरे अब तो हम लोगों के भोजन का समय हो गया। वैद्यों का कहना है कि समय पर भोजन ना करने से बड़ी हानि होती है।
1: तो हरदत्त जी, आपके शिष्या का अभिनय हम कल ही देख पाएंगे, आप जाकर विश्राम कीजिए।
2: ओह आर्यपुत्र, मैं भी जाकर आपके भोजन की व्यवस्था करती हूँ।
3: महाराज, अब मुझे भी आज्ञा दीजिए, आपका कल्याण।
0: महाराज, सुंदरता में ही नहीं कला में भी मालविका अद्वितीय है।
1: मित्र, सच पूछो तो विधाता ने सहस सुंदरी मालविका को ललित कला का ज्ञान क्या दिया। मानो इसके हाथों में कामदेव का विष बुझा बाण ही दे दिया हो। अब तुम हमारी कोई चिंता करो ना।
0: इस समय तो महाराज आप मेरी चिंता कीजिए, भूख के कारण मेरा पेट हलवा की कढ़ाई की तरह जल रहा है।
1: मित्र, शीघ्र कोई ऐसा उपाय करो कि हम मालविका से मिल सके।
0: महाराज, कठिनाई तो ये है कि बादलों में छिपी चांदनी की तरह मालविका का दर्शन भी तो दूसरों के हाथ में है, और इधर आप हैं कि मांस विक्रेता की दुकान पर मंडराने वाले गिद्ध की तरह उस पर ललचाए हुए भी हैं और साथ ही डरते भी हैं। आपकी ये घबराहट।
1: हम घबराहट क्यों ना हो, वो तिरछी चितवन वाली हमारे हृदय में ऐसी बसी है कि रानीवास की तमाम रानियों से हमारा मन एकदम उचाट हो गया है। मित्र गौतम, सोचा कोई उपाय?
0: उपाय हाँ, महारानी धारणी की दासी बकुला वलिका, उसी से सहायता लेनी होगी।
1: हम उसे मालामाल कर देंगे।
0: बकुला वलिका, समझ गई ना, यदि तुम महाराज का ये काम कर दो तो तुम्हें मालामाल कर देंगे। हाँ
4: आर्य गौतम, महाराज से आप निवेदन कर दीजिएगा कि मुझे ये काम सौंप कर उन्होंने मुझ पर बड़ी कृपा की है, पर बेचारी मालविका को महारानी धारणी ने वैसे ही अपनी कड़ी निगरानी में रखा हुआ है जैसे कोई सांप खजाने पर कुंडली मारे बैठा हो। फिर भी मैं जतन करूंगी। हाँ
2: अरे मालविका, तुम आ गई।
5: दासी सेवा में उपस्थित है देवी। पांव में क्या बहुत कष्ट है?
2: ओ, इस दुष्ट गौतम के नटखट बन से मैं झूले से गिर पड़ी हूँ। दोनों पांव में ऐसी चोट आई है कि मैं उठकर चल फिर भी नहीं सकती। उधर मुझे अपने प्यारे सुनहले अशोक वृक्ष की चिंता है। आज वसंतोत्सव है और उसमें अभी तक फूल नहीं आए। उसे किसी सुंदरी का पदाघात अपेक्षित है। यदि मैं स्वस्थ होती तो ये काम मैं स्वयं ही करती। अब मैं ये काम तुम्हें सौंपती हूँ।
5: मेरा अहोभाग्य जो देवी ने मुझे इस योग्य समझा।
2: तो तुम बकुला वालिका के साथ प्रमद बन जाओ।
5: जो आज्ञा।
2: यदि तुम्हारे पदाघात से मेरे सुनहले अशोक में 5 दिनों के अंदर अंदर फूल आ गए तो मैं तुम्हें मुंह मांगा पुरस्कार दूंगी।
0: ये लीजिए महाराज, हम प्रमद वन में पहुंच गए। तुमने देखे तो महाराज, प्रमद वन की लक्ष्मी ने आपको लुभाने के लिए ही युवतियों के 16 श्रृंगार को भी मात करने वाला जो वसंत के फूलों का श्रृंगार किया है।
1: हाँ, हम देख रहे हैं वसंत की अनुपम शोभा। सुनो मित्र, इस मधुर कोकिल सर द्वारा वसंत ऋतु हमसे मानो पूछ रही है, क्यों प्रेम की पीड़ा से नहीं पा रहे हो क्या?

0: पिया। हे कामदेव, कहां तो एक और जी को ढारस देने वाला तुम्हारा कोमल फूलों का धनुष, और कहां ये हृदय को भी मत डालने वाला प्रेम का रूप। ये ठीक ही कहा गया है कि जो जितने कोमल दिखाई देते हैं वो उतने ही कठोर होते हैं।
1: महाराज, तुम एक धीरे से काम लीजिए। आपका मनोरथ पूरा करने के लिए मैंने कुछ उपाय किया है।
0: हमारा तो किसी काम में जी नहीं लग रहा। आज ये पहाड़ सा दिन कैसे बीतेगा।
1: चलिए झूला गृह की ओर।
0: झूला गृह की ओर?
1: हाँ हाँ। अरे आप भूल गए, छोटी रानी इरावती ने अपनी दासी निपुणका द्वारा आज क्या संदेश भेजा था।

0: रावती ने अपनी दासी निपुणका द्वारा आज क्या संदेश भेजा था? रानी रावती ने कहलाया था कि वे वसंत आगमन के उपलक्ष में आज आपके साथ प्रमद वन के झूला गृह में झूला झूलना चाहती हैं, और आपने उनकी प्रार्थना मान ली थी।
1: हाँ, मान तो ली थी, परंतु
2: कैसी अचरज की बात है कि...
1: क्या हुआ?
0: उधर देखिए महाराज, उधर सीधे साधे वस्त्र पहने वृक्षों के बीच से कौन इधर चली आ रही है?
1: क्या क्या मालिका आ रही है?
0: और क्या,
1: तो समझो अब हमारे प्राण बच जाएंगे। जैसे दूर से सारस का शब्द सुनकर प्यासे पथिक को यह भरोसा हो जाता है कि वृक्षों के झुरमुट के पीछे अवश्य ही कोई नदी होगी, वैसे ही ये जानकर हमारे व्याकुल मन को भी बड़ा धीरज मिला है कि मालविका पास ही है।
0: लीजिए, वो पुष्प विहीन अशोक वृक्ष के नीचे आकर बैठ गई।
1: ये सीधे साधे वस्त्रों में पहले से भी अधिक सुंदर लग रही है। देखो मित्र, इसमें इन्हीं गिने आभूषण पहने हुए हैं, गाल एकदम पीले हैं, लगता है जैसे वसंत से परिपक्व पत्तों वाली किसी कुंदलता में इन्हीं गिने फूल बचे रह गए हों।
0: तो इसे भी आपके जैसा ही प्रेम का रोग लग गया होगा महाराज?
1: मित्रों को ऐसा ही सुझा करता है। अरे, मालिका अपने आप कुछ कह रही है, आओ मित्र, हम लोग पास वाली उस लता के पीछे छिपकर सुने।
0: लेकिन महाराज, अब तो छोटी रानी इरावती भी आ रही होंगी।
1: मित्र, हाथी जब कमलिनी को देख लेता है तो उसे जल में छिपे घड़ियाल का ध्यान कहाँ रहता है। आओ उधर लता के पीछे।
3: दुर्लभ प्रिय है हृदय, छोड़ते तू मिलने की आशा। अरे हृदय, तू ऐसे की चाह क्यों करता है जिस पर ना तू अपना कोई अधिकार है, ना जिस तक अपनी पहुंच ही है। पूछे यूं सदा कर तुझे क्या मिल रहा है?
1: प्रीत की कैसी उल्टी रीत है मित्र, इसने अभी तक अपने मन की व्याकुलता का कारण खोलकर तो बताया नहीं, अनुमान से भी इसके मन की ठीक ठीक था नहीं लग पा रही। हम कैसे समझ लें कि यह हमारे ही लिए व्याकुल हो रही है?
0: महाराज, आपके मन का संदेह अभी दूर हो जाता है। वो देखिए, वो हमारे सहायका बकुला वल्का उसके पास पहुंच गई।
1: अरे, ये बकुला वल्का साज श्रृंगार की इतनी सामग्री और नूपुर काहे को लाई है?
0: अरे, आप भूल गए महाराज कि महारानी धारिणी पांव की चोट के कारण चल फिर नहीं सकती, और इधर उनका प्यारा अशोक वृक्ष अभी फूला नहीं।
1: अच्छा, तो अशोक पर पदाघात करने का काम मालविका को सौंपा गया है और उसी के लिए मालविका का श्रृंगार किया जाएगा।
2: और नहीं तो क्या आपके लिए?

0: सखी मालविका, महारानी ने तुम्हें जो काम सौंपा है उसके लिए बस तुम ही योग्य थी। हाँ लाओ अपना पैर इधर बढ़ाओ, मैं उसमें महावर लगाकर ये नूपुर पहना दूं।
1: लो सखी, ये सम्मान पाकर व्यर्थ भूल मत जाना। सखी तुम्हें आज मेरे पैरों का श्रृंगार करना पड़ रहा है, इसके लिए क्षमा करना।
0: वाह तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे कोई पराई हो।
1: अरे तुम तो मुझे देह प्राण जैसी प्यारी हो।
0: हाँ
2: मित्र गौतम, प्रिया के पैर में महावर की जो रेखा खींची है वो ऐसी दिखती है मानो महादेव के क्रोध से जले कामदेव रूपी वृक्ष में नई खोपलें फूट आई हो।
3: और जैसे इसके चरण सुंदर है महाराज, वैसा ही इसे काम भी सौंपा गया है।
2: ये ठीक कहा तुमने, इस सुंदरी के सुंदर सुकुमार चरण या तो फूलने की इच्छा करने वाली इस अनफूल

0: ले अशोक पर पढ़ने योग्य हैं या प्रेम में अपराध करके सिर झुकाने वाले प्रेमी के सिर पर पढ़ने योग्य हैं।
1: तो समझ लीजिए महाराज, यदि आप ही अपराध करेंगे तो यही चरण आप पर भी पड़ेंगे।
0: मनचाहा भविष्य बताने वाले ब्राह्मण देवता का आशीर्वाद सिर माथे।
2: अरे निपुणिका, आर्य पुत्र तो यहाँ झूला गृह में कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे।
3: आर्य गौतम ने तो कहा था कि महाराज निश्चय यहाँ मिलेंगे। देवी ध्यान से देखिए, आपसे परिहास करने के विचार से महाराज यहीं कहीं छिपे बैठे होंगे। आइए उन्हें ढूंढे।
2: अरे मदिरा कुछ इतनी चढ़ गई है कि आर्य पुत्र को देखने की अकुलाहट होने पर भी पैर आगे नहीं बढ़ रहे।
3: तो आइए हम लोग उधर अशोक के तले प्रेमगुलता मंडप में बैठे।
2: अच्छा चल।
3: अरे ये क्या स्वामिनी?
2: क्या क्या हुआ रे निपुणिका?
3: हम चली थी आम की कोपल ढूंढने और काट लिया चींटियों ने।
2: अरे क्या कह रही है?
3: देवी तनिक उधर देखिए, उधर वहाँ अशोक की छाया में महारानी धारणी की दासी बकुलावलिका मालविका के पैर रंग रही है।
2: मालविका तो इधर आ नहीं सकती, आज इसे किसने इधर आने दिया?
3: मैं समझती हूँ कि पांव की चोट के कारण महारानी धारिणी तो आ नहीं सकती थी, इसलिए उन्होंने स्वयं ही अनफूले अशोक पर पदाघात करने का काम मालविका को सौंप दिया होगा। नहीं तो महारानी क्या कभी अपने नूप पर उतार कर इन दासियों को दे सकती थी?
2: हाँ हो सकता है, परंतु मैं सोचती हूँ कि
3: तो क्या महाराज को अब ढूंढिएगा नहीं?
2: पता नहीं क्यों मेरे पांव आगे नहीं बढ़ रहे। आ यहाँ आड़ में हो जाए, कुछ संदेह सा हो गया है, संदेह का निराकरण तो होना ही चाहिए। मालविका का ये साथ सिंगार, इन्हीं बातों से तो मेरा जी जल जाता है।
4: क्यों सखी, पैरों पर ये महावरी रंगाई पसंद आई?
2: अपने पैरों की प्रशंसा करते मुझे लाज लगती है सखी। अच्छा सखी ये तो बताओ कि श्रृंगार की इतनी बढ़िया कला तुम्हें सिखाई किसने?
4: सच सच कह दूं, ये कला मैंने स्वयं महाराज से सीखी है।
2: सच? बड़े भाग्यवान हो, इतने पर भी तुम्हें तनिक भी घमंड नहीं।
4: पर मैंने जो कुछ सीखा है वैसी कला दिखलाने योग्य तुम्हारे सुंदर चरण पाकर आज तो मुझे अवश्य घमंड हो गया है। हाँ
2: लो तुम्हारा एक पैर तो रंगा गया।
4: आहा, ये पैर तो लाल कमल के समान खिला पड़ रहा है।
2: लाओ अपना दूसरा पैर तो। मैं तो मनाती हूँ कि तुम सदा महाराज के अंक में रहो।
4: सखी ऐसी बेसिर पैर की बातें ना कहा करो।
2: जो कहना चाहिए वही तो कह रही हूँ। हाँ मैं तुम्हें प्यारी हूँ इसीलिए।
4: मुझे ही नहीं तुम महाराज को भी प्यारी हो।
2: ये सब झूठ है, उनका तो मुझ पर तनिक भी प्रेम नहीं।
4: सयानों का कहना है कि प्रेम की परीक्षा प्रेम से ही होती है।
2: हाँ क्या ये सब अपने मन से ही करती जा रही हो?
4: ये प्रेम पगे शब्द स्वयं महाराज ने अपने मुंह से कहे हैं।
2: सच? पर सखी उधर महारानी का व्यवहार देखती हूँ तो रही से ही आशा भी मिट जाए।
4: अरे पगली, भौरों के डर से कोई कानों में आम्रमंजरी पहनना थोड़े ही छोड़ देता है। लो इस पैर में भी महावर लग गया, अब इन दोनों पैरों में नूपुर पहना दूं? लो अब उठकर इस अनफूले अशोक की इच्छा पूरी करो।
2: अरे क्या सोच रही हो? सखी यदि कभी मुझ पर कोई विपत्ति आए तो मेरा साथ ना छोड़ देना।
4: अरे मेरा तो नाम ही बकुलावली का है, मैं तो जितनी ही अधिक मसली जाऊंगी उतनी ही अधिक सुगंध दूंगी।
0: वाह बकुलावली का वाह। मित्र बकुलावलिका ने बड़ी चतुराई से मालिका के मन की था लेकर हमारा प्रेम प्रस्ताव प्रस्तुत किया और उसके नाना करने पर भी उसे एकदम पक्का कर दिया। आज हमें विश्वास हो गया कि प्रेमियों के

0: प्राण सचमुच ही दूतियों की मुट्ठी में रहते हैं।
1: महाराज उधर देखिए, मालविका ने अशोक के कोमल पत्तों का गुच्छा कानों में लटका लिया और अब अपने बाएं सुंदर सजीले पांव से ये किया उसने अशोक पर प्रहार।
0: यदि इन चरणों की पूजा पाकर भी अशोक न फूला तो दोष इनके चरणों का नहीं, ये अशोक ही निकम्मा समझा जाएगा। मित्र, हम लोगों को किसी बहाने उनके पास चलना चाहिए।
1: तो आइए महाराज, मैं कुछ खेल खेलता हूं। मालविका, क्या हमारे प्यारे अशोक पर अपने प्यार से प्रहार करके आपने कोई अच्छा काम किया?
2: आई गौतम, महाराज भी
1: क्यों रही बकुला वालिका, सब कुछ जानती हुए भी तुमने इन्हें ऐसी धृष्टता करने से रोका क्यों नहीं?
2: आइए गौतम, मैं आर्य, इसने धृष्टता जानबूझकर नहीं की
3: जी।
2: महारानी धारणी की आज्ञा का ही इसने पालन किया है, फिर भी हम दोनों महाराज के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करती हैं।
0: अच्छा, तो कोई बात नहीं, उठो मालविका, हमारा हाथ पकड़ कर उठो।
1: ठीक है ठीक है ठीक है, महारानी की आज्ञा तो माननी ही चाहिए थी।
0: क्यों भद्री, तुम्हारा ये किसले कोमल बाया चरण अशोक वृक्ष पर लगने से दुखने तो नहीं लगा है? लजाओ नहीं विलासिनी, बोलो।
2: महारानी को जाकर सूचना दे कि उनके आज्ञा अनुसार हमने।
3: अरे पहले महाराज से जाने की अनुमति तो ले।
0: भद्री, तुम जा सकती हो, परंतु इससे पहले हमारी एक बात सुननी होगी।
4: मालविका अग्निमित्र महाकवि कालिदास के मूल संस्कृत नाटक का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतरण अभी आप सुन रहे थे। हिंदी अनुवाद सीताराम चतुर्वेदी, रेडियो नाट्य रूपांतरकार एवं निर्देशक चिरंजीत। आकाशवाणी दिल्ली की इस प्रस्तुति के साथ ही आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।
0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।
2: साइंस, लाइट, साउंड, कैमरा, एक्शन।
3: नमस्कार श्रोताओं, बॉम्बे टॉकीज में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सुप्रसिद्ध गीतकार सुधाकर शर्मा से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है मंदाकिनी जोशी ने। आइए सुनते हैं इस बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग।
4: बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में सभी सुनने वालों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज स्टूडियो में हमारे सामने एक खास मेहमान बैठे हैं। आप हैं सुधाकर शर्मा। स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है सुधाकर जी।
5: मंदाकिनी जी नमस्कार। मेरे सभी उन श्रोताओं को जिन्होंने मेरे गानों को सुन सुन के मुझे

0: विविध भारती के स्टूडियो तक पहुंचा।
1: सुधाकर जी, आपके हर गीत के पीछे एक कहानी छुपी हुई है और मुझे तो आप खुद एक बहुत बड़ी कहानी लग रहे हैं। कितनी सारी कहानियां, घटनाएं है ना, अनुभव
0: जी
1: आपकी जिंदगी से जुड़े हैं। हमारे श्रोता भी जानना चाहते हैं कि चुनरिया शब्द आपके लिए इतना लकी साबित हुआ और आपने इस चुनरिया पर लगभग 190 गाने लिख दिए हैं, लेकिन फिर भी जो है आप टाइप्ड नहीं हुए, तो इस शब्द में ऐसी क्या खासियत थी कि हर बार आपने नए गीत नए रंग में लिख दिए?
0: देखिए, ये मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ।
1: हाँ।
0: और हरियाणा में चुनरिया एक जेवर के रूप में मानी जाती है।
1: बिल्कुल।
0: तो मेरी माँ के पास भी एक चुनरिया थी, वो तीज त्योहारों पे ही सब ओढ़ा करती थी। तो मैंने पहले किसी लेडीज कपड़े का नाम सुना तो वो चुनरिया ही थी। तो मेरे जहन में वो एक बात थी। तो बड़ी ही ये लक और अनलक की बात ऐसी है कि जब ये पहली चुनरिया मेरी हिट हुई, ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम की, उसके बाद एक फिल्म और मिली हमको और वो फिल्म थी हेलो ब्रदर। उसमें भी सलमान भाई थे।
1: हाँ हाँ।
0: तो उसमें भी हमको एक गाना लिखने के लिए मिला। तो मैंने वहां फिर एक चुनरिया लिख दी, सर की जो सर से धीरे धीरे तेरी चुनरिया दिल ले गई।
1: बिल्कुल।
0: वो उससे भी बड़ा साबित हुआ।
1: हाँ।
0: और मुझे लगा कि ये शब्द मेरे लिए लकी है, क्योंकि दोनों गाने वही थे।
1: मतलब इस वाले गीत में कोई डिमांड नहीं थी प्रोड्यूसर डायरेक्टर की,
0: नहीं,
1: थी
0: नहीं
1: कि चुनरिया पर ही आपको
0: नहीं,
1: गीत
0: नहीं,
1: लिखना?
0: मैंने खुद लिखा। उन्होंने कहा कुछ ऐसा ऐसा एक रोमांटिक चीज। मैंने हिमेश भाई को रिक्वेस्ट किया कि हिमेश भाई, हमारी चुनरिया हिट हुई है तो एक चुनरिया और दे देते हैं, क्योंकि उसको तो 4-6 महीने हो गए और इसको बनने में साल भर लगेगा, तब तक वो ये आ जाएगी। और उन्होंने मेरी बात मान ली और ये हम किसी की चॉइस पे नहीं था, मेरा और हिमेश भाई का एक
1: आपस का
0: कॉल था और हमने ये गाना लिखा।

0: उसमें जो दूसरा गाना मैंने लिखा जो आप टाइप की बात कर रहे हैं, टाइप्ड में इसलिए नहीं हुआ कि मैंने ऐसा नहीं सिर्फ चुनरिया ही लिखी, लगभग 5000 गाने मेरे रिलीज हैं तो 5000 चुनरिया तो नहीं है। और मैंने हर चुनरिया अलग स्टाइल में लिखी,
1: बिल्कुल
0: अलग मैंने किया। लक की ऐसी बात है कि जिस म्यूजिक डायरेक्टर के पास भी मैं गया, जिस प्रोड्यूसर के पास भी गया, उसने कहा यार एक चुनरिया मेरे लिए भी।
1: अच्छा,
0: ऑन डिमांड पे चुनरिया चलती थी। ये ऐसा हुआ कि एक बार शानुदा एक फिल्म के प्रोड्यूसर और म्यूजिक डायरेक्टर थे, तो मेरे को वो मिले दिल्ली में। दिल्ली में जब मिले तो मैंने कहा दादा आप प्रोड्यूसर बन रहे हो, म्यूजिक डायरेक्टर भी हो, तो मैं गाना तो यार मेरे से लिखवाओ, तू लिखेगा? हाँ क्यों नहीं लिखूंगा, कल घर पे आ जा। साथ में ही फ्लाइट में थे हम लोग।
1: हाँ?
0: तो वो शायद कलकत्ता जा रहे थे, मैं यहाँ आया और अगले दिन मैं उनके पास चला गया और हम लोगों ने 6 गाने लिख लिए। 6 गाने के बाद उन्होंने मेरे को बोला था सुबह आना पड़ेगा 7 बजे, क्योंकि 10 बजे मैं रिकॉर्डिंग में जाऊंगा। मैंने कहा सर मैं कभी 7:05 पे नहीं आऊंगा, लेकिन एक बात मैं बताऊं उस आदमी की, टाइम का क्या पंक्चुअल आदमी है। मैं घर पे बेल बजाई तो दरवाजा भाई नहीं खोला,
1: कुमार सानू
0: वो जगह ही रहता था।
1: अरे,
0: और फुल तैयार, बाजा रखा, हाँ बोल। हम लोग बैठ जाते थे, सारा जब काम हो गया तो मेरे को बोलता है, शायद भाभी ने बोला, वो अंदर से एक आवाज आई कि कंप्लीट हो गए गाने के? हाँ। ना भाई साहब इसमें आपका वो लक्की गाना तो है ही नहीं, चुनरिया। और नेक्स्ट डे दादा ने फिर वो उस फिल्म में भी चुनरिया मुझसे लिखवाई।
1: तो कौन सा गाना था?
0: रंगली नी चुनरिया ऐसा एक गाना था। इत्तफाक से वो फिल्म में रिलीज नहीं हुआ, लेकिन वो अभी चलता रहता है।
1: तो आपने अभी जैसा कि बताया हिमेश रेशमिया के साथ बहुत सारे गाने कंपोज किए और वो सब सुपर डुपर हिट हुए। इनसे पहले आप किन किन संगीतकारों की संगत में आए, उनसे भी प्रभावित हुए होंगे, उनके भी कुछ अनुभव आपसे जुड़े होंगे?
0: जी, मैंने पहले तो संगीत के बेताज बादशाह शंकर जयकिशन, तो शंकर जी के साथ जुड़ा और उनके साथ फिल्म की मैंने, फिर एक फिल्म मैंने की कल्याण जी आनंद जी के साथ, लेकिन वो सिटिंग तक ही रह गए गाने, वो बाहर नहीं आए। एक फिल्म मैंने नैयर साहब के साथ भी की।
1: अच्छा,
0: ये सारी फाइलें जो है ना वो सब वो है जो इसमें मेरे गाने रिलीज नहीं हुए, बट उन लोगों का जो एक्सपीरियंस रहा, जो मैंने उन लोगों के साथ जो काम किया, उनसे मैंने सीखा बहुत। भले ही वो गाने मेरे नहीं आए, लेकिन मैंने सीखा बहुत। और सीखने की हद यहां तक थी मेरे अंदर कि मैं हमेशा जो है ये सोचता था कि अगर मेरे पास कोई काम आ रहा है तो मैं किस म्यूजिक डायरेक्टर को लूं। जैसे एक फिल्म मेरे पास आई जिसमें मैं डायरेक्टर भी था, फिल्म थी

0: पवन। तो मैंने कहा यार इसमें रविंदर जैन साहब को लेते हैं, तो मैं रविंदर जैन जी के पास गया। अब देखिए दादू से बड़ा राइटर मैं मानता नहीं, वो म्यूजिक डायरेक्टर और राइटर का अजीब कॉम्बिनेशन है। तो मेरे को सब लोगों ने डराया कि भाई वो उनको लेगा तो वो खुद ही लिखेंगे। मैंने कहा भाई वो तो है लेकिन चलो मैं बात करता हूँ। मैं दादू के पास गया और एक दिन तो मैं ऐसी बातचीत उनसे कर करा के चला आया। तो मेरे को उठते हुए पूछा उन्होंने, कह रहे क्या काम से आया था? मैंने कहा दादू एक पिक्चर मिली है मुझे, आपके साथ करना चाहता हूँ। और तो करना मैंने कब मना किया है। मैंने कहा लेकिन एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? गाने तू ही लिखेगा।
1: अरे क्या बात है।
0: हाँ बोले तो लिख लेना कोई बात नहीं, उसमें
1: हाँ
0: क्या है, कुछ नहीं लिख पाएगा तो मैं लिख दूंगा।
1: अरे वाह।
0: मैंने कहा दादा ठीक है लेकिन गाना मैं लिखूंगा।
1: हाँ
0: तो मैंने गाने लिखे और दादू ने म्यूजिक दिया और ये उनका बहुत बड़ापन था। उनके साथ जो बैठ के मैंने काम किया, और मैं ईमानदारी से बोलता हूं कि मेरी राइटिंग में भी उन्होंने कई जगह ऐसे सजेशन दिए कि तू चाहे तो इसको ऐसा कर ले, नहीं चाहता है तो तेरा ठीक है। लेकिन मुझे उसमें एक और सम्मान देते हुए उन्होंने मुझे एक सीख दी कि अगर भाई कुछ सीनियर लोग अच्छी बात करते हैं तो उसको मानना
1: मानना
0: चाहिए।
1: चाहिए।
0: उसके बाद मैंने दादू के साथ 3 पिक्चरें की, बाहर की पिक्चरें थी। मैं गीतकार था और प्रोड्यूसर को मेरे गाने पसंद आए तो बोले यार मैं रविंदर जैन से बात करूंगा, वो मेरे म्यूजिक डायरेक्टर हैं। जैन साहब ने मेरा कोई गाना रिजेक्ट नहीं किया। और एक दिन मुझे फोन करके एक फिल्म के लिए बोले, अरे तेरा एक कागज उड़ता उड़ता इधर आ गया है। मैंने दादू एक फिल्म में मैंने एक गाना लिखा है प्रोड्यूसर के लिए, वही आया होगा आपके पास। बोले हाँ कल रिकॉर्डिंग है आ जाना।
1: अरे वाह
0: तो इतने ग्रेट थे,
1: जी
0: वरना कहाँ रविंदर जैन और
1: जी
0: कहाँ सुधाकर शर्मा,
1: जी
0: क्यों मेरे गाने लेंगे वो।
1: सही
0: देखिए
1: बात है।
0: रविंदर जैन इतने महान थे कि मैं बताऊं कि उनके घर में जब हम जाते थे, कभी भी बांद्रा जब अगर हमको जाना है तो एक प्यारे भाई और एक रविंदर जैन, मतलब इनसे बिना मिले आ ही नहीं
1: जी
0: सकते।
1: जी जी
0: तो जैन साहब के घर जब भी हम लोग जाते थे तो जाते ही बोलेंगे, कह रहे वो शिमला वाले वो बने हैं चावल
1: अच्छा।
0: और कश्मीर का राजमा है,
1: अरे
0: एक प्लेट में ला के दे। मतलब वो इस बात को जानते थे कि ये स्ट्रगलर हैं, आए
1: हाँ
0: हैं,
1: भूख
0: भूखे
1: लगी
0: प्यास लगी
1: होगी
0: होगी और ये मांगेंगे नहीं। ये
1: बहुत।
0: बिना खाए उस रसोई से भाभी ने, जो उनकी मिसेज थी, वो और दादू हंसते हुए विदा करते थे।
1: बहुत खूब।
0: एक किस्सा मैं आपको बताता हूं, उससे पहले मुझे एक गाना आप सुनाइए।
1: हाँ
0: एक गाना है मेरा, फिल्म है शिखर,
1: गाना कौन सा है?
0: गाना है नीले नीले आसमां में तू है, जगजीत जी का गाया हुआ।

0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 135,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की
0: राजस्थान की भारत की ऊर्जा शक्ति, अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 135,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।
2: ये वो एक दौर का गाना है, इसका एक अजीब किस्सा है। इंडस्ट्री में मैं किसी भी लिरिक राइटर से मिलता था तो वो बोलता था, मैंने कहा भाई क्या चल रहा है, बोले मैं जॉन मैथ्यू की पिक्चर लिख रहा हूँ।
3: अच्छा।
2: किसी म्यूजिक डायरेक्टर से पूछूं, मैं जॉन मैथ्यू की पिक्चर लिख रहा हूँ। और मैं कहा सभी जॉन मैथ्यू साहब की पिक्चर लिख रहे हैं यार, तो यार क्या पिक्चर क्या होगी, अब कौन कर पाएगा वो मालूम नहीं। तो मुझे भी एक म्यूजिक डायरेक्टर, बरसात हो रही थी, सात बंगले में मिला कि सर मेरे लिए एक मुखड़ा और अंतरा लिख देंगे आप। मैंने क्यों, तो मुझे जॉन मैथ्यू को सुनाना है।
3: अच्छा।
2: मैं बेचैन हो गया। हमने कहा भाई ये रास्ता सही है, मैं भी वहां तक जाना चाहता हूँ ना, लेकिन जरिया तो मिलना चाहिए कोई। मैंने वो गाना किया और मैं जॉन मैथ्यू साहब के साथ अटैच हो गया और वो पिक्चर मुझे मिली। ये गाना शिखर, सब गाने हो गए और जॉन साहब ने गाना पिक्चराइज कर लिया।
3: अच्छा।
2: म्यूजिक बीट पे कुछ भी बोल बाल के पिक्चर करके आ गए और मुझे बुलाया, कहा कि सुधाकर मैंने गाना शूट करके ले आया हूँ। बहुत ही म्यूजिकल आदमी है वो, और बहुत ही, मतलब मैं समझता हूँ कि मेरा अपना आकलन ये है कि मेरी जिंदगी में नंबर वन राज कपूर साहब और बिल्कुल पैरेलल जॉन मैथ्यू साहब, जो उनकी सोच, उनकी डायरेक्शन, उनका सब। तो मैंने कहा सर आप शूट करके आ गए, अभी मैं क्या लिखूंगा। बोले यही तो होना चाहिए, आप तो बोल रहे थे मैं कुछ भी करता हूँ, मैं ये करता हूँ। और उससे पहले मेरी ट्यूनिंग इसलिए हो गई थी कि मेरे 5 गाने तो सिलेक्ट हो चुके थे। अब मैं सोचा ये गाना अगर मेरे हाथ से गया तो फंस जाऊंगा ना। तो मैंने कहा सर एक काम कर सकते हैं आप, गाना मुझे दिखाइए आप। तो इन्होंने मुझे कहा कि आप देख लीजिए। तो एडिटर मुझे दिखाने लगा, तो मैंने कहा सर एक सजेशन है मेरा। हाँ बोलो। हमने कहा ये शॉट यहाँ से हटा दीजिए आप, और इसको यहाँ लगाइए और इसको यहाँ लगाइए
3: जी।
2: तो एडिटर बोला इससे क्या होगा। जॉन सर बोले नहीं ये जो कह रहे हैं पहले वो करो। देखिए इतने बड़े डायरेक्टर और मैं कुछ भी नहीं, देखिए उनका पेशेंस ये था, चलो मैं ऐसे कर लूंगा फिर देखता हूँ ये क्या करता है। और वो हो गया, और जैसे ही हुआ तो मैंने कहा कि ठीक है अभी गाना हो जाएगा। तो मैंने गाना लिखा, नीले नीले आसमां में तू है, धरती की हलचल में तू है। वो हलचल में क्या था कि एक किसान हल चला रहा है।
3: अच्छा, धरती की हलचल।
2: हलचल। और फर्स्ट शॉट उनका था, वो नीला आसमां दिख रहा था, तो धरती की हलचल ये थी है। फिर एक फूलों का था, नीले पीले फूलों में तू है। ऐसा मेरे को सीक्वेंस मिल गया मुखड़े का। और मैंने गाना लिख दिया और ये विजू शाह ने बना दिया।
3: अरे वाह, संगीतकार विजू।
2: पहली बार मैं संगीतकार विजू शाह के साथ काम कर रहा था। तो विजू भाई भी बहुत खुश हो गए, बोले यार ये तो अच्छा बनेगा। अब अच्छा बनेगा वो बनते बनते ही बनेगा। जगजीत जी ने जब ये गाना गाया, अब जगजीत सिंह ऐसा गाना गाएगा ये मैंने नहीं सोचा था। लेकिन वो जॉन मैथ्यू साहब बोल रहे थे कि मेरे लिए बड़े लक्की हैं, क्योंकि उनकी सरफरोश की गजल उनकी सुपर डुपर हिट हुई थी। तो मैंने कहा ठीक है, हम लोग फिल्म लाइन में एक शब्द से बहुत डरते हैं, वो होता है लकी। लकी शब्द किसी ने कह दिया तो हम चुप हो जाते हैं, अनलकी कह दिया तो डर जाते हैं। तो लकी सब में है ना।
3: हाँ।
2: दावा नहीं कर सकते
3: जी,
2: अपन
3: जी।
2: तो उन्होंने कहा नहीं वो मेरे लिए लकी है। मेरा ठीक है।
3: ओहो।
2: मेरे लिए भी लकी हो गए। उनका इस तरह का गाना, मतलब उन्होंने एक दिन मुझे मिले, मैंने कहा सर वो आपका जो गाना है ना DAV जयपुर स्कूल में प्रेयर बना हुआ है
3: जी।
2: बोले तू एक काम कर मेरे घर फोन लगा।
3: हाँ।
2: मैंने उनके घर फोन लगाया मिसेज को, वही गाने की ट्यून।

0: बज रही थी। तो ये
1: ओ
0: मेरे लिए एक बहुत बड़ा इनाम था।
1: बिल्कुल,
0: तो ये इस गाने की कहानी है,
1: बहुत
0: बहुत ही
1: सुंदर
0: खूबसूरत गाना था।
1: जी। और जगजीत सिंह की आवाज में
0: जी
1: ये
0: जी
1: गाना बहुत ही गहरा गाना बन
0: और
1: गया।
0: मेरे लिए मतलब वो एक तोहफा है उनका दिया हुआ, ये एक ही गाना उन्होंने मेरा गाया,
1: गाया।
0: उसके बाद कुछ हो नहीं सका।
1: सुधाकर जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे उन बातों को जानना जो हम सपनों में भी नहीं सोच सकते, और कहीं
0: जी
1: हमें ना पढ़ने को मिलेंगी ये
0: जी
1: बातें, ना जानने को
0: जी
1: मिलेंगी। एक गीत तो हम सुनेंगे आपसे, लेकिन मैं ये जानना चाह रही थी इससे पहले कि हिमेश रेशमिया के साथ आपने बतौर गीतकार बहुत काम किया, काफी गीत लिखे, आप दोनों ने मिलकर म्यूजिकल सिम्फनी भी बनाई थी, तो उसके
0: जी
1: बारे में भी हम जानना चाहते हैं। और हिमेश जी के साथ काम करने का जो ये अनुभव था, एक सफल अनुभव, ये कैसा था, ये भी हम जानना चाहते हैं।
0: मंदाग्नि जी, आपने एक्चुअल में दुखती रग पे हाथ रख दिया। हिमेश भाई एक तरह से मेरे जिंदगी में उस टाइम पे आए फरिश्ता बन के, जब मैं बहुत ही नर्वस था, बेकार था, और मुझे ये लग रहा था कि अब मुझे बंबई छोड़नी पड़ेगी।
1: अच्छा,
0: और वो काम करने का अनुभव ऐसा लग रहा था कि मैं एडजस्ट कैसे कर पाऊंगा, क्योंकि उनकी और मेरी उम्र में बहुत फर्क है। मैं उनके पिताजी का दोस्त हूं, उसकी उम्र मेरे बच्चों जैसी है। लेकिन हम लोगों ने तय किया कि वो मुझे सर बोलेगा, मैं उसे सर बोलूंगा, और हम लोग काम करेंगे।
1: जी
0: उनकी सबसे अच्छी बात यह है कि वो गाना जब बनाते हैं ना, खुद गाते हैं, वो गा के गाना बनाते हैं, तो उनको मालूम होता है कि ये शब्द जो जो मैं गा रहा हूं, इसका इम्पैक्ट क्या होगा। और वो ट्यून जो है ना, गा गा के बनाते हैं। वो ट्यून जो है ना, ऐसा नहीं कि वो किसी साज के मोहताज नहीं है,
1: अच्छा,
0: साज उनका मोहताज है।
1: अरे वाह।
0: वो गाना गाते हैं, गुनगुनाते हैं, और इतनी मेहनत करते हैं कि अगर उनको एक शब्द में ऐसा लगे, जैसे एक गाना था, मेरे को एक दिन बोले, गाड़ी में हम लोग जा रहे थे कहीं, वो गाना है बर्दाश्त नहीं कर सकता।
1: अरे वाह।
0: तो ये गीत की कहानी ऐसी है
1: हाँ
0: कि मैं और हिमेश भाई कहीं टाउन जा रहे थे, गाड़ी में बैठे हुए
1: हाँ
0: थे,
1: हाँ
0: तो मेरे को हिमेश भाई बोले, सर कोई ऐसा वर्ड बताओ जो अभी तक नहीं आया हो।
1: हाँ
0: मैं, ऐसा कोई वर्ड नहीं है यार,
1: हाँ
0: ऐसा थोड़ी है कि कोई वर्ड ऐसा हो सकता है जो आज तक आया ही नहीं हो। फिर अचानक मुझे आया, हाँ सर एक वर्ड है,
1: बर्दाश्त
0: बर्दाश्त। लेकिन ये अनम्यूजिकल है यार, इसको आप बनाओगे कैसे।
1: बिल्कुल।
0: बोला मैं बनाऊंगा। मैंने कहा देखिए, हर आदमी बोलता है ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये बर्दाश्त की हद हो गई, ये बर्दाश्त के आगे, बर्दाश्त
1: बिल्कुल,
0: के कितने हैं।
1: बहुत
0: तो सर ये बनाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकता।
1: क्या बात है,
0: फिर
1: बहुत
0: मैंने
1: खूब,
0: दूसरी लाइन की, अब दूर नहीं रह सकता। फिर
1: एकदम।
0: उन्होंने तीसरी खुद कह दी, तेरे बिन, और हमारा गाना बन गया, और ये सुपर डुपर हिट गाना हुआ।
1: गजब सर, गजब गाना। क्या तो के साहब और सुनिधि
0: बहुत
1: चौहान ने गाया है, और
0: सुंदर
1: क्या म्यूजिक और क्या वर्डिंग से सर।
0: ये गाना, एक बार सुनाइए आप।
1: तो चलिए सुनते हैं ये गाना।

0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।
0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।
0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।
2: तो भाई ये गीत तो सुधाकर जी हम बहुत बार बजाते हैं और इस गीत को सुनने के बाद तो एक अलग ही ऊर्जा हम अनाउंसर्स में भी आ जाती है।
3: ये कभी कभी कोई गीत जो है ना ऐसे भी बनता है। तो हिमेश जी के साथ काम करने का मजा इसी में था। वो इतना इन्वॉल्व होते थे, वो ऐसा नहीं करते थे यार इसको लिख के ले आना, बैठ के गाना बनाते थे। हम एक ही सोफे पे रहते थे, इस कोने पे वो और इस कोने पे मैं। उनको कुछ लगता था तो बोलते थे यार ऐसा कुछ सर बताइए, इसको निभाइए, इसको ऐसा कीजिए। तो वो जो गाइडलाइन होती है ना, वो हिमेश जी के बाद मुझे मिस होता है। वो अब जो है ना वैसा माहौल नहीं है। मैं
2: ये तो सर फीलिंग्स का एक मामला है, जहाँ एक संगीतकार और गीतकार बैठकर एक फीलिंग्स के साथ कोई चीज को क्रिएट कर रहे हैं।
3: लेकिन नहीं ला पाते ना। अभी बहुत दिनों बाद ऐसा होता है, मेरे एक म्यूजिक डायरेक्टर हैं सतीश देहरा, जो राजस्थान से ही हैं और काफी उन्होंने हिंदी में भी काम किया है। उनके साथ जब मेरी सिटिंग होती है तो बाकायदा रविंदर जैन की थेरी पे भी चलता है, वो उन्हीं का शागिर्द है। तो ढोलक भी होती है, वो बाजे पे होते हैं, मैं लिखता हूँ। जब वो सिटिंग होती है तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। बट ऐसा भी काम करना पड़ता है, वो बोलते हैं व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। तो मैंने व्हाट्सएप पे तो आज तक कोई गाना नहीं भेजा। मैं बोलता हूँ जब आपके पास टाइम हो आप मुझे टाइम दीजिए, मैं आ जाऊंगा और मैं आपके साथ करूंगा।
2: कितनी बड़ी बात है कि एक गीतकार खुद कह रहा है कि मैं आ जाऊंगा
3: वक्त दूंगा तभी तो गाना होगा। अभी हम लोग निखिल कामत के साथ में बैठा था तो उसमें अगम निगम साहब, वो
2: सोनू निगम जी के पिताजी
3: जी, वो गाना गा रहे हैं। तो बैठे बैठे हमने उनको भी फोन कर लिया, वो भी आ गए। तो आप यकीन कीजिए मुझे कोई शर्म नहीं है। वो करते करते एक सजेशन अगम साहब ने दे दिया कि यार यहाँ कुछ ऐसा होगा ना तो मजा आ जाएगा। हमने मान लिया। तो ये जो सिटिंगों का दौर है इसलिए वो गाने याद रहते हैं। अगर आप इस तरह से सिटिंग करेंगे कि आप मोबाइल पे भेज दीजिए मैं आप पे भेज दूंगा, तो आप कुछ नहीं कर सकते। हिमेश जी के साथ हमेशा मेरे को ये सब गोल्डन मिला कि हमने जितनी भी पिक्चरें की हमारी सब हिट हुई और हम लोग बैठ के गाना डिस्कस करते थे, हम लोग सजेशन भी देते थे, फिर हम सिंगर भी मिलके तय करते थे कौन गाएगा कौन नहीं गाएगा, वो गाएगा तो कैसा लगेगा, ये गाएगा तो कैसा लगेगा। और फिर हम लोग मतलब स्टूडियोज में भी साथ रहते थे, पूरा दिन हम साथ में रहते थे, कभी वो मुझे छोड़ते नहीं थे। बाद में मेरे पास गाड़ी भी आ गई थी तो बोलते थे इधर खड़ी कर दो, बैठो गाड़ी में, एक ही गाड़ी में मुझे लेके जाते थे।

0: घर पे लाके छोड़ते थे और मुझे इतना प्यार सम्मान दिया कि मैं बस वो मिस करता हूँ। काम तो चल रहा है, सबके चलते रहते हैं,
1: जी जी,
0: उसमें कोई
1: बहुत
0: बात
1: बड़ी
0: नहीं
1: बात
0: है।
1: आपने बताई कि किस तरह से एक गीतकार और संगीतकार और गायक कलाकार, उनके बीच में एक कॉम्बिनेशन, एक केमिस्ट्री होनी चाहिए,
0: जी
1: तब जाकर एक अच्छा गीत रचा जाता है। हम आपके बारे में जब पढ़ रहे थे तो पता चला कि आप जो अपने गीत लिखते नहीं है और वैसे ही बता देते हैं, मतलब कोई डायरी मेंटेन नहीं कर रखी है
0: नहीं नहीं
1: आपने,
0: नहीं
1: और
0: नहीं
1: आपसे कहा जाता है कि गीत लाइए, है ना,
0: हाँ जी
1: तो
0: जी
1: ऐसा कुछ आप नहीं करते हैं, ये कैसे होता है, अचानक गीत आप कैसे रच देते हैं?
0: ये मुझे भी नहीं पता। वो जो अचानक जो मेरे को सूझती है
1: हाँ
0: वो शायद ईश्वर का कोई देन है, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं कभी ऐसा कागज पे लिख के, अनु मलिक साहब कितनी बार मुझे बोले यार तू कुछ मुखड़े दे मेरे को, शायद उनको लगता होगा कि मैं क्यों नहीं देता, लेकिन मैंने हर बार यही बोला भाई मेरे पास मुखड़े होते ही नहीं, आप कोई सिचुएशन बताओ मैं घर आ जाता हूं मैं लिख दूंगा।
1: आपके पास कोई अपना रिकॉर्ड नहीं है गीतों का कि ये मेरे गीत हैं, डायरी के पन्ने पलट के अगर हम पढ़ें
0: नहीं
1: आपके
0: नहीं
1: गीतों
0: नहीं
1: को?
0: नहीं नहीं अभी मेरे बेटे ने कुछ कलेक्शन किया है,
1: हाँ
0: जो रिकॉर्ड हो गए वो हैं, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो मैंने एक आपको बताया कि लक और अनलक, बस वो उसी पे चलता रहता। एक बार क्या हुआ, मैं मतलब फर्स्ट टाइम प्यारे भाई के साथ काम करने गया था, तो मेरी एक आदत है, मैं हमेशा जहां भी जाता हूं तो ऐसे ही मैं बोलता हूँ हाँ भाई लिखो, तो वो लिखो जैसा शब्द जो है ना मेरा बहुत फेमस है,
1: हाँ
0: तो या तो म्यूजिक डायरेक्टर लिख लेता है या मेरे साथ मेरा कोई असिस्टेंट होता है
1: वो लिख
0: उसको
1: लेता
0: ले
1: है।
0: जाता हूं, मैं नहीं लिखता हूं।
1: अच्छा
0: और मैं अगर लिखता हूं तो गाना रिकॉर्ड नहीं होता, तो मैं डर के मारे भी नहीं लिखता, हमने
1: अच्छा
0: फायदा क्या इसका है, तो रिकॉर्ड ही नहीं होगा।
1: अच्छा
0: तो ऐसा है, और इसमें कुछ ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब वो जो चली आ रही है वो चली आ रही है।
1: हाँ हाँ
0: तो अभी मैं जब वहां पे गया तो उन्होंने एक ट्यून सुनाई तो मेरे मुंह से निकल गया लिखो, और मैं घबरा गया एकदम। मैंने कहा लिखो क्या, अभी तो बाहर ही निकाल देंगे। मैंने कहा सर वो मेरे पास कुछ पेन और कागज नहीं है, मैं सकपका गया। और वो इतने ग्रेट हैं, वो भी समझ गए कि इसने बोल दिया। मैंने कहा प्यारे भाई वो मैं लिखता नहीं हूं, तो उन्होंने कहा गोरख भाई इसका असिस्टेंट बन जा तू लिख ले, तो वो गाना गोरख भाई ने लिखा,
1: तो
0: मैंने नहीं
1: हाथों
0: लिखा।
1: हाथ आप पंक्ति लिखवा देते हैं,
0: बिल्कुल
1: आपको
0: लिखवा देता,
1: सिचुएशन बतानी पड़ती है, ये एक्टर
0: हाँ
1: है
0: जो
1: ये
0: भी
1: एक्ट्रेस,
0: सिचुएशन बताएंगे
1: बहुत खूबसूरत।
0: लिखूंगा। और फिर जब रिकॉर्डिंग होती है, मैं आज तक मैंने कोई रिकॉर्डिंग मिस नहीं की है,
1: हर रिकॉर्डिंग में
0: हर
1: आप रहते
0: रिकॉर्डिंग
1: हैं।
0: में मैं रहता हूँ, और रिकॉर्डिंग खोते वक्त भी मेरी चेंजिंग चालू रहती है। मुझे लगता है कि ये मैंने लिखा तो है लेकिन सुनने में अच्छा नहीं लग रहा, मैं क्रिटिक बन के अपना गाना सुनता हूँ रिकॉर्डिंग में, तो कई चीजें जो है ना उसमें मेरी इम्प्रूव हो जाती है।
1: तो कभी कोई ऐसा गीत आपने लिखा हो जो आपकी इच्छा के विपरीत रहा हो, आपकी इच्छा नहीं रही हो ऐसा गीत लिखने की, लेकिन प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, संगीतकार हैं, वो चाहते हो कि सुधाकर जी इस तरह का गीत लिख कर दें, ऐसी स्थिति कभी आई?
0: ऐसी स्थिति आई थी लेकिन मैंने वो छोड़ दी,
1: नहीं,
0: लिखा नहीं हमने। हमने कहा आप किसी और से लिखवा लीजिए, क्योंकि हम उसके साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। तो फिर मुझे वो जब मैंने छोड़ा तो मुझे ये लगा कि अगर मैं ऐसे छोड़ूंगा तो लोग मुझे छोड़ देंगे, एक दो बार की तो ठीक है। फिर मैंने अपने आप को तैयार किया कि नहीं, अगर कोई ऐसा भी चाहता है तो उसकी बात को सुनते हुए मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है वो सब मुझे कर लेना चाहिए। तो उसका जो है ना ये रहा कि जैसे कि मैंने एक पिक्चर में गीत लिखे, जैनियों की एक पिक्चर थी, अब उसमें जब मैं गीत लिख रहा था तो मुझे उस फिल्म में कहानी को गीत में पिरोना था, तो वो मुझे बताते थे कि भाई मेरे को ऐसा लाइन चाहिए, मेरे को ये लाइन ऐसी चाहिए, मेरे को ये चाहिए, वो डिक्टेट करते थे बाकायदा जो डायरेक्टर थे हमारे।
1: अच्छा
0: तो अब उसमें मैं बंध गया कि मुझे क्या करना है, बट मैंने वो भी लिखा और वो बहुत लोगों को पसंद भी आया। तो ऐसा होता तो है कि लोग जो है ना कुछ और लिखवाना चाहते हैं, लेकिन मोस्टली मैं ऐसे काम को छोड़ देता हूं कि भाई अगर मेरे से नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा तो काम करके क्या फायदा होगा, कुछ भी फायदा नहीं है।
1: तो एक गीत सुन लिया जाए आपकी पसंद का?
0: जी मेरी पसंद का एक गीत आप मुझे सुना दीजिए, ये है आपका तेरी चुनरी बन्नो लाखों की।

0: 5,000 गाने लगभग लिखे और रिलीज भी हो गए, 1500-1600 एल्बम, और राजस्थानी में आपने 36 फिल्में लिखी हैं अब तक।
1: जी जी।
0: इसके अलावा हरियाणवी फिल्में लिख चुके हैं आप 4-5, भोजपुरी में भी आपने 3-4 फिल्में लिखी हैं। तो इतना काम आपने किया, जैसा कि आपने बताया भी था कि मैं असिस्टेंट डायरेक्टर भी रहा, मैंने फिल्में भी डायरेक्टर की और साथ में आपने भजन भी लिखे हैं, इतने सारे काम सुधाकर शर्मा कैसे कर लेते हैं और इनके अनुभव क्या रहे इतने सारे चीजों को एक साथ लेकर चलने के?
1: होता क्या है कि हम खुद एक मुसाफिर हैं और हमारी मंजिल जो है ना वो बड़ी दूर है, मतलब ठिकाने मिलते हैं, मंजिल नहीं मिलती। मंजिल तो आज भी नहीं मिली
0: जी
1: लेकिन ये एक ऐसा विधा है कि इसमें आप जो है ना, जैसे कि जब राजस्थानी जो फिल्मों में मैंने गीत लिखे, मैं हरियाणा का हूं और राजस्थानी फिल्मों में मेरे सुपर डुपर हिट गाने हैं। वीना कैसेट कंपनी हमारे केसी मालू जी की है,
0: बिल्कुल,
1: वो अभी भी उनका मैं काम कर रहा हूं, वो साल में मेरे से एक दो काम हमेशा कराते हैं और बहुत सम्मान भी देते हैं और बड़ा मजा आता है उनके साथ काम करने में। तो जो अलग अलग भाषाओं का रंग है वो अगर आपने समझ लिया तो भाव तो सब में एक ही होता है, भाव कोई अलग नहीं होता।
0: जी
1: रही भजन की बात, तो चूंकि मेरी फैमिली, मेरे पिताजी, जब से मैंने देखा है कि वो हमेशा रामायण पढ़ते हैं और पता नहीं कितनी बार वो पढ़ चुके हैं। भजन के बारे में मैं एक खास बात आपको बताऊं कि मेरे बेटे का एक म्यूजिक कंपनी है ओडली के नाम से,
0: ओडली,
1: ओडली
0: अच्छा यहाँ पर
1: म्यूजिक,
0: भी चुनरिया आई,
1: चुनरिया अंडरस्टूड है।
0: हाँ जी
1: तो मैंने सोचा कि मैं अपनी इस कंपनी के लिए रामायण करूं, और ये रामायण करने का बीड़ा जब मैंने उठाया तो मैंने इसमें सिंगर चुने, अमित कुमार।
0: अरे वाह।
1: अब अमित कुमार को सिंगर जब मैंने लिया तो अमित कुमार खुद मेरे को बोले कि यार मेरे से तुम रामायण कैसे गवा रहे हो, मैं तो कोई भजन भी नहीं गाया तो मैं रामायण गाऊंगा कैसे। तो हमने कहा सर आप गा लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं, आप एक बार मन तो बनाओ। तो अमित जी मतलब लगभग 3-4 महीने हम लोग ऐसे ही जब भी मिलते कोई बात होती और वो होते, आखिर एक दिन तैयार हुए।
0: अच्छा।
1: और हम लोग घर पे गए तो मैंने एक ऐसा म्यूजिक डायरेक्टर लिया जो 25 साल रविंद्र जैन के साथ जिसने काम किया, जिसने गाया भी बहुत है और राजस्थान का सुपरहिट है, सतीश देहरा नाम है उसका,
0: जिनका जिक्र अभी आप कर
1: जिक्र
0: रहे थे।
1: किया। तो मैंने कहा यार सतीश मेरे लिए इतना काम कर दो यार।

0: उनको इसलिए लिया कि मैंने कहा तुम गाओ और उनको सिखाओ, वो आपको सुन के गाएंगे, सिर्फ ट्यून नहीं। सतीश जी पूरी पूरी चौपाई गा के उनको बताते हैं
1: अच्छा
0: कि भाई आप ऐसे गा दीजिए, और अमित जी पूरा उसको फॉलो कर लेते हैं। पहले पहले 2-3 सेशन हमारे मुश्किल गए, और अभी तो जो है ना वो बिल्कुल, कभी हम सोचते भी है ना, जैसे सतीश जी कभी बार बोल देते हैं थोड़ा इसको चेंज कर सकते हैं, नहीं, तुम एक बार और बताओ मैं यही गाऊंगा। और ये जब सिलसिला जब चालू हुआ तो सच्ची बात ये थी कि मैं बहुत डरा हुआ था। और मंदाकिनी जी मैं एक अपनी एक कमजोरी बताता हूं, मैं कभी किसी बात को छुपाता नहीं हूं, जो है
1: जी
0: वो है।
1: जी जी
0: डरा हुआ मैं इसलिए था कि हाँ तो हो गई, गा भी रहे हैं, अब इनको मैं दूं क्या पैसा।
1: हाँ
0: तो मैंने कहा कि मैं उनको प्यार से बाबा बोलता हूं कभी कभी, मैंने कहा बाबा बात ऐसी है, मजा तो आ रहा है, सब कुछ ठीक है, तो मैंने कहा वो मेरे पास थोड़ा सा एक डिसाइड हो जाए कि मैं क्या दे सकता हूं, मेरे पास देने के लिए कुछ है नहीं, मैं क्या दे सकता हूं। बोले मैं 1 रुपया नहीं लूंगा तेरे से। तो
1: क्या
0: मेरे को
1: बात
0: यकीन नहीं हुआ कि
1: करो,
0: अमित कुमार मेरे को बोल रहा है कि मैं
1: एक
0: 1 रुपया
1: रुपया
0: नहीं
1: नहीं
0: लूंगा।
1: लूंगा। वाह अद्भुत,
0: ये बहुत ही अद्भुत,
1: बहुत
0: और ये मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साहब किशोर दा ने ऊपर से मुझे आशीर्वाद दिया कि मैं नहीं हूं तो भी उस घर में तेरा सम्मान है। मैंने कह दिया और उन्होंने कहा कि मैं 1 रुपया नहीं लूंगा। अब मैंने कहा कि अगर ये 1 रुपया नहीं लेंगे तो ठीक है, जो भी होगा। तो मैंने ना पहले सुंदर कांड शुरू किया, हमने कहा अगर इनका मूड ऑफ हो गया और ये बोले कि बस हो गया, क्योंकि पैसा नहीं है ना। सुंदर कांड होने के बाद उन्होंने खुद बोला अब क्या, हमने कहा अब शुरू से कर लेते हैं। और ऐसा करते करते वो 1.5 साल से रेगुलर गा रहे हैं और 3-4 साल और लगेंगे। ऐसा कोई सिंगर या कोई आदमी, मैं खुद भी किसी के लिए नहीं कर सकता, कि एक आदमी रेगुलर 5-6 साल मेरे लिए काम करेगा और वो 1 पैसा नहीं लेगा। जो मेरे पास होगा मैं करूंगा,
1: हाँ हाँ सही
0: लेकिन मेरी
1: बात है।
0: औकात ही क्या है, मैं क्या
1: हाँ
0: करूंगा, कुछ भी नहीं कर
1: उनकी
0: पाऊंगा।
1: महानता देखिए आप, अमित
0: लेकिन
1: कुमार
0: उनकी
1: साहब की।
0: ग्रेटनेस देखिए, हर महीने मुझे 6 से 7 वो डेट देते हैं, और जब भी वो आते हैं बड़े टाइम पे आते हैं, जब गाते गाते उनको लगता है कि अब मैं थक गया तो वहीं से बोलते हैं जय श्री राम। मैंने कहा चलो जय श्री राम। लेकिन इतना लंबा इतना समय देना, और वो भी एक मतलब अब धीरे धीरे उनको इंटरेस्ट आ रहा है, ये बात अलग है। लेकिन जो कमर्शियल बातें जो आजकल लोगों में आ गई हैं,
1: जी
0: लेकिन अमित जी के लिए हैट्स ऑफ, और
1: बहुत
0: मैं ईश्वर
1: बिल्कुल
0: से दुआ करता हूं
1: सैल्यूट है
0: कि
1: उन्हें।
0: बस वो खुश रहें, स्वस्थ रहें एकदम।
1: बिल्कुल
0: ऐसा मैंने सोचा ही नहीं था कि ये जवाब आएगा। मैंने कहा ज्यादा से ज्यादा वो बोलेंगे जो देना है दे देना,
1: जी जी
0: लेकिन
1: जी
0: उन्होंने क्लियर किया
1: कि मैं कुछ नहीं लेने
0: मैं कुछ
1: वाला।
0: नहीं लेने वाला,
1: बहुत बड़ी बात सर,
0: तो ये बहुत बड़ी बात है।
1: उन्होंने आपकी उस भावना को समझा जिस भावना से आप वो कार्यक्रम कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। मेरी तो आंखें नम हो गई हैं और मैं भावुक हो गई हूँ।
0: नहीं,
1: एक गाना पहले सुन लेते
0: एक
1: हैं।
0: गाना हम लोग सुनते हैं, मैं इस गाने की कहानी पे आऊंगा, आप गाना सुनाइए, तूने जिंदगी में आके जिंदगी जिंदगी बदल दी।

0: ये गाना ऐसा है कि मैं और हिमेश भाई बैठे थे घर में और बारिश हो रही थी, तो मैंने कहा हिमेश भाई आज ऐसा गाना मैं लिखूंगा, ज्यादातर वो ट्यून बनाते हैं पहले और फिर उसको लिखवाते हैं। मैंने कहा यार आज ट्यून मत बताना मेरे को, मैं गाना लिखूंगा उसकी आप ट्यून बनाना। तो हंसने लगे, बोले ठीक है लिखो। मैं लेकिन आज मेरे को ये भी मत बोलना कि ये गाना कमर्शियल नहीं है, मैं कमर्शियल गाना नहीं लिखूंगा आज, जो मेरे दिल में आएगी वो लिखूंगा। कहने लगे ठीक है लिखो। हकीकत यह है कि जब मैं सोचा कि क्या लिखूं, तो मैंने कहा मैं अपने जैसा गाना नहीं लिखता,
1: मतलब जो सुधाकर जी की पहचान है वैसा गाना
0: गाना नहीं लिखूंगा। क्या लिखूंगा फिर? तो मैंने गुलजार साहब को याद किया कि गुलजार साहब जैसा लिखना चाहिए, बट ये सोचने बात अलग है, लिखना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। तो मैंने एक गाना लिखा, उसमें मैंने जिंदगी को प्ले किया, तूने जिंदगी में आके जिंदगी जिंदगी बदल दी। ऐसा करते करते ये गाना जब लिख लिया मैंने, तो हिमेश भाई ने बना भी दिया। तो हिमेश भाई बोले कि सर लेकिन ये गाना आज की डेट में कौन लेगा? हमने कहा कुछ चीजें ऐसी भी होनी चाहिए, कोई ले ना ले, आप मेरे लिए बनाओ ना ये गाना। तो खैर गाना बन गया। अब ये सिचुएशन निकल गई हमराज में,
1: बहुत सुंदर
0: कि ऐसा एक गाना चाहिए। तो मैंने कहा हिमेश भाई इनको सुना दो ये गाना, और ये गाना हमारा लग गया। और ये गाने की जो असल कहानी है वो ये है कि ये गाना मुझे बेस्ट लिरिक राइटर के लिए फिल्म फेयर में नॉमिनेशन तक लेके गया। और हकीकत बात और मैं बताऊं कि ये गाना जिस राइटर को मैंने सोच के लिखा था, उस साल का अवार्ड उस राइटर को मिला, मुझे नहीं मिला। गुलजार साहब को उस साल का मिला। तो कोई बात नहीं, वो तो हमारे लीजेंड है भाई, लेकिन इस गाने की उपज उनकी वजह से हुई, हालांकि उन जैसा इसमें कुछ भी नहीं है।
1: नहीं, आपने उनको एक प्रेरणा स्रोत माना कि मैं उनको ध्यान में रखकर अपनी एक रचना गढ़ता।
0: वो हमेशा कुछ अलग ही करते हैं ना।
1: जी,
0: तो
1: जी,
0: मैंने जिंदगी को प्ले करके सोचा कि मैं भी कुछ करूं।
1: बहुत सुंदर,
0: और वो हो
1: है
0: गया।
1: सुधाकर जी, गीत लिखने का क्या तरीका बदला है जब सोशल मीडिया आ गया है? फिल्मी गानों के प्रति हमारा टेस्ट बदल गया है, खासतौर से युवा लोगों को, क्या ऐसे में गीतकार प्रभावित हुआ है?
0: बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है, क्योंकि उसके ऊपर एक तलवार ये होती है कि कुछ ऐसा करो कि एकदम हुक लाइन पहले होनी चाहिए, उसके इर्द गिर्द गाना लिखा जाता है। और उस गाने को लिखने के चक्कर में गीतकार का अपना थॉट मर गया है कि वो जो कहना चाहता है कहाँ कहे फिर। और अभी तो लोग बोलते हैं AI से करा लेंगे, इससे करा लेंगे, उससे करा लेंगे, लोग करा भी रहे हैं।
1: अच्छा, लेकिन
0: बट AI जो है ना, आपको रास्ता दिखा सकता है, चल नहीं सकता, चलना आप ही को पड़ेगा। वो इमोशन नहीं ला पाएगा,
1: बिल्कुल, सबसे बड़ी बात,
0: वो कहानी नहीं ला पाएगा। टेक्निकली वो साउंड कर देगा, लेकिन वैसा नहीं कर सकता वो।
1: तो एक गीतकार के सामने ये समस्या आ गई, क्योंकि युवा डायरेक्टर भी आ रहे हैं, फिल्मों के निर्माता नए नए आ रहे हैं, नई नई तरह की फिल्में, अच्छी फिल्में भी आ रही हैं, बहुत नए सब्जेक्ट के साथ आ रही हैं। ऐसे में गीतों का जो फ्लेवर है वो भी बदला है, तो गीतकार को भी इसके लिए अपने आप को बदलना होगा। आप क्या इस बदलाव के लिए तैयार रहते हैं हर समय?
0: मैं बिल्कुल तैयार हूं, तभी आज तक काम कर रहा हूं। बट यहां पे थोड़ा सा एक मेरा अड़चन ये आती है कि बदलाव के लिए तो हम तैयार हैं, फोर्ड पने के लिए तैयार नहीं है। अगर वो बदलाव हम थोड़ा संभाल के कर सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप जो है ना उसमें कुछ भी इस तरह के वर्ड डाल दें कि वो वर्ड डालने से हिट हो जाएंगे और बाद में पब्लिक उसको जूते मारे, उसका कोई मतलब नहीं होता। अभी पुराने राइटरों ने भी बहुत अच्छे अच्छे काम किए और उन्होंने वो बात भी कही जो आज के फोर्ड पने में कह रहे हैं, उन्होंने भी कहा
1: बहुत प्यारे तरीके,
0: लेकिन बड़े प्यार से कहा, एक अंदाज से कहा, क्लासिकल कहा। अब आप उस चीज को नंगा कर रहे हैं, वो अच्छी बात नहीं है। ये सब चीजें जो है ना वो बहुत काउंट करती हैं। सबसे बड़ी बात है कि मैंने जो किया है मैं अपने बच्चों के साथ बैठ के

0: सुन सकता हूं,
1: हाँ
0: मेरी आने वाली पीढ़ी बोल सकती है कि मेरे दादा ने या मेरे नाना ने ये काम किया है।
1: हमारा आखिरी सवाल है आपसे, 5 पीढ़ियों के साथ आपने काम किया है और
0: जी जी
1: ये अनुभव तो आपने हमारे साथ साझा किया, जो नए गीतकार या युवा लड़के लड़कियां इस लाइन में आना चाहते हैं बतौर गीतकार, बतौर गायक कलाकार या संगीतकार के तौर पर भी, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: मंदाकिनी जी, ये आपने धर्म संकट में डाल दिया, क्योंकि मैं किसी को संदेश देने लायक की स्थिति में नहीं हूं, मैं तो खुद ही संदेश लेता रहता हूं। बट मैं उनको एक ही बात शेयर करूंगा, एक तो पेशेंस रखें, दूसरा वो अपने आप को इतना बुद्धिमान ना समझें कि जो उन्होंने लिख दिया
1: वो कालजयी हो गया।
0: हाँ वो ऐसा नहीं हो सकता है। दूसरा मैं आपको एक बात बताऊं, रिलेशन देखिए, आज हिमेश जी तक मैं जो पहुंचा, उनके फादर मेरे दोस्त थे, उनके साथ मैं काम करता था और उन्होंने हिमेश जी के साथ मुझे लगाया। तो ये जो पेशेंस है आपके पास, वो ऐसे ही नहीं आ गया, उसको आपको रखना पड़ेगा। जैसे कि मैं एक म्यूजिक डायरेक्टर हैं सुनील कौशिक, वो मेरे को एक दिन बोले कि यार जब भी हम लोग मिलते हैं तू मेरे को नमस्ते करता है यार, मेरे को अच्छा नहीं लगता। तो मैंने बोला भाई क्यों, मैं नमस्ते करता हूं तो अच्छा नहीं लगता तो नहीं करूंगा। बोले नहीं नहीं नहीं नहीं वो बात नहीं है, काम नहीं हो पाता यार। हमने सर काम जब किस्मत में होगा तब हो जाएगा, लेकिन संबंध तो बने होने चाहिए। तो लगभग मतलब 12-13 साल के बाद एक दिन उनका फोन आया, बोले यार एक गाना है आ जा। और छोटा भीम के लिए उन्होंने मुझसे गाने लिखवाए, और एक गाना ही नहीं, समझ लो कि मैंने फिर 3 साल तक कंटिन्यूस उनके साथ काम किया। तो जो मैंने 12-13 साल नमस्ते की हो गई ना वसूल।
1: बिल्कुल।
0: मैं एक बात जरूर और कहना चाहूंगा, होता क्या है नए लोगों में, जैसे कि मेरे को कोई नया म्यूजिक डायरेक्टर मिलता है तो मिलते ही वो उसकी तमन्ना होती है सर मेरे लिए कुछ काम बताइए ना। भाई जो मेरे साथ 20 साल से लगे हुए हैं, मैं उनके साथ काम करूं, तू तो अभी अभी मिला है,
1: बिल्कुल
0: तुम पहले 2-4 साल मेरे साथ रहो तो सही। तो आप आइए काम कीजिए, हैव पेशेंस, काम आज नहीं कल नहीं परसों, साल 2 साल। मुझे पहली कामयाबी मैं अगर आपको बताऊं तो आप समझिए कि मैं अगर 73 को ना भी मानूं, आया गया ये हुआ वो हुआ, मेरा पहला गाना जो रिकॉर्ड हुआ वो रिकॉर्ड हुआ था मेरा 82 में।
1: जी 73 से 82 तक आपने इंतजार किया।
0: इंतजार किया, फिर 82 से 97 तक इंतजार किया,
1: दूसरे गाने का?
0: दूसरे गाने का नहीं, कोई गाना बाहर तो आए।
1: ओहो
0: 97 में गाना बाहर आया, ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम की। इतना धीरज, आप
1: पेशेंस।
0: डिप्रेशन में ना चले जाएं, आपका दिमाग खराब ना हो जाए, और आप ये ना सोच लें कि अब मेरा कुछ नहीं होगा, कभी भी कुछ भी हो सकता है।
1: जी
0: एक दिन की बात है कि मैं घर से निकला था और मैं बहुत परेशान था। परेशान ये था कि मैं नवरात्रे रखता हूं
1: अच्छा
0: तो कंजके बिठाते हैं उसमें, उसमें कोई 300-350 रुपए का खर्चा आता था। ये स्ट्रगल टाइम की एक बात बता रहा हूं। तो हमने कहा कि एक काम करते हैं, व्रत तो रख लेता हूं, कंजके वंजके नहीं बिठाएंगे, पैसा नहीं है। तो मैं घर से ऐसे ही चला, ये सोच के कि एक दुकान वाला है मेरी पहचान का, उसको बोलूंगा भाई मेरे पास अभी पैसा नहीं है तो तू मेरे को दे दे, तो देवी का काम है, अगर उसने दे दिया तो ठीक है। ऐसा चलते चलते मैं थक गया, एक स्टूडियो था क्लासिक, वहां पे चाय वाय आराम से मिलती है, वहां गया। मैं घुस रहा हूं और मेरे जेब में फोन बज रहा है और मुझे फोन करता हुआ रिकॉर्डिस्ट बाहर आ रहा है। और मैं तो अरे यार मैं तेरे को ही फोन लगा रहा हूं तू उठा नहीं रहा। मैंने कहा यार मैं निकाल रहा हूं तब तक तू आ गया। वहां जल्दी आ, अंदर आ, अंदर आ, अंदर गया। बोले साहब ये गुजरात से आए हैं, बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं, बोले यार इनके कुछ गाने ठीक करने हैं, कुमार शानू गाएगा। ठीक कर देता हूँ। अब मैं वो गाने ठीक करने के चक्कर में बैठ गया, 3 गाने थे मैंने ठीक कर दिए। वो बोले सर आप रुक जाइए अभी दादा आ ही रहे हैं तो आप रहिए। तो दादा आ गए, तो दादा ने बोले तूने लिखा है? मैंने नहीं मैंने लिखा नहीं है, मैंने थोड़ा सा सुधारा है, सब मस्त है। और गाने गा दिए, चले गए। जब वो चले गए तो उन्होंने मुझे एक लिफाफा दिया, उसमें 3100 रुपए थे। तो ईश्वर पे भरोसा रखो और अपने काम पे भरोसा रखो
1: बिल्कुल।
0: तो कुछ ना
1: आपसे
0: कुछ
1: बात
0: होगा।
1: करके बहुत संबल मिला है सुधाकर जी,
0: जी
1: और मुझे लगता है जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं वो भी इस बात से सबक सीखेंगे कि किसी भी काम को करने के पीछे कितनी मेहनत और मशक्कत होती है। अब आपके आने का हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, आपने अपना इतना अमूल्य वक्त हमारे लिए निकाला विविध

0: भारती के स्टूडियो आप आए, अपनी बातें, अपने जिंदगी के वो पल, वो लम्हात हमारे साथ आपने साझा किए हैं, इसके लिए आपका हम तहे दिल से सुधाकर जी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं।
1: धन्यवाद मैं आपका करता हूं और विविध भारती का करता हूं, जिसे हरियाणा के खेतों से निकाल के आपके स्टूडियो तक ले आया, क्योंकि मेरा माध्यम आकाशवाणी विविध भारती यही रहा है, यहीं से मेरी शुरुआत थी
0: जी
1: और आज मैं उस मुकाम पे हूं कि जहां मैंने अपने उस्तादों को, बड़े बड़ों के मैंने देखे, बाहर सब फोटो लगे हुए हैं, हसरत साहब का फोटो लगा, इतने सब, ये कभी मेरे ख्वाबों में थे और मैं खुशकिस्मत हूं कि इन सब से मैं मिला हूं।
0: जी और हम खुशकिस्मत है कि हम आपसे मिले हैं, आप विविध भारती के स्टूडियो में आए, जिनके गानों को हम बोलते हैं कि चलिए गीतकार हैं सुधाकर शर्मा, संगीतकार हैं हिमेश रेशमिया, आज वो सुधाकर जी हमारे सामने बैठे हैं, हम उनसे बातचीत कर रहे हैं, ये भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण पल है सुधाकर जी।
1: जी और श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
0: जी तो बॉम्बे टॉकीज में अभी आप सुन रहे थे जाने माने गीतकार सुधाकर शर्मा से हमारी ये महत्वपूर्ण बातचीत, और अब मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत, नमस्कार।
2: ये था जाने माने गीतकार सुधाकर शर्मा से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। तकनीकी सहायक भावना सिंदल, संपादन सहयोग झरना सोलंकी, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

ये आकाशवाणी जोधपुर का FM सेंसिटी चैनल है। FM बैंड 102.1 MHz पर शाम के 5 बजे हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम युववाणी। ये कार्यक्रम स्थानीय केंद्र के सूर्य नगरी चैनल से रिले किया जा रहा है।

0: भाई ऐसा कहा जाता है ना, किसी चीज़ का आप इंतज़ार करो तो भाई इतना ज़्यादा लगता है वो इंतज़ार कि वो कब चीज़ पूरी होगी, कब वो शुरू होगी. और हम सबको जिसका बेसब्री से इंतज़ार था, वो बारिश कल आ ही गई भाई साहब. जो हमें लग रहा था कि कब आएगी कब आएगी, इतने बादल आ रहे जा रहे थे, साथ में कई बार ऐसा भी हुआ कि हवा के साथ बादल चले भी गए. बट कल जो फाइनली बारिश आई और जो खुशी हुई, हालांकि वो खुशी बहुत छोटी सी थी, जल्दी से आगे चली हुई, पर अब ऐसा लग रहा है कि हाँ अब बारिश का मौसम धीरे धीरे आ ही जाएगा. वो मौसम आए ना है, हम आ चुके हैं आपका कार्यक्रम युववाणी लेकर, जिसमें आज है वीकेंड का पहला दिन यानी सैटरडे, जो भी वो भी निकलने वाला है. खैर उसी के निकलने के साथ हम लाए ढेर सारे गाने, ढेर सारी बातें और नए अपडेट्स. हाल फिलहाल आपके साथ जुड़ी है दो प्यारी आवाजें, मेरा नाम है रिद्धि
1: और आज आपके साथ इस आवाज़ का नाम राहुल. और ये वीकेंड की शाम बड़ी ही मज़ेदार होने वाली है, और जिन लोगों ने अपने प्लान्स डिसाइड कर लिए हैं उनके लिए तो भैया बढ़िया है, और जिन लोगों का 5 डे वीक था उनके तो भैया मज़े मज़े, और नहीं है तो अब संडे.

कल छुट्टी मिलने वाली है ना। फिलहाल के लिए प्रोग्राम युवाणी जारी है और आपके साथ ये दो आवाज़ें जुड़ चुकी हैं। काफ़ी लंबे टाइम बाद इन दोनों को आप साथ सुन रहे होंगे, पर फिलहाल बढ़ेंगे आगे, सुनेंगे आज की शाम का पहला म्यूजिकल ट्रैक और एंजॉय करेंगे बहुत सारी बातें, बहुत सारे गाने।

तो भाई राहुल, जो हम मौसम की बात कर रहे थे, वो जो सबका फेवरेट मौसम होता है, ये वही वाला मौसम है जब हम, ऐसा होता है ना कि बस गाड़ी लेके दूर कहीं घूमने निकल जाओ, बहुत सारी बातें कर लो, लॉन्ग ड्राइव पे जाओ, ठंडी ठंडी हवा है भाई, ये किसे नहीं पसंद है। और ये स्पेसिफिक मौसम वो है कि बस दो बूंद गिरी और जितनी भी नमकीन की दुकानें हैं, मिर्ची बड़े, कचौरी हाई, जो सेव

0: पड़ती है उनकी। अब भाई मजा आ गया, अब जो वेदर आएगा होपफुली इस बार ऐसा कहा जा रहा है कि अलनीनो इफेक्ट के कारण बारिश कम होगी, बट मेरे को ऐसा लगता है कि नहीं यार, थोड़ी बहुत तो होनी चाहिए, कम ही सही पर अच्छी हो जाए तो और मजा आएगा।
1: बिल्कुल, इस बारिश का इंतजार भी जो कल हुई उसका भी बेसब्री से कई सारे लोग कर रहे थे, और जैसे ही मौसम में बदलाव आया ना, लोगों के माहौल में, उनकी बिहेवियर में भी बदलाव देखने को मिला। वो एनर्जी हल्की सी अलग नजर आई। अरे यार, आज ऑफिस जब जो लोग गए वो बड़े खुश नजर आ रहे थे कि अरे साहब बारिश हुई, निकाला देखी कौन निकटा नहीं देखी कौन। अरे बिल्कुल, देखिए साहब, देखिए कल बारिश हुई थी। और फिलहाल मौसम के हाल आपको बता दे तो भैया, हमने शहर जोधपुर का हाल कुछ यूँ है। सनसेट का टाइम 7:34 PM आ रहा है, और रात ढलते ढलते करीब 1 से 2 बजे के बीच हल्की बूंदाबांदी आपको देखने को मिल सकती है। तो भैया अगर ऊपर छत में तो कोई कपड़ा हुक रहा है तो नीचे लिए
0: और राहुल
1: जाओ।
0: ऐसा भी होता है जब हम बारिश का वेट करते हैं ना, तो अक्सर वो उसी वक्त आती है जब हम नहीं जग रहे होते, मतलब जब सब वेट ऐसे कर रहे होते कह रहे अब बारिश आएगी अब बारिश आएगी, तो वो ऐसे टाइम पे आएगी जब सबको नींद आई हुई होगी, फिर एकदम से लाइट जाती है, फिर उठते कह रहे लाइट क्यों गई, फिर लगता है कह रहे बाहर तो बारिश आ रही है इतनी तेज। और हमारे शहर में तो बहुत ज्यादा होता है, इनिशियली जब बारिश आती है तो हमेशा लेट नाइट आएगी ताकि लोगों को पता ही ना पड़े और वो आके चली जाए। पर हाँ ये जरूर होता है कि बारिश आती है तो अगली जो सुबह होती है, जो मिट्टी की खुशबू, जो हवा में हल्की हल्की सी ठंडक, भाई मजा आ जाता है।
1: वो और ज्यादा सुहानी
0: पर
1: होती है।
0: हाँ ये जो दिन चढ़ते चढ़ते जो ह्यूमिडिटी होती है, तो जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं कि ये ह्यूमिड मौसम है आपको गुमराह कर सकता है कि आप पानी ना पिए, आपको फुल फुल फील हो, पर आपको ये ध्यान रखना है कि ये वही मौसम है जिसमें हमारा पेट बहुत जल्दी खराब होता है, हमें फीवर बहुत जल्दी आता है, तो आप पानी पीने का बहुत ज्यादा ध्यान रखें और जितना हो सके बाहर का फूड अभी अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये मौसम है जो चीजें, जो खाना बना हुआ होता है उसे बहुत जल्दी खराब कर देता है। तो बस ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखिए और हाल फिलहाल गाने एंजॉय कीजिए। और अपडेट्स राहुल के पास बहुत सारे हैं, वो किसके हैं क्या है वो बताएंगे इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: भाई जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जहां अभी पूरा विश्व फुटबॉल के पीछे दीवाना हो रखा है, जो कि जायज़ भी है, वो गेम ही ऐसा है कि भाई जो फैन फॉलोइंग है और जो हमारे भारत में भी लोग देखते हैं, उन्हें पता है कैसे रात रात भर जागना पड़ता है भाई साहब। ये टास्क है, हाँ, फुटबॉल फैंस उनके लिए टास्क होता है। पर जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश में जो क्रिकेट के लिए लॉयल्टी है भाई, कोई स्पोर्ट मैच नहीं कर सकता, कितने भी वर्ल्ड कप्स चल रहे हो, पर इंडिया में जो क्रिकेट की फैन फॉलोइंग है वो अलग ही है। और ये जस्ट मेरे पास में जो लड़का बैठा है राहुल, इसका जो कह सकते हैं क्रिकेट फैन जो इसके दिमाग में है, ये जो खुद है, ये जानता है और ये वैसे ही अपडेट्स लेकर आया है क्रिकेट के इस फुटबॉल सीजन के बीच में। तो
1: और
0: आइए
1: मैं
0: सुनते हैं ये
1: नहीं,
0: क्रिकेट
1: बिल्कुल हमारे जो
0: अपडेट्स।
1: पूरे भारत के लोग हैं जो क्रिकेट के बहुत बड़े फैन हैं, जो वैभव सूर्यवंशी के फैन हैं, जो देखना चाहते हैं, सभी के मन में ये सवाल है कि यार आज वैभव सूर्यवंशी खेलेगा या नहीं खेलेगा, खेलेगा कि नहीं खेलेगा। क्योंकि जो भैया देखो आयरलैंड की उस हार के बाद और ज़्यादा मतलब हो गया कि कब होगा ये जीत का सिलसिला शुरू, क्योंकि पिछला जो इंग्लैंड के साथ T20 मुकाबला था वो बारिश के कारण धुल गया था, और आज भी 55% जो है वो चांसेस बताए जा रहे कि बारिश हो सकती है। इधर ये लग रहा है कि मैच हो गए नहीं, उधर हमारे जितने भी जो क्रिकेट फैंस हैं वो सोच रहे कि यार वैभव सूर्यवंशी खेलेगा या नहीं। तो भैया ये तो अब जब टॉस होगा तो पता चलेगा, जब ये शीट आएगी टीम की, भैया ये प्लेयर आज खेलने वाला था, पता चलेगा। और होपफुली आज का मैच हो और इंडिया जीते। फिलहाल के लिए गानों का सिलसिला जारी है हमारी प्लेलिस्ट की खोज में। आपके लिए अगला गाना पेशी साहब।

0: श्रोताओं, अब आप सुनेंगे जीएसटी ऑफिसर समीर मित्तल से राहुल की फोन आउट बातचीत। और ये बातचीत उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है जो अभी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हैं। तो आइए सुनते हैं ये वाला इंटरव्यू।
1: वेल, ऐसे तो हम हर रोज कुछ नया सुनते हैं, कुछ नया सीखते हैं और कभी कभी कुछ ऐसे लोगों से मुखातिब होते हैं जो हमें हमारी लाइफ में जाने अनजाने में ही सही लेकिन बहुत कुछ सिखा कर जाते हैं। तो आज एक ऐसी ही शख्सियत से हम जुड़ने वाले हैं जिनका शायद हर एक लफ्ज आपको कुछ न कुछ नया सिखाने की कोशिश करता है, स्पेशली यूथ जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो प्लीज वेलकम मिस्टर समीर मित्तल। मैं चाहूंगा आप सबसे पहले अपने बारे में कुछ बताएं।
2: मेरा नाम समीर मित्तल है, कस्टम्स एंड जीएसटी इंस्पेक्टर काम कर रहा हूँ मुंबई के अंदर। मेरी स्कूलिंग बीकानेर राजस्थान से हुई, कॉलेज मेरा राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी से हुआ जहाँ पर मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर बीटेक किया और डिग्री पूरी करते ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में लग गया। सबसे पहले एसबीए का पीओ एग्जाम दिया, वो क्लियर

0: हुआ, SBI का क्लर्क एग्जाम दिया वो क्लियर हुआ, GST इंस्पेक्टर 2018 दिया, जॉब में लग गए, फिर दोबारा एग्जाम दिया SSCCL 2021, वो भी क्लियर हुआ, तो पढ़ाई करते करते अब आज जॉब में आ गए हैं।
1: क्या बात है, इतने सारे एग्जाम्स आपने एक साथ क्लियर किए, ग्रेट। तो अब मैं जानना चाहूंगा, आप जिस प्रोफेशन में हैं वो आपको आपकी पहले के लाइफ से किस तरह अलग बनाता है? वो क्या फीलिंग्स होती हैं इन टर्म ऑफ करियर, जो मेहनत आपने की वो परिणाम आप आज किस रूप में देखते हैं?
0: जब स्टूडेंट थे तो हमेशा से यही सुनते आ रहे थे कि एक बार आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओ उसके बाद आपकी लाइफ काफी सेटल हो जाती है। तो मेरे कजन ब्रदर हैं जो कि काफी अच्छी पोस्ट पर है गवर्नमेंट सेक्टर में, तो वो हमेशा मुझसे कहते थे कि 3 साल या 30 साल, ये 3 साल मजदूरी करके आगे 30 साल रिलैक्स हो जाओ, या इन 3 साल रिलैक्स रह के एंजॉय करके आगे 30 साल मजदूरी करते रहो। तो उनकी जो बात थी मुझे काफी हद तक ठीक लगती है। तो एक संघर्ष के बाद, एक मेहनत के बाद लाइफ डेफिनेटली थोड़ी रिलैक्स्ड हो जाती है। यू फील लाइक यू आर सेटल्ड इन लाइफ, तो डेफिनेटली लाइफ में बेटर आपको फील होता है।
1: अब यूथ के सवालों की तरफ बढ़ते हैं कि जब एक इंसान एस्पिरेंट बनता है तो उसके लिए प्रिपरेशन का जो पड़ाव है वो मोटिवेशन से शुरू होता है। जब भी हम किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं, चाहे वो कोई भी चीज़ हो सकती है, उसके लिए मोटिवेशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो एक एस्पिरेंट के लिए इस बारे में आपका क्या ख्याल है, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में?
0: जब मैं इस रास्ते से गुजरा तो कुछ रूल्स मैंने या कुछ कोट्स मैंने खुद के लिए नोट डाउन करके एक जगह चिपका लिए थे। तो सबसे पहले तो मुझे, मोहम्मद अली एक बॉक्सर थे, वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर रहे वो,
1: जी
0: उनका एक कोट था कि आई हेटेड एवरी मिनट ऑफ माई ट्रेनिंग बट आई टोल्ड माई सेल्फ डोंट क्विट, सफर नाउ एंड लिव द रेस्ट ऑफ योर लाइफ एज अ चैंपियन। तो पहली बात ये कि कुछ समय जिंदगी में ऐसा होगा जब आपको अपना जो गाड़ी का गियर है वो टॉप गियर पे लाना पड़ेगा, उस टाइम पर सारी मेहनत सारा फोकस आपको अपने काम में ही झोंकना पड़ेगा, अपने काम में ही आपको डूब जाना पड़ेगा। कोई भी एग्जाम हो, बीट SSC CGL LIC एग्जाम्स, बैंक एग्जाम्स, IBPS, SBI, हर एग्जाम में सबसे पहले तो पढ़ाई करना किसी को नेचुरली पसंद नहीं है, नेचुरली अच्छा नहीं लगता है। तो ऑलवेज रिमेम्बर कि सफर नाउ एंड लिव द रेस्ट ऑफ योर लाइफ एज अ चैंपियन। साल 6 महीने, 1.5 साल एक बार जोर लगाओ, मेहनत करो, सब कुछ छोड़ दो, पढ़ाई में डूब जाओ, उस सब्जेक्ट से खेलना स्टार्ट कर दो। और मैंने पढ़ा था, इफ यू डोंट सेक्रीफाइस फॉर व्हाट यू वांट बिकम्स द सेक्रीफाइस। अगर आप अपने लक्ष्य के लिए छोटी छोटी कुर्बानियां नहीं देंगे तो आपका लक्ष्य कुर्बान हो जाएगा। तो जिंदगी में अगर आपको कुछ भी हासिल करना है, कुछ भी अचीव करना है, तो कुछ समय तक आपको बहुत सारी चीजें छोड़नी पड़ती है, और वो इनफैक्ट आप अपने लक्ष्य पर इतना फोकस हो जाए, इतना उसमें डूब जाए कि वो चीज अपने आप छूट जाए।
1: बिल्कुल सही कि अगर आपने अपने लक्ष्य के लिए छोटी छोटी कुर्बानियां नहीं दी तो आपका लक्ष्य ही कुर्बान हो जाएगा। बहुत सही, लिटरली आपके जो कीवर्ड्स है ना बिल्कुल सीधे हिट कर रहे हैं। ग्रेट, बहुत मजा आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, और एक ये प्रॉब्लम शायद सबके साथ होती है कि वो कहते हैं कि सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। तो क्या ये कोई मिथ है या फिर वाकई में आजकल अथाह सिलेबस कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में देखने को मिलता है? अगर है तो उससे कैसे डील करें?
0: मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ इस बात से, क्योंकि पर्सनली मेरे साथ भी हुआ था। जितने एग्जाम मैंने BA क्लियर किए उनका किसी भी एग्जाम का सिलेबस मैं भी पूरा नहीं कर पाया था। पर क्योंकि एग्जाम आज के टाइम पे, जैसे फॉर एग्जांपल जनरल अवेयरनेस, इट इज एवरीथिंग अंडर द सन इज कवर्ड अंडर GK, बीट हिस्ट्री, बीट पॉलिटी, बीट ज्योग्राफी, बीट इकोनॉमिक्स, बीट करंट अफेयर्स, बीट नेशनल स्कीम्स, एवरीथिंग अंडर द सन इज कवर्ड अंडर जनरल अवेयरनेस। उसके अलावा जैसे इंग्लिश की बात करें तो वोकेबुलरी है। सो अभी वोकेबुलरी का कोई अंत नहीं है, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स यू कैन नॉट, आप सबको याद नहीं कर सकते, यू कैन नॉट लर्न देम ऑल। मैथ्स है, उसमें भी आजकल इतने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आ गए, आप खत्म नहीं कर सकते हो। इसका एक ही तरीका है, सबसे पहले जो भी एग्जाम आप दे रहे हैं आप उसको सब कुछ पढ़ने की कोशिश मत करो, सब कुछ नहीं पढ़ना। आप सबसे पहले एग्जाम का पैटर्न देखो, एग्जाम का सिलेबस, फर्स्ट इज एग्जाम का सिलेबस, एग्जाम का पैटर्न, सेकंड इज एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, लास्ट 5 साल के देख लो। आफ्टर थॉरो एनालिसिस ऑफ एग्जाम सिलेबस पैटर्न एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आप मार्क आउट करो कि पूरे सिलेबस में से 20 से 25% मोस्ट हाई यील्डिंग टॉपिक्स कौन से हैं। इन 20% टॉपिक्स को, इस 20% सिलेबस को आप मास्टर कर दो। डू इट वंस, डू इट ट्वाइस, डू इट थ्राइस, बी अ मास्टर। इससे 80-20 रूल जैसे होता है, ये 20% सिलेबस आपको 80% स्कोर करवाएगा। उसके बाद में पूरे सिलेबस को 3 चीजों में तोड़ना है। फर्स्ट इज मोस्ट हाई यील्डिंग कॉन्टेंट, सेकंड इज मीडियम मॉडरेट, थर्ड इज लो यील्डिंग कॉन्टेंट। हाई यील्डिंग पे आप पकड़ बनाओ अच्छे से और मास्टरी करो, 2-3 बार रिवाइज करो। मॉडरेट को आप सेकंड ले लो, एक बार जब वो पूरा हो गया हाई यील्डिंग, उसके बाद आप मॉडरेट को पकड़ो और उसको एक बार रिविजन कर लो। लो यील्डिंग अथाह होता है, अनएंडिंग होता है, उसको थोड़ा बहुत जितना आप कर सको करो, पर प्रीवियस ईयर पैटर्न जो है उसके हिसाब से जब आपने हाई यील्डिंग चीजें कर ली है उसके बाद आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता।
1: एक आजकल ये हो रहा है कि सरकारी नौकरी लगना मतलब कम समय में तो बहुत मुश्किल हो गया है। एक बार इंसान रट पकड़ लेता है कि मैं सरकारी नौकरी लगेगी तभी शादी करूंगा, तो एक तो ये शादी वाला प्रेशर, फिर ये पढ़ाई वाला प्रेशर, तो ये दोनों एक साथ कैसे मैनेज करें इंसान, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे?
0: सबसे पहले तो ये कि मेरे हिसाब से शादी एक बड़ा डिसीजन होता है लाइफ का, और ये आपको आफ्टर बिकमिंग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ही आपको मैरिज के बारे में सोचना चाहिए। घर वाले कहते हैं वो अपनी जगह सही है, उन्होंने जो देखा है, बट आप उनको कन्विंस करें कि जब तक मैं खुद ही का खर्चा नहीं उठा सकता हूँ तो हाउ वुड आई टेक केयर ऑफ

0: हु इज कमिंग विद मी। जब तक मैं खुद ही का खर्चा नहीं उठा सकता हूँ तो मैं जो पार्टनर मेरे साथ आएगा उसका खर्चा मैं कैसे उठा पाऊँ। तो मेरे हिसाब से चाहे वो लड़का हो या लड़की, दोनों के लिए ही सबसे पहले टू बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। आप उनको प्यार से कन्विंस करें कि मुझे 1-2 साल का समय दें, 2-3 साल का समय दें, मैं पढ़ाई करूंगा और अपनी जॉब लूंगा, उसके बाद शादी करूंगा। दूसरी बात यह कि एग्जाम का जो प्रेशर है उसको प्रेशर की तरह ना लें, आप अपनी मेहनत करें। जैसे एक निष्काम कर्म योगा की थ्योरी होती है कि वर्क इटसेल्फ शुड ब्रिंग प्लेजर। आप सिर्फ निष्काम भावना से अपने काम को योग की तरह करें, मंशा को बिल्कुल छोड़ दें। जैसे कहते हैं कर्म करता चल फल की चिंता मत, तो आप अपने काम में डूब के अपने काम को करते चले निष्काम भावना से, और उसके बाद आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। आप प्रेशर में बिल्कुल ना आए। एग्जाम इज नॉट जस्ट एकेडमिक टेस्ट, इट इज ऑल्सो अ टेस्ट ऑफ योर प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी। आप कितना प्रेशर झेल पाते हैं, क्योंकि जॉब में आने के बाद भी, सर्विस में आने के बाद ऐसे बहुत सी सिचुएशन आएंगे जहां पर आपको मुश्किल स्थिति में, हाई प्रेशर सिचुएशन में, स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आपको काम करना पड़ेगा, डिसीजन लेने पड़ेंगे। तो अगर एग्जाम इसी तरह बनाया गया है कि जो बंदा वो काबिलियत रखता है वही आगे जाके उस नौकरी को भी ढंग से कर पाएगा, उसकी जो जिम्मेदारियां हैं नौकरी की उसको निभा पाएगा। तो एग्जाम इज नॉट जस्ट एकेडमिक टेस्ट कि आपने पढ़ाई की और वहां पर जाके लिख दिया या ऑप्शन टिक कर दिया। इट इज नॉट जस्ट, इट इज ऑल्सो अ टेस्ट ऑफ योर मेंटल टफनेस, इमोशनल टफनेस, योर मेंटल क्लैरिटी, हाउ वेल यू कैन परफॉर्म इन द हाई प्रेशर सिचुएशन। इन सब चीजों का भी एक टेस्ट है ये।
1: बिल्कुल सही कहा। अब मैं जानना चाहूंगा कि आप जिस पोस्ट पर हैं, ये एग्जाम जो है वो SSC कंडक्ट करवाता है, तो जो बच्चे SSC CHSL की तैयारी कर रहे हैं, SSC CGL की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ बात नहीं हो सकती, स्पेशली इस एग्जाम के लिए क्या वो जरूरी है, वो चीजें बताना चाहेंगे आप?
0: SSC के जो भी एग्जाम है, BEED, CGL, CHSL, MTS etc, इन सब की मेन रिक्वायरमेंट है योर स्पीड। SSC का जो पूरा एग्जाम का पैटर्न है दैट इज स्पीड ओरिएंटेड, तो आपको अपनी स्पीड पे काम करना है सबसे ज्यादा। जिसकी स्पीड तेज है वो बंदा उस एग्जाम को निकाल लेगा। जो पेपर है CGL का, उसमें GK सेक्शन को छोड़ के मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग में अगर एक जगह 1 घंटे की जगह 2 घंटे कर दिए जाए या 3 घंटे कर दिए जाए तो ऑलमोस्ट हर बंदा बहुत अच्छा स्कोर करे। पर आपको अपनी स्पीड पे काम करना है। दिए गए समय के अंदर 60 मिनट के अंदर आपको 100 सवाल करने हैं, तो उसका एक ही तरीका है कि आप अपनी स्पीड पे काम करें। स्पीड मतलब मैथ्स के अंदर कैलकुलेशन स्पीड, इंग्लिश के अंदर कॉम्प्रिहेंशन स्पीड। तो मैथ्स में कैलकुलेशन पे बहुत ज्यादा काम करें, 40 तक की टेबल को याद करने की कोशिश करें। मैंने भी कोशिश की थी, 25-30 तक अच्छे से याद कर ली थी। तो टेबल्स को याद करें, स्क्वायर्स को याद करें, 25 तक का स्क्वायर याद करें, और 25 से लेकर 150-200 तक के आगे ट्रिक्स होती है, आप उन सबको फॉलो करें। क्यूब्स को भी 30 तक याद कर लीजिए। उसके अलावा जो बेसिक कैलकुलेशन टेक्निक्स होती हैं, जैसे मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, उन सब के आप बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर्स हैं, अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, उनसे आप कैलकुलेशन पे हर चीज के शॉर्टकट फास्ट मेथड सीखने की कोशिश कीजिए। कैलकुलेशन में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, टेबल्स, स्क्वायरिंग, क्यूबिंग, इन सब चीजों को, स्क्वायर रूट निकालना, क्यूब रूट निकालना। तो 15-20 दिन, 1 महीना आप इस चीजों पे दीजिए। इंग्लिश के लिए कॉम्प्रिहेंशन आता है, वोकैबुलरी आती है, ये सब चीजें एग्जाम में आती हैं, तो रीडिंग हैबिट डालनी पड़ेगी। उसके लिए आप चाहे न्यूज़पेपर पढ़ें, चाहे बुक्स पढ़ना स्टार्ट करें, पर 5,000 से 10,000 पेजेस आप पढ़ें। जैसे अगर आप 250 पेजेस की एक बुक होती है तो 20 बुक्स जब आप पढ़ लेंगे तो काफी हद तक आपकी रीडिंग स्पीड इंप्रूव हो जाएगी, आप महसूस करेंगे। तो इंग्लिश में रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन स्पीड, किसी चीज को पढ़ना और कॉम्प्रिहेंड करना, समझना, दिस इज रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन स्पीड, ये तेज होनी चाहिए। और रीजनिंग के अंदर जैसे नंबर सीरीज है, फॉर एग्जांपल ऑल इंडिया रेडियो है, तो A for 1, L for 12, L for 12, इंडिया, I for 9, N for 14, D for 4, I for 9, A for 1, रेडियो में R for 18, A for 1, D for 4, I for 9, O for 15। तो मैं क्या करता था कि जैसे मैं अखबार पढ़ रहा हूँ या कोई बुक पढ़ रहा हूँ, उसमें जो जो वर्ड्स हैं, जो जो लेटर्स हैं, उन सभी लेटर्स के नंबरिंग पढ़ता रहा। आप गाड़ी में जा रहे हो, आपको बोर्ड्स दिखेंगे, टेम्पलेट दिखेंगे, आप उनको डोंट रीड द लेटर, स्पीक द नंबरिंग, नंबरिंग बोलो आप उनकी। कुछ दिनों में, कुछ समय में आप दुनिया से आगे निकल जाएंगे। अपना जीवन उसमें झोंक दिया आपने और उस काम को खेल बना लिया, उस काम में इतना डूब गए, एक गेम की तरह, और उसको एंजॉय कर रहे हो आप। इट इज नॉट प्रेशर, ये खेल है आपके लिए, आपको मजा आ रहा है, यू आर एंजॉयिंग इट।
1: क्या बात है, कितने अच्छे तरीके से आपने चीजों को समझाया। अब बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट के बारे में। होता नहीं कि यार मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, तो वो टाइम मैनेजमेंट के बारे में एक एस्पिरेंट क्या क्या सोच सकता है, उससे कैसे डील कर सकता है, इसके बारे में कुछ बताइए।
0: जी, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, मुझे भी बहुत मुश्किल हुई थी और इसलिए मैंने बहुत मेहनत की अपने आप पर टाइम मैनेजमेंट के लिए। मैं जो पर्सनली करता था मैं सिर्फ वही शेयर करूंगा। सबसे पहले मैंने एक छोटा नोटपैड रख रखा है अपने पास, जिसके अंदर मैं एवरी मॉर्निंग आई मेक अ टू डू लिस्ट, जिसमें मैं सबसे पहले जो जो काम मुझे करना है उनको प्रायोरिटी लिस्ट पर लिखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मुझे आज तैयारी करनी है तो मैं लिखूंगा, फॉर एग्जाम्पल मुझे मैथ्स में अलजेब्रा पढ़ना है, इंग्लिश के अंदर मुझे 200 वोकेबुलरी याद करनी है, जीके के अंदर मुझे पॉलिटी का सुप्रीम कोर्ट वाला सेक्शन पढ़ना है और मुझे करंट अफेयर्स पढ़ने हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा आज का 4 टारगेट है, तो पहले मैं इन चीजों को मेंशन करूंगा। उसके बाद मेरे को 2 PDF डाउनलोड करनी है, वो चीज लिखूंगा। एक बंदे से बात करनी है कि पॉलिटी को अच्छा सोर्स कौन सा है, वो चीज मेंशन करूंगा। ऐसे में 7 से 8 पॉइंट जो मुझे करने पड़े।

0: रिलेटेड वो सब लिख लूंगा। उसके बाद में मैं उन सभी को आईवीली मेथड से नंबरिंग दूंगा कि कौन सा काम कितना इंपॉर्टेंट है, तो उसको मैं 10 में से नंबर दूंगा। एलजेब्रा पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, सो आई विल गिव इट 10/10 और 9/10। पीडीएफ मैं कल भी डाउनलोड कर सकता हूँ, सो आई विल गिव इट 4/10। सो आप जितने भी टास्क आपने 7 से 8 या 10, 8 या 10 टास्क लिखे हैं, उन सभी को नंबरिंग दो, और सबसे पहले जो टास्क मोस्ट इंपॉर्टेंट आते हैं, जो 3 टास्क, उनको आप खत्म करो। तो सबसे पहले मैं यही करता था मॉर्निंग में, सारे कामों को लिखना याद करके कौन कौन से थे, उसके बाद उनको नंबरिंग देना। जब नंबरिंग हो जाए उसके बाद टॉप 3 टास्क सिलेक्ट करके उनको टाइम लिमिट देना कि ये काम एलजेब्रा पढ़ना है, मुझे 40 मिनट लगेंगे, और डिफाइन इट एज मच एज पॉसिबल। एलजेब्रा पढ़ना है 9/10 इसकी प्रायोरिटी है, इसको पढ़ने में मुझे 40 मिनट लगेंगे, एमसीक्यू निकालने हैं मुझे इतने मिनट लगेंगे, और कॉन्सेप्ट रिवाइज करने मुझे इतने मिनट लगेंगे। ये करने के बाद आप बैठ जाओ घड़ी में उतना टाइमर लगा के, उसको खत्म करो, फिर 15-20 मिनट का ब्रेक लो, चिल मारो, चॉकलेट खाओ, घूमो, फोन पे बात करो, गाने सुनो, उसके बाद दोबारा नेक्स्ट टारगेट को लो, उसको खत्म करो। मेक इट लाइक अ गेम, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। दूसरी बात ये कि मेरा जो मोबाइल है उसके अंदर भी मैंने नोटपैड बनाया है, उस नोटपैड को मैंने वॉलपेपर के ऊपर विजेट की तरह रख दिया है। जो भी काम मुझे पढ़ाई के अलावा करना पड़ता है, जैसे फॉर एग्जांपल घर का कोई काम मुझे बोला गया, या मुझे कपड़े धोने हैं, या मुझे सब्जी लेके आनी है, कुछ भी, उसको मैं वहां पर नोट करता हूँ। दिस इज अंडर डेली हाउस होल्ड वर्क हेडिंग, उसके अंदर मैं उन कामों को नोट करता हूँ। तो इस तरह आप अपने लाइफ को जो है एक टू डू लिस्ट पर रख सकते हैं। ये काम आप करो सुबह 8 से लेकर शाम के 5-6 बजे तक। 5-6 बजे तक आप अपना सारा काम करके रिलैक्स हो जाओ, उसके बाद अपना बैडमिंटन खेलो, वॉक करो, दोस्तों के साथ गप्पे मारो, फोन चलाओ, 2-3 घंटे खुद के लिए रखो, चिल मारो। मेरे को जैसे गाना गाना बहुत पसंद है, तो मैं गाना गा लेता था, दोस्तों से गप्पे मार लिया, मुझे मूवी देखना पसंद था। तो जब मेरा टारगेट अचीव होता था तो हफ्ते में एक दिन या 15 दिन में एक दिन मैं मूवी देखने चला जाता था हॉल में, जिससे माइंड भी पूरा रीएनर्जाइज हो जाता है।
1: बिल्कुल, और मुझे ऐसा लगता है ना कि गेम्स हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप फिजिकली फिट रहोगे आपको एक अलग कॉन्फिडेंस मिलता है जो कि मायने रखता है आपकी मेंटल हेल्थ के लिए। तो गेम्स की क्या इंपॉर्टेंस है एक एस्पिरेंट की लाइफ में, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे?
0: स्पोर्ट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं खुद अपनी प्रिपरेशन के टाइम बैडमिंटन खेलता था रेगुलरली, और अभी भी मैं, यहाँ पर बैडमिंटन नहीं है मेरी सोसाइटी में, तो मैं वॉकिंग करता हूँ। साइंस ने भी ये प्रूव किया है कि किसी भी फिजिकल एक्सरसाइज से आपकी बॉडी में एंडोर्फिन लेवल्स बढ़ते हैं, जो कि फील गुड हार्मोन है, जो कि कॉर्टिसोल जो स्ट्रेस हार्मोन होता है उसको काउंटर करता है। साथ ही किसी भी स्पोर्ट्स से आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे आपकी ब्लड ब्रेन को मोर ब्लड ब्रेन सेल्स को ज्यादा ब्लड मिलता है, जिससे वो ज्यादा एक्टिवली काम करते हैं, और ओल्ड एज में डेमेंशिया की भी जो प्रॉब्लम्स लोगों को होती है वो भी बहुत कम हो जाती है उससे। तो मूड बूस्टिंग में, फिजिकल हेल्थ में, मेंटल हेल्थ में, और आपकी ओवरऑल वेलबींग में बहुत इंपॉर्टेंट है स्पोर्ट्स। आप स्पोर्ट्स रेगुलर आधे से 1 घंटा, 40 मिनट कम से कम आप रोज फिजिकल एक्सरसाइज को दें। बैडमिंटन खेलना चाहें बैडमिंटन खेलें, पीटी लॉन टेनिस, या फिर वॉकिंग भी करना अगर आप चाहें तो 40 मिनट 1 घंटा रोज वॉक करो, 5 किलोमीटर। मैंने जैसे खुद के लिए नियम बनाया है 1 आवर और 5 किलोमीटर, तो लगभग 57-58 मिनट्स मुझे लग जाते हैं 5 किलोमीटर चलने में। सो इधर आई डू इट इन मॉर्निंग, अगर दिन में नहीं हो पाते तो आई डू इट इन इवनिंग। पर 1 घंटा आप खुद के स्वास्थ्य के लिए, फिजिकल वेलबींग के लिए दें, आपका मूड भी अपलिफ्ट रहेगा, आपकी कॉन्सेंट्रेशन लेवल्स बढ़ेंगी। वॉकिंग करने के बाद जब आप पढ़ते हैं तब आपकी ब्रेन की एक्टिविटी भी बढ़ती है, आपको ज्यादा याद होता है, और पढ़ाई में बोरियत हो तो वॉक करते करते पढ़ाई करें। मैं ऐसे करता रहा बहुत बार, वॉक करते करते किताब लेके पढ़ता था। उसके अलावा आप बीमार कम पड़ेंगे, आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, तो आपके जो बीमार, एक बार बीमार हो गए तो 4-5 दिन खराब हो जाते, वो भी आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, आपका मोमेंटम ब्रेक नहीं होगा। दूसरा जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, कि वो कोई भी स्पोर्ट्स खेलने से वो आपको सिखाती है कि हार के बाद भी जीत के लिए लगातार मेहनत कैसे करनी, कितनी भी हार मिले आप गिव अप नहीं करते हो, आपको हमेशा एक उम्मीद रहती है कि अगली बार मैं जीतूंगा। तो जिंदगी का भी ये उसूल है कि लगातार हार मिलने के बाद भी आप फिर बोलो एक कोशिश और, एक मौका और, एक बार और, मैं इस बार जीत के दिखाऊंगा। तो ये जो चीज होती है, हार को पचाना और जीत के लिए लगातार मेहनत करना, एक उम्मीद जो है वो नहीं छोड़ना।
1: जी हाँ, फिजिकल एक्टिविटी इंसान को जिंदा रखती है, वो एक होप बढ़ाती है अपने काम को करने के लिए कंपेरेटिवली मेंटल वर्क के। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े, इतनी सारी बातें आपने शेयर की, बहुत मजा आया आपसे बात करके, बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब मैं चाहूंगा एक लास्ट बार यूथ को आप क्या कहना चाहेंगे?
0: जी बहुत अच्छा लगा आपसे जुड़ के, होप आप ऐसे ही काम करते रहे और ऐसे ही यूथ को गाइड करते रहे। मेरी शुभकामनाएं आपको भी, सभी एस्पिरेंट्स को। मैं चाहता हूँ कि सभी लोग जिंदगी में आगे बढ़े। जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ, वर्क हार्ड, स्टे पॉजिटिव, डू गुड टू एवरीवन, एंड गॉड विल हेल्प यू।
1: बहुत बहुत शुक्रिया। वेल, फिलहाल अब आप और हम इस टाइम मशीन में जो टाइम दिख रहा है इसके साथ बढ़ते आगे, मिलते हैं आपसे फिर, बहुत बहुत शुक्रिया।
2: श्रोताओं, अभी आपने सुनी जीएसटी ऑफिसर समीर मित्तल से राहुल की फोन आउट बातचीत, और ये जो पूरी कॉन्वर्जेशन थी इसे सुन के यही लगा कि यार इन्होंने कितना सॉर्टेड वे में अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया. मतलब जो होता है ना स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क, वो कह सकते हैं कि इनकी पूरी कॉन्वर्जेशन में झलक रही थी कि किस तरीके से उन्होंने टाइम मैनेजमेंट किया, कैसे सेक्शंस बांट के अपनी तैयारी

की। तो यार राहुल, ये जो इंटरव्यू था ये बहुत ही यूज़फुल था, और मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी लोग अभी तैयारी कर रहे हैं, और इन्होंने जो चीज़ बताई कि खुद के लिए टाइम निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि ऐसा ना हो कि सिर्फ आप प्रिपरेशन में लगे रहें और अपनी खुद की लाइफ को, खुद की फिटनेस को, खुद की पर्सनल हैप्पीनेस को भूल जाएँ, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अपनी पढ़ाई को बहुत सॉर्टेड वे में करें, बहुत स्मार्ट वे में करें। अगर आपने इंटरव्यू ढंग से सुना है तो आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिले होंगे, और बाकी तो आपकी मेहनत रंग एक दिन ज़रूर लाएगी। हाल फिलहाल आगे बढ़ते हैं और इन्जॉय करते हैं हमारे ये वाले गाने।

0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित। HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति। राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित। HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।
1: अरे मोहन भाई, काफी बिजी लग रहे हो।
2: मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस शुरू करूँ। एक एजेंट ने कहा कि मुद्रा लोन जल्दी सैंक्शन करवा देगा, बस प्रोसेसिंग फीस और लीगल फीस देनी होगी। पेमेंट लिंक भी भेजा है।
1: अरे मोहन भाई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कोई एजेंट नहीं होता है। धोखेबाज नकली वेबसाइट, सैंक्शन लेटर्स और दस्तखत से लोगों को फंसाते हैं।
2: सच?
1: सीधा बैंक या वित्त संस्था में जाओ या सरकारी वेबसाइट से लोन अप्लाई करो। सतर्क रहें और ऑनलाइन ठगों से बचें।
2: समझ गया।
3: मीडिया पे ये भी देखते हैं कि कहीं कहीं पर ऐसे एक्सीडेंट्स होते हैं जो इतने अनएक्सपेक्टेड वे में हो जाते हैं, जिसमें किसी की गलती नहीं होती, वो सिर्फ सड़क की गलती होती है। तो यस, अपनी सेफ्टी का जरूर ध्यान रखिए। और जहां तक बात है पर्यावरण को खूबसूरत बनाने की, तो राहुल, अभी मैंने भी एक चीज देखी पढ़ी, जिसके बारे में थोड़ा सा पढ़ के अच्छा भी लगा। वो ये था कि आप इस मौसम में सीड बॉल्स बना सकते हैं। सीड बॉल्स बेसिकली ये होती है, इसको हम एक स्कूल एक्टिविटी जैसी चीज़ कह सकते हैं जो सब लोग कर सकते हैं। इट्स अ गुड थिंग टू डू। उसमें ये है कि आप जितने भी बड़े पेड़ हैं, जैसे कि पीपल का पेड़ हो गया, नीम का पेड़ हो गया, और जो भी बैनियन ट्री हो गए बड़े बड़े, इनके आप बीज इकट्ठे कर लीजिए। बहुत सारे बीज अपने घर पर ले आइए, और जितनी भी आपके आसपास मिट्टी है, थोड़ी मिट्टी भी चलेगी, उसके लड्डू बनाइए छोटे छोटे से, और उन लड्डुओं को सुखा दीजिए। फिर आप जहाँ पर भी हर जाएं, आपको लगे कि थोड़ा आउटर एरिया है या फिर जहां पर मिट्टी ज्यादा है, यहां पर थोड़ी भी ऐसी जगह है जहां पर नया पौधा पनप सकता है, वहां पर उस सीड बॉल को गिरा दीजिए। बस आपका इतना ही काम है, उसके बाद सारा काम नेचर खुद करेगा। इतनी जो ह्यूमिडिटी हो रही है हमारे आसपास, तो सीड बॉल्स अपने आप मिट्टी के अंदर जाते हैं और वो अपना पौधा पनपना शुरू होता है। उसको अपनी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है इस मौसम में हाल फिलहाल मिल जाती है। तो आप ये ज़रूर से कर सकते हैं अपने घर पे, आपके घर पे बच्चे हैं या फिर आप खुद यंगस्टर हैं जिन्हें वो क्रेज़ है कि बस हमें आसपास सब कुछ अच्छा करना है, ग्रीन ग्रीन करना है, तो आप ज़रूर से सीड बॉल्स बनाइए और अपने आसपास की जो जगहें हैं उसे हरा हरा करके खूबसूरत कर दीजिए।
4: बिल्कुल, ये आपके छोटे छोटे एफर्ट्स जो हैं वो प्रकृति में कितना बड़ा बदलाव ला सकते हैं, इस बात को आपका अंदाजा भी नहीं है। अगर आप ऐसी चीजें करते हैं तो डेफिनेटली बड़े बदलाव आपको कुछ समय बाद देखने को मिलते हैं। और ये जो टाइम है, ये जो मौसम है, इस मौसम में ये चीजें बहुत ज्यादा जल्दी पनपती है।
3: और राहुल, ये भी होता है कि आपने कभी ये नोटिस भी किया होगा, कहीं हम बाहर घूमने जाते हैं और अगर गाड़ी के शीशे खुले हैं, तो आप जैसे ही पेड़ वाली सड़क से जाएंगे ना, मतलब एक स्ट्रेच आता है जहाँ पे बहुत सारे पेड़ होंगे, तो आपको वो हवा ठंडी फील होगी, वहां पर वो ठंडक महसूस होगी। तो ये तो हर टाइम हमारे अखबारों में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, ऑफिसेस में हमेशा ये

0: चलता ही रहता है कि पेड़ लगाओ, सेव योर कंट्री, सेव योर अर्थ, बट
1: एनवायरनमेंट.
0: एक्चुअल थिंग इज सेव योर सेल्फ, क्योंकि ये पेड़ आपकी ही मदद करेंगे और किसी की करे ना करे आपकी हेल्प होगी, आपके आसपास ठंडक बनी रहेगी. तो
1: फिलहाल आप और मिलकर एक और मदद आपकी कर देते हैं, बढ़िया सा
0: हाँ,
1: गाना सुना
0: अच्छा
1: देते हैं
0: गाना
1: हमारे
0: सुना के
1: प्लेलिस्ट की खोज में.
0: जरूर.
1: अगला गाना आपकी नजर ही है साहब.
2: हमारे भारत में हर प्रेमी को श्री कृष्ण और प्रेमिका को राधा जी के रूप में देखा जाता है.

वेलकम भाई जी, आपके एक बार फिर से प्रोग्राम युवाणी को एंजॉय कर रहे हैं आप इस वक्त। और बात कर लेते हैं मेडिकल प्रवेश परीक्षा, इसके बारे में जानकारी आ चुकी है। नीट पीजी जो कि आवेदन जिसका आप 21 जुलाई तक कर सकते हैं, और फॉर्म भरने से पहले आप ये चीज़ें ज़रूर समझ लें कि इस बार क्या कुछ छोटे मोटे बदलाव हो चुके हैं। नीट पीजी का जो पेपर है अब 200 नहीं, उसमें आपको 180 सवाल पूछे जाएंगे। और क्या उसमें बदलाव है, पहले ये था ना कि भी पहले आओ पहले पाओ का नियम अब खत्म हो चुका है। पहले जल्दी आवेदन करने वाले जो छात्र होते थे उनके लिए उनका मन पसंदीदा शहर उनको मिल जाता था सेंटर, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आवेदन करने की तारीख से सेंटर अलॉटमेंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सभी को कंप्यूटर के ज़रिए रैंडम तरीके से ही जो है वो आपकी परीक्षा केंद्र आपको मिलेंगे। और उसके बाद बात करें तो टाइम बाउंड सेक्शन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, और 180 सवाल, अब प्रश्नों की संख्या जो है 200 से घटाकर 180 कर दी गई है। पेपर में 5 सेक्शन होंगे, हर सेक्शन में 36 सवाल होंगे, और जिसके लिए आपको 42 मिनट का समय मिलेगा। एक सेक्शन का समय पूरा होने के बाद छात्र उस सेक्शन को जो है वो दोबारा से नहीं खोल पाएंगे, तो आपको जो है वो हर एक सेक्शन के लिए अलग अलग टाइम मिलेगा, और उस दौरान ही आपको जो है वो एग्ज़ाम में देना है। तो ये थी कुछ खास खबर मेडिकल एग्ज़ाम को लेकर, क्या कुछ थी बातें।

0: भाई ऐसे जो गाने होते हैं ना भाई, जो वो दिल को छू जाते हैं, और जो इस मौसम में ऐसे गाने बज जाए, क्या चाहिए फिर, तो बस यही है जन्नत, यही है। हाँ, फिलहाल वक्त हो रहा है आप सभी से विदा लेने का। आप सभी स्वस्थ रहे, खुश रहे, इस मौसम को एंजॉय कीजिए, और साथ ही साथ अपनों के साथ समय बिताना ना भूलिए। हमें दीजिए इजाज़त। मेरा नाम है रिद्धि और मेरे साथ है
1: जी बिल्कुल, इस आवाज़ का नाम राहुल और प्रोग्राम का जो प्रस्तुत करता रहे वो है राजेश लामरोड, और कंसोल पे हमारे साथ ने, हम मिलेंगे आपको फिर एक नई शाम, नई बात और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखिए।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। ये FM सन सिटी है, FM बैंड 102.1 MHz पर। शाम के 6 बजे को हैं हिंदी में समाचार, आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुनिएगा।
1: आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हम

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सांगद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर संयोजन और जांच केंद्र का लोकार्पण किया। 7,500 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश वाला ये केंद्र इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन को प्रोत्साहन देते हुए देश की प्रौद्योगिकी विनिर्माण यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये देश का तीसरा सेमीकंडक्टर प्लांट है।
1: आज भारत का तीसरा सेमीकंडक्टर प्लांट चालू हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 28 फरवरी को पहला प्लांट चालू किया और 31 मार्च को दूसरा प्लांट चालू किया और आज 4 जुलाई को तीसरा प्लांट। जिस तेजी से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में 12 प्लांट अप्रूव किए और 12 प्लांट में से 3 में कॉमर्शियल प्रोडक्शन चालू हुआ, आज दुनिया भर में भारत की सेमीकंडक्टर क्षमता पर एक नया विश्वास उठ खड़ा हुआ है।
0: पूरी तरह चालू होने पर इस केंद्र की वार्षिक उत्पादन क्षमता 5 अरब सेमीकंडक्टर चिप हो जाएगी। इससे मेमोरी और स्टोरेज समाधानों की बढ़ती वैश्विक मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी। इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के चरण 2 की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश के सबसे आधुनिक ग्रीन फील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोलियम पेट्रोकेमिकल संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीन फील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या खनिजों के लिए एक औद्योगिक प्रसंस्करण का केंद्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पचपदरा रिफाइनरी भारत को एक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक परियोजना है। श्री मोदी ने कहा कि पश्चिम एशिया के संघर्ष ने 21वीं सदी के सबसे बड़े ऊर्जा संकट को जन्म दिया है। भारत का समय पर लिए गए निर्णय

0: प्रभावशाली रणनीति और राष्ट्रीय संसाधनों के विवेकपूर्ण प्रबंधन ने देश को इस संकट पर काबू पाने योग्य बनाया है।
1: हमने संकट शुरू होते ही रिफाइनरी के सामर्थ्य पर फोकस किया। औद्योगिक काम के लिए जो गैस बनती थी उसकी जगह रिफाइनरी को रसोई गैस एलपीजी बनाने के लिए कहा गया और 7 दिनों के भीतर भीतर एलपीजी के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। पहले जो 35,000 मैट्रिक टन एलपीजी का उत्पादन देश में होता था, संकट के दौरान वो 54,000 मैट्रिक टन बढ़ गया।
0: श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 54,000 नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी प्रदान किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का रक्षा निर्यात 38,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि वित्त वर्ष 2013-14 में रक्षा निर्यात 686 करोड़ रुपए से वर्तमान में लगभग 57 गुना बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि वृद्धि रक्षा विनिर्माण और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण प्रगति और मेक इन इंडिया रक्षा प्लेटफॉर्म पर बढ़ते वैश्विक विश्वास को रेखांकित करती है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये सत्र राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णयों पर केंद्रित होगा। वैश्विक शांति अभियानों में भारत के दीर्घकालिक योगदान को एक महत्वपूर्ण मान्यता मिली है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में कल संयुक्त राष्ट्र के अधीन सेवारत 651 भारतीय सेना के कर्मियों को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया था। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी जोधपुर का ये FM सेंसिटिव चैनल है, FM बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6:05 हुए हैं, आइए सुने गुड इवनिंग जोधपुर।

दोस्तों रोजगार ये है प्रोग्राम गुड इवनिंग जोधपुर और मैं हूँ आपका दोस्त सिद्धार्थ शर्मा। गर्मियों की तपती धूप से निकलकर अब बारिश में भीगने का मौसम आ चुका है। मानसून की बरसात अपनी पूरी तैयारी के साथ हमारे घर और शहर आ चुकी है। अब देखना यह है कि बारिश में पूरी तरह भीग जाने के साथ साथ और आपकी क्या क्या तैयारी है इन बारिशों के स्वागत की। दोस्तों हमारी भूल जाने की बड़ी बुरी आदत है, इसलिए आपका ये दोस्त आपको पहले ही याद दिला रहा है कि मानसून के आ जाने पर भी गर्मियों की भीषण तपिश को भूलिएगा मत और थोड़ा सा सहयोग अपने हिस्से का जरूर करिएगा इस प्रकृति को पेड़ और पौधों का उपहार देकर। कोशिश कीजिएगा कि हमारे नेटिव प्लांट्स यानी स्थानीय पेड़ पौधे लगाएं और सिर्फ लगाकर भूल ना जाएं बल्कि पूरे साल उनकी देखभाल भी करें ताकि वो जल ना जाएं। अगर थोड़ी सी मेहनत हम सब लोग मिलकर करें तो सोचिए क्या नहीं हो सकता। तो एक बार फिर आपको मॉनसून की शुभकामनाओं के साथ बारिश में भीगा ये गीत सुनवा दें।

दोस्तों, आज है जन्मदिन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के महान क्रांतिकारी अल्लूरी सीतारमण राजू का। आज ही जन्म लिया था भारतीय राजनीतिज्ञ और दो बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री रही गुलजारी लाल नंदानी। सुप्रसिद्ध भाषा विज्ञानी विमलेश कांति वर्मा का भी जन्मदिन आज ही के दिन होता है। और गोवा के मुख्यमंत्री रह चुकी लक्ष्मीकांति यशवंत पार्सेकर भी मनाते हैं अपना बर्थडे आज ही के दिन। आज ही के दिन जन्मी थी पहली महिला सुपरस्टार और ब्यूटी क्वीन कही जाने वाली हिंदी फिल्म अभिनेत्री नसीम बानू भी। वो अभिनेत्री सायरा बानू की माँ और अभिनेता दिलीप कुमार की सास थी। आइए सुने उन्हीं की फिल्म का ये गाना।

जी हाँ, 102.1 FM सेंसिटिव ट्यून है आपका रेडियो सेट। दोस्तों, आज है पुण्यतिथि, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के अभिकल्पक पिंगली वेंकैया और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की सेनानी, सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता अम्मुकुट्टी स्वामीनाथन की। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और 1857 के महान क्रांतिकारी और शहीद धन सिंह गुर्जर आज ही के दिन इस धरती को छोड़कर गए थे। साथ ही आज है पुण्यतिथि स्वामी विवेकानंद की। स्वामी विवेकानंद वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु के रूप में विश्व विख्यात हैं। उनका वास्तविक नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। वे रामकृष्ण परमहंस के सुयोग्य शिष्य थे। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जो आज भी अपना काम कर रहा है। उन्होंने अमेरिका स्थित शिकागो में सन 1893 में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था, जहां उन्हें बोलने के लिए सिर्फ 2 मिनट का समय दिया गया था, लेकिन उन्होंने भाषण का आरंभ मेरी अमरीकी बहनों और भाइयों के संबोधन से शुरू किया और इस वाक्य के प्रथम वाक्य के प्रभाव से ही उन्होंने सबका दिल जीत लिया।

कलकत्ता के एक कुलीन बंगाली कायस्थ परिवार में जन्मे विवेकानंद आध्यात्मिकता की ओर झुके हुए थे। वे अपने गुरु रामकृष्ण देव से काफी प्रभावित थे, जिनसे उन्होंने सीखा कि सारे जीवों में स्वयं परमात्मा का ही अस्तित्व है। इसलिए जो मनुष्य दूसरे जरूरतमंदों की मदद करता है, वो स्वयं परमात्मा की सेवा करता है।

0: सारी शक्तियाँ तुम्हारे अंदर हैं। डरो मत, तुम सब कुछ कर सकते हो।
1: अपने गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु के बाद विवेकानंद ने बड़े पैमाने पर भारतीय उपमहाद्वीप की यात्रा की और ब्रिटिश भारत में तत्कालीन स्थितियों का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त किया।
0: देश के लिए बलिदान महान कर्म है।
1: बाद में विश्व धर्म संसद 1893 में भारत का प्रतिनिधित्व करने संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए प्रस्थान किया। विवेकानंद ने संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोप में हिंदू दर्शन के सिद्धांतों का प्रसार किया और कई सार्वजनिक और निजी व्याख्यानों का आयोजन किया। भारत में विवेकानंद को महान आध्यात्मिक गुरु, मार्गदर्शक और एक देशभक्त सन्यासी के रूप में माना जाता है।

उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए आज उनकी पुण्यतिथि पर हृदय से स्मरण कर नमन करें महान

जी हाँ दोस्तों, 102.1 FM सन सिटी। आज के इस गुड इवनिंग जोधपुर प्रोग्राम में हम याद कर रहे हैं पंडित भरत व्यास को भी। भरत व्यास हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार थे। इनका जन्म 6 जनवरी 1918 को बीकानेर राजस्थान में हुआ था। जाति से ब्राह्मण, मूल रूप से चूरू जिले के आप भरत व्यास थे। बचपन से ही लोगों को इनमें कवि प्रतिभा दिखने लगी थी। उन्होंने 17-18 वर्ष की उम्र में लेखन शुरू कर दिया था। चूरू से मैट्रिक करने के बाद वो कलकत्ता चले गए। उनका लिखा पहला गीत आओ वीरों हिलमिल गाए वंदे मातरम बड़ा प्रसिद्ध हुआ था। उन्होंने रामू चन्ना नाम का नाटक भी लिखा। 1942 के बाद वे मुंबई आ गए। उन्होंने कुछ फिल्मों में भूमिका भी निभाई, लेकिन प्रसिद्धि उन्हें गीत लेखन से ही मिली।

फिल्मों में उनका पहला ब्रेक फिल्म दुहाई के लिए था, जो 1943 में रिलीज हुई थी, और संगीत निर्देशन का श्रेय संयुक्त रूप से पन्नालाल घोष, रफीक गजनवी और शांति कुमार को दिया गया था। इस फिल्म के गीत नूरजहां और शांता आप्टे ने गाए थे। व्यास नाटकों और रिकॉर्ड के लिए राजस्थानी गीत लिखते थे। ये भी उल्लेखनीय है कि उन्होंने मुंबई में फिल्मों में आने से पहले कोलकाता में अपनी पढ़ाई पूरी की। उन्हें फिल्म निर्देशन में भी दिलचस्पी थी और वास्तव में उन्होंने करियर की शुरुआत में ही एक फिल्म का निर्देशन किया था। उन्होंने 1940 के दशक में कुछ शुरुआती फिल्मों में अभिनय भी किया और गीत भी गाए। मुंबई आने के बाद उनकी काव्य रचनाएं लोकप्रिय हुई। साल 1982 में आज ही के दिन मुंबई में उनका निधन हो गया। उनके लिखे कुछ प्रमुख गीतों की फिल्मों के नाम हैं सारंगा, संत ज्ञानेश्वर, तूफान और दिया, रानी रूपमती, गूंज उठी शहनाई, दो आंखें बारह हाथ, बूंद जो बन गई मोती, पूर्णिमा और बहुत सारी फिल्में।

0: अपने खेत बगीचे घर टेरेस या ऑफिस को बनाइए हरा भरा, पौधे उगाइए, पर्यावरण बचाइए।
1: आज ही पधारे लालजी नर्सरी, रानो जी का बाग, खोखरिया विराम मंडू।
0: लालजी नर्सरी गूगल पर सर्च कीजिए।
2: लालजी नर्सरी, कुछ समय हरियाली में बिताओ।

दोस्तों, एक राजस्थानी होने के नाते पंडित भरत व्यास ने राजस्थान के प्रति अपनी जिम्मेदारी भी बखूबी निभाई थी। उन्होंने एक बॉलीवुड फिल्म रंगीला राजस्थान जो 1949 में बनी थी उसका निर्देशन भी किया था, जिसके लिए उन्होंने गीत लिखे। दोस्तों, एक और कालजयी गीत आपको सुनवाते हैं, इन्हीं का लिखा।

जी हाँ दोस्तों, बारिश की छम छम बूंदों की आवाज जो छत पर और टिन पर छलकती हुई महसूस होती है, कितनी प्यारी ये आवाज लगती है जब धरती तृप्त होती है। बारिश का मौसम एक ऐसा मौसम जब दिल खुद ब खुद खिल उठता है।

दोस्तों, आज है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस भी। इसका उद्देश्य सहकारी समितियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और आंदोलन के मूल्यों को आगे बढ़ाना है। 16 दिसंबर 1992 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जुलाई के पहले शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के रूप में घोषित किया गया था। दोस्तों, सहकारिता लोगों को लोकतांत्रिक और समान तरीके से एक साथ लाती है। सदस्य चाहे ग्राहक, कर्मचारी, उपयोगकर्ता या निवासी हों, सहकारी समितियों का प्रबंधन लोकतांत्रिक तरीके से एक सदस्य एक वोट के नियम द्वारा किया जाता है। भारत में लगभग 90% गांवों को कवर करने वाली 8.5 लाख से ज्यादा सहकारी समितियों के नेटवर्क के साथ ये ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में समावेशी विकास के उद्देश्य से सामाजिक आर्थिक क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण संस्थान है। अमूल, इफको, क्रिबको और नेफेड इसके उदाहरण हैं। तो दोस्तों, सहकारी क्षेत्र में देश के किसान, कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ शहरी क्षेत्रों के भी विकास और सशक्तिकरण के लिए पर्याप्त संभावनाएं हैं। फिलहाल ये गीत फिर से बारिश वाला।

तो दोस्तों आज गुड इवनिंग जोधपुर के इस प्रोग्राम में हमने बातें की खूब सारी। बारिश की बूंदों के बीच सुनवाए कुछ बारिश में भीगे गीत भी। तो याद रखिएगा अपना वादा, बारिश के आनंद के साथ इस मॉनसून जिम्मेदारी निभाने का भी। कोशिश कीजिएगा कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाएं, अपने आसपास के वातावरण को हरा भरा बनाएं, और सिर्फ लगाएं ही नहीं बल्कि पूरे साल और उनके बड़े होने तक उनकी देखभाल भी करें। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में अपनी मुलाकात बस इतनी ही, फिर किसी प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने दोस्त सिद्धार्थ शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे गुड इवनिंग जोधपुर। ये FM सन सिटी है, FM बैंड 102.1 MHz पर। इस समय शाम के 7 बजे हैं। विशेष जयमाला, ये कार्यक्रम सुनिएगा बस थोड़ी ही देर में।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक देव दर्शन धूप, अगरबत्ती, धूप स्टिक, कोन्स एवं हवन सामग्री।

0: सर्वोत्तम क्वालिटी, देव दर्शन धूप, अगरबत्ती, कॉर्न व हवन सामग्री।
1: और शुरू होता है ललित का मध्यम साफ लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुंह हाथ धोना है, काम काज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
2: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।
3: जय माला।

0: फौजी साथियों की सेवा में आज का विशेष जयमाला कार्यक्रम प्रस्तुत किया है पार्श्व गायक मोहम्मद अजीज ने। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त ये रिकॉर्डिंग आपके लिए पेश है।
1: फौजी भाइयों, आपके सामने आपका नाचीज प्लेबैक सिंगर मोहम्मद अजीज आपसे मुखातिब है। आपका प्यार, आपकी वफा, आपकी ईमानदारी, आपकी डेडिकेशन, इन तमाम चीजों के लिए जितना भी हम शुक्रिया अदा करें कम है। आपको हम लोग सैल्यूट करते हैं और हम कर भी क्या सकते हैं, बस इतना है कि मैं क्या और मेरी औकात क्या कि मैं आपकी तारीफ में, आपकी शान में कुछ कहूँ, क्योंकि अगर हमारे देश के लिए कोई

0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।

मेरा फिल्मी सफर 20 साल का है, यानी मैं 21 साल हो गए मुझे मैं फिल्मों में आया। लेकिन इससे पहले से ही मैं, यानी बचपन से मैं मोहम्मद रफी साहब का बड़ा भक्त रहा और आज भी हूँ। इतनी कामयाबी, इतनी शोहरत मिलने के बाद भी मैं उनको अपना एक छात्र समझता हूँ, स्टूडेंट समझता हूँ। मेरा संगीत का जो कारवां चला है, जो कुछ भी मैंने सीखा है, वो उनसे ही सीखा, उनको सुनकर सीखा। वो मेरे रूहानी उस्ताद हैं, तो उनके बहुत सारे गाने मुझे बेहद पसंद हैं। फौजी भाई, मैं आपको एक वो गीत सुनाना चाहता हूँ जो मुझे बेहद पसंद है, मैं समझता हूँ आपको भी अच्छा लगेगा। फिल्म चित्रलेखा का ये गीत, मन रे तू काहे न धीर धरे।

0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 135,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।
0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 135,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।

अब जरा सा आपका मूड बनाते हैं, क्योंकि देखिए हर वक्त ये ड्राई मूड या ये दुखी बातें करके आपको परेशान नहीं करना चाहता हूँ, तो थोड़ा आपको एंटरटेन करना चाहता हूँ। एक फिल्म आई थी राम लखन, आपको याद होगा, अनिल कपूर माधुरी वगैरह, वो ये गीत बहुत पॉपुलर हुआ था और इस गीत के साथ मैं भी बहुत पॉपुलर हो गया था। ये आप पेश कर रहा हूँ 1-2 का 4, 4-2 का 1।

दोस्तों, रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती चैनल और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम विशेष जयमाला। इसे प्रस्तुत किया है पार्श्व गायक मोहम्मद अजीज ने। जयमाला कार्यक्रम का शेष भाग आपको सुनवाएंगे इस छोटे से अंतराल के बाद।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे देव दर्शन धूप, अगरबत्ती, धूप स्टिक, कोन्स एवं हवन सामग्री।
1: और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जय माला।
2: हाँ फौजी भाइयों, कैसा लगा ये गीत? पता है जब मैं प्रोग्राम में जाता हूँ तो मुझे इस गाने में बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। मुझे शायद ये 2-3 बार गाना पड़ता है। अब सुरों की देवी हमारी हमारी इंडस्ट्री की, जिन पर सरस्वती का बहुत वरदान रहा है, और कई कई लोग थे ये भी कहते कि वो साक्षात सरस्वती हैं, और मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूँ कि मैंने उनके साथ कई गाने गाए, उनके साथ काफी म्यूजिकल शोज के टूर भी किए हैं। तो उनके हजारों बेशुमार लाजवाब गानों में से एक गाना मैंने चुना है। मैं उम्मीद करता हूँ, देखिए जी, कि ये बिल्कुल थोड़ा अनकॉमन गाना है, जानबूझकर मैंने ये रखा है ताकि अगर आप भूल गए तो आपको ये याद दिला दूं। ये बहुत खूबसूरत गीत है फिल्म बहारों की मंजिल का, ये दामन अपना छूटेगा।

0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।
0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को

0: पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।

0: आपको मेरी पसंद का अंदाजा हो गया होगा। कैसा लगा आपको ये गीत? मानते हैं ना कि मैं अच्छा लिसनर हूँ। अब उसी घर में, उसी फैमिली में, मंगेशकर फैमिली में एक और हस्ती हैं जो अपने में आप हैं, जिनकी तारीफ के लिए मेरे पास क्या, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। इतनी बड़ी वर्सटाइल आर्टिस्ट हमारी इंडस्ट्री में कोई आज तक पैदा हुआ ना पैदा होगा, जिनका नाम आशा भोसले। तो आशा जी के साथ भी मैंने एक फिल्म में गाया था, आपको याद होगा, मुद्दत फिल्म, मिठुन दादा की फिल्म। तो इस फिल्म में मैंने एक गाना गाया था जो बहुत ही पॉपुलर हुआ। अब मुझे ये गीत बहुत पसंद है, उम्मीद करता हूँ फौजी भाई आपको भी अच्छा लगेगा। प्यार हमारा अमर रहेगा।
1: प्यार

फौजी भाई, आपको याद है आपने फिल्म नगीना देखी होगी। अगर आप मैदान जंग में नहीं रहे होंगे जब आप छुट्टी में होंगे, मुझे उम्मीद है छुट्टियों का ही दौर था वो नगीना फिल्म जब आई थी। कोई अफरा तफरी नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी उस दौर में। मुझे उम्मीद आपने देखी होगी फिल्म नगीना। आज कल याद कुछ और रहता नहीं,

हमारे गोविंदा जी हमारी इंडस्ट्री के चहेते कलाकार, काफी पॉपुलर, काफी कॉमेडी, काफी वैरायटी, उनके लिए मैंने बहुत गाने गाए हैं, बहुत सारे गाने गाए हैं। और ये गीत बहुत पॉपुलर हुआ था फिल्म खुदगर्ज का, आज भी मैं स्टेज शोज में गाता हूँ। गीत है मैं से मीना से।

0: मैं यही दुआ करता हूँ कि आपका सर हमेशा ऊंचा रहे और आप दुश्मन चाहे कोई भी हो उसके सामने कभी ना हारे और बखैर खूबी मैदान जीत कर आप अपने घर जाएं इज्जत के साथ शान और शौकत के साथ। जाते जाते फौजी भाइयों, ये गीत जिस गीत से आपकी शान और शौकत का पता चलता है, आपका वकार, आपकी इज्जत और आपकी कुर्बानियां, जिस कुर्बानियों का जिस गाने में जिक्र है, ये गीत मैं पेश कर रहा हूँ। खुदा हाफिज, जय हिंद।
1: कर चले हम पिता।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: किसने कहा है? यशोदन एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
1: यशोदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे यशोदा आ गई सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
2: वाह,

ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी। आप हैं विविध भारती के संग।

जिज्ञासा। जिज्ञासा ज्ञान की रेडियो एक्टिव तरंग। ज्ञान की रेडियो एक्टिव तरंग जिज्ञासा में मैं यूनुस खान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जो लोग दफ्तर में काम करते हैं वो दिन भर बैठे रहते हैं, ईमेल का जवाब देते हैं, अपनी फाइलें निपटाते हैं, वीडियो कॉल अटेंड करते हैं या जो भी करते हैं, दफ्तर में पूरा दिन कुर्सी पर बैठे बैठे बीत जाता है। लेकिन ये आदत उनकी सेहत को नुकसान पहुंचा रही है। विशेषज्ञ ये कहते हैं कि लंबे समय तक अगर आप बैठे रहते हैं तो मोटापा, दिल की बीमारी और टाइप 2 डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है। ये तो सभी जानते हैं कि स्क्रीन पर अगर आप काम करते हैं तो ब्रेक लेना अच्छा है, लेकिन ये साफ नहीं है कि काम करते हुए कितनी बार वॉकिंग का ब्रेक लेना जरूरी है ताकि शरीर में मूवमेंट बना रहे। ब्रिटिश जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन में एक रिपोर्ट छपी है जिसमें यह कहा गया है कि हर घंटे में 5 मिनट का वॉकिंग ब्रेक लेना चाहिए। इसे मूवमेंट स्नैक कहा गया है। दफ्तर में दिन बिताने वाले लोगों के लिए सेहत ठीक रखने का यह सबसे अच्छा और आसान तरीका है। इससे उनका काम प्रभावित नहीं होता है। ज्यादातर लोग नींद से उठने के बाद पूरे दिन का 3/4 हिस्सा बैठे बैठे गुजारते हैं, या तो घर पर बैठे हैं या दफ्तर में बैठे हैं। लेकिन अब विशेषज्ञ कहते हैं कम बैठो और ज्यादा चलो। इस सलाह पर अगर आप अमल करेंगे तो आपकी सेहत अच्छी रहेगी। हर घंटे में 5 मिनट अगर आप वॉक करते हैं तो आपका मूड बेहतर होता है, थकान कम होती है और रोजमर्रा के जीवन में स्फूर्ति बनी रहती है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने यह स्टडी की है जिसमें अमेरिका के 11,000 से ज्यादा कर्मचारियों को शामिल किया गया है, और इनमें ज्यादातर ऐसे लोग हैं जो 8 से 9 घंटे दफ्तर में अपनी शिफ्ट में काम करते हैं। पहले हफ्ते उन्होंने अपनी सामान्य दिनचर्या जारी रखी और उन्होंने रोजाना थकान, मूड और कामकाज का ब्यौरा सर्वे के फॉर्म में भरा। अगले 2 हफ्तों में उनसे कहा गया कि वे काम के दौरान हर आधे घंटे में, 1 घंटे में या 2 घंटे में 5 मिनट का वॉकिंग ब्रेक लें और उसके बाद सर्वे का फॉर्म भरें। हर आधे घंटे की वॉक से मूड में सुधार हुआ, लेकिन थकान भी कम हुई और काम में रुकावट आई। हर 2 घंटे में चलना बिल्कुल भी ना चलने से बेहतर पाया गया। रिसर्चर्स ने यह पाया कि हर 1 घंटे में 5 मिनट वॉक करने से कामकाज, मूड और फोकस तीनों में सुधार आया है। रिसर्चर कीथ डियाज ने यह बात कही है कि लंबे समय तक बैठने की आदत से छुटकारा पाना कठिन है।

स्टडी में ये बात सामने आई है कि कई कर्मचारियों को इस बात की चिंता होती है कि बॉस या उनके सहकर्मी ब्रेक लेने की उनकी आदत को किस तरह से देखेंगे, कहीं ये तो नहीं कि उन्हें कामचोर समझा जाए। लेकिन मूवमेंट ब्रेक वास्तव में कामचोरी नहीं है, बल्कि काम को बेहतर बनाने का एक तरीका है। ब्रेक लेने से फोकस, मेमोरी और सोचने की क्षमता में सुधार होता है। लोग ज्यादा फ्रेश और रिलैक्स महसूस करते हैं और इससे वो बेहतर काम कर पाते हैं। रिसर्चर्स ये कहते हैं कि वॉक करना कम खर्चीला है और इसका मतलब काम रोकना तो कतई नहीं है। आप मीटिंग करते हुए वॉक कर सकते हैं, फोन कॉल लेते हुए टहल सकते हैं, आप दफ्तर में या बाहर भी वॉक कर सकते हैं। ये जो छोटे छोटे मूवमेंट्स हैं, इससे आपका शरीर सेहतमंद रह सकता है। ये स्टडी कम समय में की गई थी और इसमें लोगों ने अपने अनुभवों के बारे में बताया है और इस तरह

की गई थी और इसमें लोगों ने अपने अनुभवों के बारे में बताया है और इस तरह से ये पता चला है कि इससे ओवरऑल हेल्थ और हार्ट की हेल्थ पर असर पड़ेगा। हालांकि अभी इस मामले में लंबी रिसर्च करना बाकी है।

जिज्ञासा कार्यक्रम में चूंकि सेहत की बातें चल रही हैं, तो अब बात जंक फूड की। बचपन में ज्यादा जंक फूड खाने से दिमाग पर लंबे समय तक असर पड़ सकता है, भले ही बाद में आप खान पान में सुधार कर लें। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ कॉर्क के एक नए अध्ययन में ये पाया गया है कि फैट और शुगर से भरपूर डाइट दिमाग के उन हिस्सों को प्रभावित करती है जो भूख और खाने की आदतों को नियंत्रित करते हैं। ये बदलाव समय के साथ बने रह सकते हैं। शोध में ये बात सामने आई है कि आज के बच्चे चारों तरफ से प्रोसेस्ड फूड से घिरे होते हैं। ये खाना आसानी से उपलब्ध है, इसका प्रचार भी बहुत होता है, इसलिए बच्चे जन्मदिन, स्कूल में या अन्य गतिविधियों में जंक फूड बहुत ज्यादा मात्रा में लेते हैं और इससे बचपन में खाने की आदतों पर असर पड़ता है। नेचर कम्युनिकेशंस नामक एक जर्नल में ये स्टडी छपी है जिसमें ये पाया गया है कि कम पोषक तत्व वाले लेकिन ज्यादा कैलोरी वाले खाद्य पदार्थ बचपन में खाने से खानपान को लेकर रवैये में स्थायी बदलाव आता है। रिसर्च के दौरान वैज्ञानिकों ने एक प्रयोगात्मक माउस मॉडल का इस्तेमाल किया। इसमें पाया गया कि जिन जीवों को बचपन में हाई फैट और हाई शुगर की डाइट दी गई, बड़े होने पर भी खान पान के मामले में उनका बर्ताव वैसा ही रहा। इन बदलावों को दिमाग के हाइपोथैलेमस हिस्से में गड़बड़ी से जोड़ा गया जो भूख और ऊर्जा संतुलन को नियंत्रित करता है। वैज्ञानिकों के अनुसार आगे चलकर इससे मोटापे का खतरा भी बढ़ सकता है। शोध में यह भी देखा गया कि आंत के माइक्रोबायोम को बदलकर इस असर को कम किया जा सकता है। वैज्ञानिकों ने एक लाभकारी बैक्टीरिया स्ट्रेन और प्रोबायोटिक फाइबर का परीक्षण किया जो प्याज, लहसुन, केले और एस्पेरेगस जैसे खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं। नतीजों से पता चला कि खाने के व्यवहार को इससे बेहतर बनाने में मदद मिलती है। बैक्टीरिया ने खासतौर पर वैसा ही असर किया जो सेहत के लिए फायदेमंद है, जबकि फाइबर ने आंत के माइक्रोबायोम में व्यापक बदलाव किए। बचपन में हम क्या खाते हैं ये बहुत मायने रखता है और इसका असर केवल वजन पर नहीं बल्कि हमारे पूरे बर्ताव पर पड़ सकता है। तो बहुत जरूरी है कि हम जंक फूड से बचें और बच्चों को ये भी बताएं कि जंक फूड किस तरह से नुकसान करता है। खासतौर पर ये जो रिसर्च आई है ये साबित करती है कि जंक फूड सिर्फ आपकी सेहत, आपके वजन पर ही नहीं बल्कि आपके दिमाग पर भी असर डालता है और आगे चलकर आप जो सेहतमंद खाना है उससे खुद को दूर कर लेते हैं। तो जंक फूड से बचने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इस बीच में आपने बहुत सारी रिसर्च ये भी देखी होगी कि किस तरह से टीनेज बच्चों में पूरी दुनिया में वजन बढ़ता चला जा रहा है, ओबेसिटी बढ़ रही है। पूरी दुनिया में जो मोटे बच्चे हैं उनकी तादाद बढ़ती चली जा रही है। ऐसे में सेहतमंद खाने की तरफ ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। स्पोर्ट्स पवेलियन और अब स्पोर्ट्स की दुनिया से कुछ दिलचस्प खबरें। अभिषेक शर्मा ने T20 इंटरनेशनल में सबसे कम गेंदों में 100 छक्के लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने सूर्य कुमार यादव को पीछे छोड़कर रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे खिलाड़ियों की लिस्ट में अपनी जगह बना ली है। आप जानते हैं कि भारत और इंग्लैंड के बीच 1 जुलाई को चेस्टरली स्ट्रीट में पहला T20 मैच हुआ जहां अभिषेक शर्मा ने शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया। अभिषेक ने बेखौफ अंदाज में बल्लेबाजी की और 24 गेंदों में 59 रन बनाए। अपनी इस विस्फोटक पारी में उन्होंने 4 छक्के लगाए। पारी के चौथे ओवर में तीसरा छक्का लगाते ही उन्होंने महज 785 गेंदों में T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 छक्के पूरे कर लिए और एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। अभिषेक शर्मा ने 785 गेंदों में 100 T20 अंतर्राष्ट्रीय छक्के पूरे किए और वेस्टइंडीज के एविन लुईस का रिकॉर्ड तोड़ दिया जिन्होंने 789 गेंदों में ये उपलब्धि हासिल की थी। इस सूची में न्यूजीलैंड के फिन एलन 871 गेंदों के साथ तीसरे नंबर पर हैं, ऑस्ट्रेलिया के टिम डेविड 931 गेंदों के साथ चौथे नंबर पर हैं और न्यूजीलैंड के पूर्व बल्लेबाज कॉलिन मुनरो 963 गेंदों के साथ पांचवें नंबर पर हैं। भारत के सूर्य कुमार यादव ने 1007 गेंदों में

100 छक्के पूरे किए थे और अब वो इस सूची में छठवें नंबर पर पहुंच गए हैं। उनसे पहले रोहित शर्मा 205, सूर्य कुमार यादव 179, हार्दिक पंड्या 126 और विराट कोहली 124 के साथ इस लिस्ट में कायम हैं। अभिषेक जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि वो भारतीय क्रिकेट के नए सिक्सर किंग हैं। अभिषेक शर्मा ने इंग्लैंड के खिलाफ T20 मैच में केवल 100 छक्कों का रिकॉर्ड ही पूरा नहीं किया है, बल्कि केवल 20 गेंद में 50 रन पूरा करने का ऐतिहासिक कारनामा भी उन्होंने किया है। इंटरनेशनल T20 क्रिकेट में इंग्लैंड की धरती पर खेलते हुए किसी भारतीय द्वारा सबसे तेज 50 का रिकॉर्ड अब अभिषेक के नाम हो गया है। अभिषेक शर्मा ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले T20 मैच में 20 गेंद में 50 पूरी की। इस मुकाबले में उन्होंने 24 गेंदों में 59 रन बनाए, लेकिन आउट होने से पहले वो KL राहुल का ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। अभिषेक शर्मा ने इंग्लैंड की धरती पर खेलते हुए भारत के लिए सबसे तेज T20 50 लगाई है। इससे पहले यह रिकॉर्ड KL राहुल के नाम था, जिन्होंने 2018 में मैनचेस्टर में खेलते हुए 27 गेंदों में हाफ सेंचुरी पूरी की थी। अभिषेक ने अपनी इस तूफानी पारी में 6 चौके और 4 छक्के लगाए हैं। क्रिकेट की दुनिया से अब चलते हैं फुटबॉल की दुनिया की तरफ। फ्रांस के किलियन एम्बापे ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में रिकॉर्ड नए सिरे से लिखने शुरू कर दिए हैं। एक के बाद एक रिकॉर्ड बनते चले जा रहे हैं और फीफा का ये वर्ल्ड कप एक तरह से उलटफेरों और नए रिकॉर्ड्स का वर्ल्ड कप बनता चला जा रहा है। 28 साल के फॉरवर्ड खिलाड़ी किलियन एम्बापे ने 2 गोल पिछले मंगलवार को दागे और फ्रांस ने राउंड ऑफ 32 में स्वीडन को 3-0 से हराकर बाहर कर दिया। इन 2 गोलों के साथ एम्बापे ने टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में जर्मनी के दिग्गज मिरोस्लाव क्लोज को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने अपने गोल के आंकड़े को 18 तक पहुंचा दिया है। एम्बापे अब वर्ल्ड कप नॉकआउट मैचों में कुल 10 गोल कर चुके हैं, जो उन्हें नंबर 1 पर ले आया है। नॉकआउट स्टेज में 10 गोल के साथ एम्बापे ने ब्राजील के दिग्गज रोनाल्डो, नजारियो और लियोनिदास को पीछे छोड़ दिया है। इन दोनों ने ही 8-8 गोल किए थे। इसके बाद फ्रांस के जस्ट फॉन्टेन और ब्राजील के पेले आते हैं, जिन्होंने नॉकआउट मुकाबले में 7-7 गोल किए थे। लियोनेल मेसी की बात करें तो अब तक वो 19 गोल के साथ फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास के सबसे बड़े गोल स्कोरर के रूप में शामिल हैं। नॉकआउट मैचों में उनके नाम सिर्फ 5 गोल हैं। उनके चिर प्रतिद्वंदी क्रिस्टियानो रोनाल्डो के नाम तो वर्ल्ड कप नॉकआउट मुकाबले में 1 भी गोल दर्ज नहीं है। इस टूर्नामेंट में एम्बापे के 6 गोल ने उन्हें गोल्डन बूट की दौड़ में अर्जेंटीना के महान खिलाड़ी लियोनेल मेसी के बराबर ला खड़ा किया है। और अब आधार कार्ड से जुड़ी हुई एक जरूरी जानकारी यह है कि सरकार ने आधार कार्ड धारकों को राहत देते हुए ईमेल अपडेट की फीस खत्म कर दी है। पहले इसके लिए 75 रुपए देने पड़ते थे, लेकिन अब 31 दिसंबर 2026 तक ये सेवा मुफ्त में उपलब्ध होगी। इस बदलाव से डिजिटल सेवाओं और OTP वेरिफिकेशन में आसानी होगी। आप अपने आधार कार्ड में ईमेल बदलवा पाएंगे। 1 जुलाई से एक और नया बदलाव हुआ है और वो ये कि पासपोर्ट बनवाना अब महंगा हो गया है। सामान्य पासपोर्ट की फीस बढ़ाकर अब 2,500 रूपये कर दी गई है और तत्काल पासपोर्ट की फीस तकरीबन 5,000 रूपये कर दी गई है। चूंकि आधार कार्ड की बात चल रही है तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आधार कार्ड को कैसे अपडेट किया जा सकता है। आधार कार्ड एक बहुत जरूरी दस्तावेज है और समय समय पर हमारे लिए जरूरी होता है कि हम इसमें अपडेट करें। कभी हमें मोबाइल नंबर बदलवाना पड़ता है तो कभी पता बदलवाना पड़ता है, तो इसे कैसे करना है आपको बता देते हैं कि प्ले स्टोर में जाकर आपको आधार ऐप डाउनलोड करना है। उसके बाद अपना आधार नंबर और OTP के जरिए आधार ऐप में लॉगिन कर लीजिए। यहां आपको अपडेट आधार ऑनलाइन वाला ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। अब नाम वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपना नाम बदल सकते हैं। लास्ट में आप अपडेट शुल्क पे करके फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। आधार ऐप के जरिए मोबाइल नंबर और पते में भी बदलाव किया जा सकता है। इसके लिए आपको आधार ऐप में अपडेट आधार ऑनलाइन वाले ऑप्शन पर जाना है। मोबाइल नंबर बदलने के लिए आपको फेस स्कैन या OTP के जरिए वेरिफिकेशन करना होगा। वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद आपको नया मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा और इसके साथ ही अगर और कोई डिटेल वहां मांगी जाती है तो वो देनी है और

तयशुदा फीस आपको भरनी है और फॉर्म सबमिट कर देना है। एड्रेस बदलने के लिए आपको अपडेट आधार एड्रेस ऑनलाइन वाले ऑप्शन पर जाना है। वहां एड्रेस बदलने का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करें। जो डॉक्यूमेंट्स की मांग की जाती है वो डॉक्यूमेंट्स आपको स्कैन करके सबमिट कर देना है। उसके बाद सारे डिटेल्स भरने हैं और उसके बाद फीस भर देनी है। इस तरह से आप अपने आधार कार्ड में किसी भी तरह का बदलाव कर सकते हैं। ये सारे बदलाव अपने मोबाइल फोन में आधार ऐप डाउनलोड करने के बाद किए जा सकते हैं। ये था आज का जिज्ञासा कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के लिए शोधालेख स्वर और संपादन आपके इस दोस्त यूनुस खान का था। मिलेंगे अगले हफ्ते ज्ञान की रेडियो एक्टिव तरंग जिज्ञासा में। जिज्ञासा।

0: हवा महल में आज हमारी श्रृंखला सुनो कहानी।
1: दोस्तों, हवा महल के अंतर्गत इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला सुनो कहानी। सुनो कहानी के अंतर्गत आपको सुनवा रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी का वाचन। आइए आज सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी विश्वास का पहला भाग। वाचन स्वर अमरकांत दुबे का, प्रस्तुति हर्षवर्धन गवई की।
2: उन दिनों मिस जोशी बंबई सभ्य समाज की राधिका थी। थी तो वो एक छोटी सी कन्या पाठशाला की अध्यापिका, पर उसका ठाट बाट मान सम्मान बड़ी बड़ी धनरानियों को भी लज्जित करता था। वो एक बड़े महल में रहती थी जो किसी जमाने में सतारा के महाराज का निवास स्थान था। वहाँ सारे दिन नगर के रईसों, राजों, राज कर्मचारियों का तांता लगा रहता था। वो सारे प्रांत के धन और कीर्ति के उपासकों की देवी थी। अगर किसी को खिताब का कब्ज था तो वो मिस जोशी की खुशामद करता था। किसी को अपने या अपने संबंधों के लिए कोई अच्छा ओहदा दिलाने की धुन थी तो वो मिस जोशी की आराधना करता था। सरकारी इमारतों के ठेके, नमक, शराब, अफीम, सारी सरकारी चीजों के ठेके, लोहे, लकड़ी, कलपुर्जे, इन सब के ठेके सब मिस जोशी ही के हाथों में थे। जो कुछ करती थी वही करती थी, जो कुछ होता था उसी के हाथों होता था। जिस वक्त वो अपनी अरबी घोड़ों की फिटन पर सैर करने निकलती थी तो रईसों की सवारियां आप ही आप रास्ते से हट जाती थीं। बड़े बड़े दुकानदार खड़े हो होकर सलाम करने लगते थे। वो रूपवती थी, लेकिन नगर में उससे बढ़कर रूपवती रमणियां भी थीं। वो सुशिक्षिता थी, वाकपटु थी, गाने में निपुण, हंसती तो अनोखी छवि से, बोलती तो निराली छटा से, ताकती तो बांकी चितवन से, लेकिन इन गुणों में उसका एकाधिपत्य न था। उसकी प्रतिष्ठा, शक्ति और कीर्ति का कुछ और ही रहस्य था। सारा नगर ही नहीं, सारे प्रांत का बच्चा बच्चा जानता था कि बंबई के गवर्नर मिस्टर जोहरी मिस जोशी के बिना दामों के गुलाम हैं। मिस जोशी की आंखों का इशारा उनके लिए नादिरशाही हुक्म है। वो थिएटरों में, दावतों में, जलसों में मिस जोशी के साथ साए की भांति रहते थे और कभी कभी उनकी मोटर रात के सन्नाटे में मिस जोशी के मकान से निकलती हुई लोगों को दिखाई दे जाती थी। इस प्रेम में वासना की मात्रा अधिक है या भक्ति की, ये कोई नहीं जानता। लेकिन मिस्टर जोहरी विवाहित हैं और मिस जोशी विधवा, इसलिए जो लोग उनके प्रेम को कलुषित कहते हैं वे उन पर कोई अत्याचार नहीं करते। बंबई की व्यवस्थापिका सभा ने अनाज पर कर लगा दिया था और जनता की ओर से उसका विरोध करने के लिए एक विराट सभा हो रही थी। सभी नगरों से प्रजा के प्रतिनिधि उसमें सम्मिलित होने के लिए हजारों की संख्या में आए थे। मिस जोशी के विशाल भवन के सामने चौड़े मैदान में

हरी हरी घास पर बंबई की जनता अपनी फरियाद सुनाने के लिए जमा थी। अभी तक सभापति न आए थे, इसलिए लोग बैठे बैठे गपशप कर रहे थे। कोई कर्मचारियों पर आक्षेप करता था, कोई देश की स्थिति पर, कोई अपनी दीनता पर। अगर हम लोगों में अकड़ने का जरा भी सामर्थ्य होता तो मजाल थी कि ये कर लगा दिया जाता, अधिकारियों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता। अरे हमारा जरूरत से ज्यादा सीधापन हमें अधिकारियों के हाथों का खिलौना बनाए हुए है। वे जानते हैं कि इन्हें जितना दबाते जाओ उतना दबते जाएंगे, सिर नहीं उठा सकते। सरकार ने भी उपद्रव की आशंका से सशस्त्र पुलिस बुला ली थी। उस मैदान के चारों कोनों पर सिपाहियों के दल डेरा डाले हुए थे। उनके अफसर घोड़ों पर सवार, हाथ में हंटर लिए जनता के बीच में निशंक भाव से घोड़े दौड़ाते फिर रहे थे। मानो साफ मैदान है। मिस जोशी के ऊंचे बरामदे में नगर के सभी बड़े बड़े रईस और राज्य अधिकारी तमाशा देखने के लिए बैठे हुए थे। मिस जोशी मेहमानों का आदर सत्कार कर रही थीं और मिस्टर जौहरी आराम कुर्सी पर लेटे इस जन समूह को घृणा और भय की दृष्टि से देख रहे थे। अचानक सभापति महाशय आपटे एक किराए के तांगे पर आते हुए दिखाई दिए। चारों तरफ हलचल मच गई। लोग उठ उठकर उनका स्वागत करने दौड़े और उन्हें लाकर मंच पर बिठा दिया। आपटे की अवस्था 30-35 वर्ष की रही होगी। दुबले पतले आदमी थे, मुख पर चिंता का गाढ़ा रंग चढ़ा हुआ था, बाल भी पक चले थे, मुख पर सरल हास्य की रेखा झलक रही थी। वो एक सफेद मोटा कुर्ता पहने हुए थे, न पाँव में जूते थे न सिर पर टोपी। इस अर्धनग्न दुर्बल निस्तेज प्राणी में न जाने कौन सा जादू था कि समस्त जनता उसकी पूजा करती थी, उसके पैरों पर सिर रगड़ती थी। इस एक प्राणी के हाथों में इतनी शक्ति थी कि वो क्षण मात्र में सारी मिलों को बंद करा सकता था, शहर का सारा कारोबार मिटा सकता था। अधिकारियों को उसके भय से नींद न आती थी, रात को सोते सोते चौंक पड़ते थे। उससे ज्यादा भयंकर जंतु अधिकारियों की दृष्टि में दूसरा न था। यह प्रचंड शासन शक्ति उस एक हड्डी के आदमी से थर थर कांपती थी, क्योंकि उस हड्डी में एक पवित्र, निष्कलंक, बलवान और दिव्य आत्मा का निवास था। आपटे ने मंच पर खड़े होकर पहले जनता को शांत चित्त रहने और अहिंसा व्रत पालन करने का आदेश दिया, फिर देश की राजनीतिक स्थिति का वर्णन करने लगे। सहसा उनकी दृष्टि सामने मिस जोशी के बरामदे की ओर गई तो उनका प्रजा दुख पीड़ित हृदय तिलमिला उठा। वे लोग इन अभागों को देख देख हंसते और तालियां बजाते थे। जीवन में पहली बार आपटे की जबान काबू से बाहर हो गई। मेघ की भांति गरज कर बोले, इधर तो हमारे भाई दाने दाने को मोहताज हो रहे हैं, उधर अनाज पर कर लगाया जा रहा है केवल इसलिए कि राज कर्मचारियों के हलवे पूरी में कमी ना हो। हम जो देश के राजा हैं, जो छाती फाड़ कर धरती से धन निकालते हैं, भूखों मरते हैं, और वे लोग जिन्हें हमने अपने सुख और शांति की व्यवस्था करने के लिए रखा है, हमारे स्वामी बने हुए हैं, शराबों की बोतलें उड़ाते हैं। कितनी अनोखी बात है कि स्वामी भूखों मरें और सेवक शराब उड़ाएं, मेवे खाएं और इटली और स्पेन की मिठाइयां चलें। यह किसका अपराध है? क्या सेवकों का? नहीं, कदापि नहीं, हमारा ही अपराध है। हमने अपने सेवकों को इतना अधिकार दे रखा है। आज हम उच्च स्वर में कह देना चाहते हैं कि हम यह क्रूर और कुटिल व्यवहार सह नहीं सकते। यह हमारे लिए असह्य है कि हम और हमारे बाल बच्चे दानों को तरसें और कर्मचारी लोग विलास में डूबे हुए हमारे करुण क्रंदन की जरा भी परवाह न करते हुए विहार करें। यह असह्य है कि हमारे घरों में चूल्हे न जलें और कर्मचारी लोग थिएटरों में ऐश करें, नाच रंग की महफिलें सजें, दावतें उड़ाएं, वेश्याओं पर कंचन की वर्षा करें। संसार में ऐसा और कौन देश होगा जहां प्रजा तो भूखों मरती हो और प्रधान कर्मचारी अपनी प्रेम क्रीड़ाओं में मग्न हो, जहां स्त्रियां गलियों में ठोकरें खाती फिरती हो। एकाएक सशस्त्र सिपाहियों के दल में हलचल पड़ गई। उनका अफसर हुक्म दे रहा था, सभा भंग कर दो, नेताओं को पकड़ लो, कोई न जाने पाए यह विद्रोह।

भावनात्मक व्याख्यान है। मिस्टर जौहरी ने पुलिस के अफसरों को इशारे से बुलाकर कहा, और किसी को गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं, आप टेको ही पकड़ो, वही हमारा शत्रु है। पुलिस ने डंडे चलाने शुरू किए। कई सिपाहियों के साथ जाकर अफसर ने आपटे को गिरफ्तार कर लिया। जनता ने त्योरियां बदली। अपने प्यारे नेता को यूं गिरफ्तार होते देखकर उनका धैर्य हाथ से जाता रहा, लेकिन उसी वक्त आपटे की ललकार सुनाई दी, तुमने अहिंसा का व्रत लिया है और अगर किसी ने उस व्रत को तोड़ा तो उसका दोष मेरे सिर होगा। मैं तुमसे सविनय अनुरोध करता हूं कि अपने अपने घर जाओ। अधिकारियों ने वही किया है जो हम समझते थे कि वो करेंगे। इस सभा से हमारा जो उद्देश्य था वो पूरा हो गया। हम यहां बलवा करने नहीं, केवल संसार की नैतिक सहानुभूति प्राप्त करने के लिए जमा हुए थे और हमारा उद्देश्य पूरा हो गया। एक क्षण में सभा भंग हो गई और आपटे पुलिस की हवालात में भेज दिए गए। मिस्टर जौहरी ने कहा, बच्चा बहुत दिनों के बाद पंजे में आए हैं। राजद्रोह का मुकदमा चलाकर कम से कम 10 साल के लिए अंडमान भेजूंगा। मिस जोशी ने कहा, इससे क्या फायदा? क्यों, उसको अपने किए की सजा मिल जाएगी। मिस्टर जौहरी के ये कहने पर मिस जोशी ने कहा, लेकिन सोचिए हमें उसका कितना मूल्य देना पड़ेगा। अभी जिस बात को गिने गिनाए लोग जानते हैं वो सारे संसार में फैलेगी और फिर हम कहीं मुंह दिखाने के लायक न रहेंगे। आप अखबारों के संवाददाताओं की जबान तो बंद नहीं कर सकते ना। इस पर मिस्टर जौहरी ने कहा, कुछ भी हो मैं इसे जेल में सड़ाना चाहता हूं। अरे कुछ दिनों के लिए तो चैन की नींद नसीब होगी, बदनामी से तो डरना ही व्यर्थ है। हम प्रांत के सारे समाचार पत्रों को अपने सदाचार का राग अलापने के लिए मोल ले सकते हैं। हम प्रत्येक लांछन को झूठ साबित कर सकते हैं। आपटे पर मिथ्या दोषारोपण का अपराध लगा सकते हैं। नहीं, मैं इससे सहज उपाय बतला सकती हूँ। आपटे को मेरे हाथ छोड़ दीजिए, मैं उससे मिलूंगी और उन यंत्रों से जिनका प्रयोग करने में हमारी जाति सिद्ध हस्त है उसके आंतरिक भावों और विचारों की थाह लेकर आपके सामने रख दूंगी। मैं ऐसे प्रमाण खोज निकालना चाहती हूँ जिनके उत्तर में उसे मुंह खोलने का साहस ना हो और संसार की सहानुभूति उसके बदले हमारे साथ हो। चारों ओर से यही आवाज आए कि ये कपटी और धूर्त था और सरकार ने उसके साथ वही व्यवहार किया है जो होना चाहिए। मुझे विश्वास है कि वो षड्यंत्रकारियों का मुखिया है और मैं इसे सिद्ध कर देना चाहती हूँ। मैं उसे जनता की दृष्टि में देवता नहीं बनाना चाहती, उसको राक्षस के रूप में दिखाना चाहती हूँ। ये काम इतना आसान नहीं है जितना तुमने समझ रखा है। आपटे राजनीति में बड़ा चतुर है, मिस्टर जौहरी ने शंकित होकर कहा। तो मिस जोशी ने कहा, ऐसा कोई पुरुष नहीं है जिस पर युवती अपनी मोहनी न डाल सके। मिस्टर जौहरी ने हंसते हुए कहा, अगर तुम्हें विश्वास है कि तुम ये काम कर पाओगी तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं तो केवल उसे दंड देना चाहता हूं, तो हुक्म दे दीजिए कि वो इसी वक्त छोड़ दिया जाए। मिस जोशी ने कहा, जनता कहीं ये तो न समझेगी कि सरकार डर गई। मिस्टर जौहरी थोड़े से शंकित होकर कह रहे थे, नहीं नहीं, मेरे ख्याल में तो जनता पर इस व्यवहार का बहुत अच्छा असर पड़ेगा। लोग समझेंगे कि सरकार ने जनमत का सम्मान किया है। मिस जोशी ने कहा, लेकिन तुम्हें उसके घर जाते लोग देखेंगे तो मन में क्या कहेंगे? मिस्टर जौहरी ने कहा, मैं नकाब डालकर जाऊंगी, किसी को कानो कान खबर ना होगी। मुझे तो अब भी भय है कि वो तुम्हें संदेह की दृष्टि से देखेगा और तुम्हारे पंजे में ना आएगा। लेकिन खैर, तुम्हारी इच्छा है तो आजमा देखो। ये कहकर मिस्टर जौहरी ने मिस जोशी को प्रेममय नेत्रों से देखा, हाथ मिलाया और चले गए। आकाश पर तारे निकले हुए थे, चैत की शीतल सुखद वायु चल रही थी। सामने के चौड़े मैदान में सन्नाटा छाया हुआ था। मिस जोशी को ऐसा मालूम हुआ मानो आपटे मंच पर खड़ा बोल रहा है। उसका शांत सौम्य विषाद

0: अपने स्वरूप उसकी आंखों में समाया हुआ था।
1: सुनो कहानी के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी विश्वास का पहला भाग। इसका दूसरा भाग आपको सुनवाएंगे अगले हफ्ते हवा महल के अंतर्गत सुनो कहानी में। वाचन स्वर था अमरकांत दुबे का। इस कार्यक्रम में प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हर्षवर्धन गवई।
2: सुनो कहानी।

0: श्रोताओं, गीत आपने सुना फिल्म दौड़ से। आवाज़ें रानू मुखर्जी, सोनू निगम और नीरज बोहरा की थी। गीत के बोल महबूब के और संगीत एआर रहमान का।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
2: देखो जी बहार आई, बाहों में
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत। हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म जुग जुग जियो से। आवाजें कनिष्क सेठ और कविता सेठ की थी। गीत के बोल पारंपरिक और संगीत कनिष्क सेठ और कविता सेठ का ही था।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल जाने सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: समय है एक छोटे से अंतराल का।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
3: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
3: सदा रही है।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
4: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
5: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।
4: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
5: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिप विनिर्माण इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए गुजरात के सांसद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट सुविधा का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत ने समय पर लिए गए फैसलों, प्रभावी कूटनीति और राष्ट्रीय संसाधनों के उचित प्रबंधन से पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत ने रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से अधिक की रक्षा सामग्री निर्यात की। महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, नदियां उफान पर। और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने मेजबान इंग्लैंड को 191 रन का लक्ष्य दे दिया है। वैभव सूर्यवंशी सबसे कम उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। और विस्तार से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सांसद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि सांसद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी।
1: मुझे बताया गया है कि अभी यहां से हर साल 20 करोड़ चिप्स निकलेगी और मुझे बताया गया आप सभी यहीं नहीं रुकने वाले हैं। आपने हर साल 500 करोड़ चिप्स का लक्ष्य रखा है, यानी हर दिन 1.5 करोड़ से ज्यादा। मेरा पक्का विश्वास है कि आप उसे बहुत जल्द हासिल करके रहेंगे।
0: श्री मोदी ने कहा कि ये विकास भारत की जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया। उन्होंने कहा कि सांसद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर संयोजन और जांच केंद्र, घरेलू चिप निर्माण व्यवस्था मजबूत होने के साथ तकनीकी आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा देगा और वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में भारत की स्थिति में इससे सुधार होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
1: भारत ने

0: हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
1: इस अवसर पर

0: इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस वर्ष के अंत तक भारत में 5 सेमीकंडक्टर संयंत्र चालू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि सारण संयंत्र केवल 27 महीने में पूरा हो गया।
1: आज भारत का तीसरा सेमीकंडक्टर प्लांट चालू हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 28 फरवरी को पहला प्लांट चालू किया और 31 मार्च को दूसरा प्लांट चालू किया और आज 4 जुलाई को तीसरा प्लांट। जिस तेजी से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में 12 प्लांट अप्रूव किए और 12 प्लांट में से 3 में कॉमर्शियल प्रोडक्शन चालू हुआ, आज दुनिया भर में भारत की सेमीकंडक्टर क्षमता पर एक नया विश्वास उठ खड़ा हुआ है।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि संयंत्र में निर्मित चिप का उपयोग कारों, स्कूटरों और कई तरह के औद्योगिक कार्यों में किया जाएगा। ये चिप जापान, अमरीका और यूरोप भेजी जाएंगी और इससे भारतीय प्रौद्योगिकी को दुनिया भर में पहचान मिलेगी। इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रूपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के चरण 2 की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश के सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर को राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या खनिजों के लिए एक औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। श्री मोदी ने कहा कि पचपदरा रिफाइनरी भारत को एक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक परियोजना है।
2: ये रिफाइनरी यहाँ हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। आज का दिन साक्षी है कि बीजेपी सरकारें परियोजनाओं को सिर्फ शिलान्यास करके नहीं छोड़ती है, बल्कि हम उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी दिन रात एक कर देते हैं।
0: श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 54,000 नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये सत्र राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णयों पर केंद्रित होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का रक्षा निर्यात 38,000 करोड़ रूपये के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। नई दिल्ली में कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने ये जानकारी दी।
3: आज हमारा डिफेंस प्रोडक्शन मोर देन 1,78,000 करोड़ पहुंच चुका है। 7-8 साल 9 साल पहले तक हमारा ये डिफेंस प्रोडक्शन अप्रॉक्सिमेटली 46,000 करोड़ था। डिफेंस एक्सपोर्ट भी रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गया है। और मैं आपको बतलाना चाहूंगा 2013 और 14 में यह केवल 686 करोड़ था, जो आज यह बढ़कर 57 टाइम्स बढ़ चुका है।
0: नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा है कि संशोधित उड़ान योजना का शुभारंभ भारत की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी यात्रा के अगले अध्याय का परिचायक है। श्री नायडू ने कहा कि 28,840 करोड़ रुपए से अधिक के बजट आवंटन के साथ प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की गई ये योजना टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में कनेक्टिविटी को और मजबूत बनाएगी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य रोकथाम, जागरूकता पैदा करना, क्षमता निर्माण, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य जागरूकता, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण के जरिए मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकना है। ऑटोमोबाइल उद्योग के विशेषज्ञों ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को एक सुनियोजित, चरणबद्ध और वैज्ञानिक रूप से संचालित प्रक्रिया के जरिए लागू किया गया है। नई दिल्ली में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की प्रबंध निदेशक वर्तिका शुक्ला ने कहा कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम 2000

2018 में संरचित चर्चा और हितधारकों के परामर्श के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में रखा गया था। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स के प्रमुख और कार्यकारी उपाध्यक्ष विक्रम गुलाटी ने कहा कि एथेनॉल एक स्वच्छ ईंधन है, ये अच्छी परिचालन क्षमता और तेज गति प्रदान करता है। सरकार ने व्यापक पायरेसी की खबरों के बीच मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और ओटीटी कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। टेलीग्राम को 15 दिन के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में लगातार मूसलाधार बारिश से सामान्य जनजीवन प्रभावित है। प्रशासन हाई अलर्ट पर है। वर्षा के कारण मुंबई, ठाणे, रायगढ़ और पालघर, गोंदिया, भंडारा, धुले, नासिक और पुणे के कई हिस्से प्रभावित हुए हैं। मुंबई, ठाणे और पालघर में स्कूल बंद करने पड़े। पालघर जिले में बाढ़ जैसे हालात हैं। रायगढ़ में सावित्री, कुंडलिका और उल्लास नदियां उफान पर हैं। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के लिए मुंबई, ठाणे, पालघर और पुणे तथा सतारा के लिए वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमरीका की स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमरीका के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने कहा है कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी, लोकतंत्र, सुशासन और लोगों की असीम क्षमता में साझा विश्वास पर आधारित है। प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। वैश्विक शांति अभियानों में भारत के दीर्घकालिक योगदान को एक महत्वपूर्ण मान्यता मिली है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में कल संयुक्त राष्ट्र के अधीन सेवारत 651 भारतीय सेना के कर्मियों को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के अंतर्गत भारतीय दल की व्यावसायिकता, परिचालन उत्कृष्टता और समर्पित सेवा को सम्मानित किया गया। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद अली खमेनेई के 6 दिन का राष्ट्रव्यापी अंतिम संस्कार आज सुबह तेहरान में शुरू हुआ। ईरान के दिवंगत नेता को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हजारों शोक संतप्त लोग एकत्रित हुए थे। हवाई हमले में मारे गए परिवार के सदस्यों के साथ रखे गए खमेनेई के ताबूत को देखकर शोक संतप्त लोगों ने प्रार्थना की। ईरान के वरिष्ठ नेता, सैन्य कमांडर और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने खमेनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। मैनचेस्टर में भारत ने इंग्लैंड को दूसरे T20 क्रिकेट मैच में 191 रन का लक्ष्य दे दिया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 190 रन बनाए। ईशान किशन ने सर्वाधिक 49 और अभिषेक शर्मा ने 43 रन बनाए। भारतीय टीम में संजू सैमसन की जगह वैभव सूर्यवंशी को शामिल किया गया है। वैभव 15 वर्ष 99 दिन की उम्र में भारत के डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 के पहले मैच में आज रात 10:30 कनाडा का सामना मोरक्को से होगा। एक अन्य मुकाबले में तड़के 2:30 पैराग्वे का मुकाबला फ्रांस से होगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने देश में लीवर की महामारी और टाइप 2 मधुमेह से निपटने के लिए राष्ट्रीय मिशन को शुरू करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में डॉक्टर सिंह ने कहा कि ये रोग अब पहले की तुलना में कम उम्र के लोगों में भी देखे जा रहे हैं। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिप विनिर्माण इकोसिस्टम

0: को मजबूत करने के लिए गुजरात के सांड में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमी कंडक्टर असेंबली और टेस्ट सुविधा का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत ने समय पर लिए गए फैसलों, प्रभावी कूटनीति और राष्ट्रीय संसाधनों के उचित प्रबंधन से पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत ने रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से अधिक की रक्षा सामग्री निर्यात की। और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने मेजबान इंग्लैंड को 191 रन का लक्ष्य दे दिया है। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आपके लिए।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में। ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
2: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
2: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

0: श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म हाईवे से, आवाज़ ए आर रहमान की थी। गीत के बोल इरशाद कामिल के और संगीत ए आर रहमान का।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है, तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
3: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से,
3: सदा रही है सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत, सिर्फ विविध भारती पर।

0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
1: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
1: तेरा जवाब नहीं।
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
1: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
1: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। आज के फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रही हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हूँ, जंप कर जाती हूँ। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

अमित व्यास का जन्म राजस्थान के चुरू बीकानेर में हुआ। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद भरत व्यास बीकॉम करने के लिए कलकत्ता चले गए। पढ़ाई के दौरान ही भरत व्यास ने तय कर लिया था कि वो फिल्मी दुनिया में बतौर निर्देशक काम करेंगे। इसीलिए 1940 में वो बम्बई आ गए, जो अब मुंबई कहलाती है। कोशिश तो उन्होंने निर्देशक बनने की

0: परंतु उनके भाग्य में कुछ और ही लिखा था।
1: अरे कवि राजा कविता के मत अब कान मरोड़ो, कवि राजा कविता के मत अब कान मरोड़ो, धंधे की कुछ बात करो कुछ पैसे जोड़ो। शेर शायरी कवि राजा ना काम आएगी, कविता की कोठी को दीमक खा जाएगी। भाव चढ़ रहे नाज हो रहा महंगा, दिन दिन भूख मरोगे रात कटेगी तारे गिन गिन। इसीलिए कहता हूँ भैया ये सब छोड़ो, धंधे की कुछ बात करो कुछ पैसे।
0: भरत व्यास निर्देशक तो नहीं गीतकार जरूर बन गए। उन्हें पहली फिल्म मिली 1943 में दुहाई। इसी साल संगीतकार एस के पाल ने उनसे कुल 10 गीत लिखवाए फिल्म प्रेम संगीत के लिए। इस फिल्म में भरत व्यास ने एक दो गीत गाए भी, जैसे मैं आगरे से जूता लाया रे, शांता ठक्कर के साथ इस गीत को गाया, और दूसरा गीत था घायल करके हमसे पूछती हो। अपनी धरती अपना ही आकाश पैदा कर, अपनी मेहनत से अपना ही जहां तैयार कर, ये भरत व्यास के अपने विचार थे। सफलता पाने का उनका यही मंत्र था और इस पर उन्होंने पूरी तरह से अमल भी किया। इसीलिए हिंदी फिल्म संगीत जगत में भरत व्यास ने अपनी कलम अपने गीतों के दम पर एक अलग पहचान बनाई।

भरत व्यास ने 1943 में एक देशभक्तिपूर्ण गीत लिखा फिल्म स्कूल मास्टर के लिए, संगीतकार नीनू मजूमदार के लिए, हमारा प्यारा हिंदुस्तान। 1944 में फिल्म मन की जीत के लिए उनके लिखे गीत पॉपुलर हुए। एक गीत शांता ठक्कर के साथ भरत व्यास ने भी गाया, छिप छिप कर मत देखो।

अपने फिल्मी जीवन में भरत व्यास ने लगभग सभी स्थापित और बड़े संगीतकारों के लिए गीत लिखे। भरत व्यास के लिखे गीत भजन सभी बेहद पसंद किए गए।

सन 1950 और 1960 के दशक में गीतकार भरत व्यास ने जिन संगीतकारों के लिए गीत लिखे उनमें कुछ चर्चित फिल्मों के नाम हम आपको बताते हैं। संगीतकार अनिल बिस्वास के लिए बड़ी बहू, अंगू।

संगीतकार अविनाश व्यास के लिए अंधेर नगरी चौपट राजा द्वारकाधीश राम लक्ष्मण, संगीतकार बी एन बाली के लिए बागी सरदार राजा विक्रम, संगीतकार सी रामचंद्र के लिए स्त्री दाल में काला कारीगर नवरंग।

संगीतकार दत्ताराम के लिए बालक, संगीतकार हंसराज बहल के लिए नखरे, राजपूत, जग्गू, अपनी इज्जत, संगीतकार हेमंत कुमार के लिए सहारा, फैशन।

संगीतकार इकबाल कुरैशी के लिए चा चा चा, जमाल सेन के लिए पतित पावन, कल्याण जी वीर जी शाह इनके लिए बेदर्द जमाना क्या जाने, और सम्राट चंद्रगुप्त

रोशन के लिए आगरा रोड, सरदार मलिक के लिए रूप सुंदरी, नाग मोहिनी और सारंगा।

वसंत देसाई के साथ जिन फिल्मों के लिए उन्होंने गीत लिखे वो सभी की सभी फिल्में बेहद मकबूल रहीं और गीत भी आज तक लोगों की जबान पे हैं। लड़की सही

हमने यहाँ पूरी लिस्ट प्रस्तुत नहीं की है क्योंकि भरत व्यास के लिखे गीत जिन फिल्मों में हैं, अगर सिर्फ उनके ही नाम लिए जाएं तो भी इस कार्यक्रम का समय कम पड़ेगा।

अनेकों कर्णप्रिय मधुर गीतों के इस रचयिता भरत व्यास ने 4 जुलाई 1983 को मुंबई में अंतिम सांस ली और अपने पीछे छोड़ गए एक सुरीली विरासत।

0: गीतकार भरतव्याज पर केंद्रित आज के इस कार्यक्रम में हमें प्रस्तुति सहयोग मिला आकांक्षा सिंह से। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले, आलेख और स्वर अमरकांत का। अब नमस्ते।
1: आज के फनकार।

0: हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। छाया गीत के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे देव दर्शन दू।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वीको वज्रदंती पेस्ट।

नमस्कार साथियों, मैं हूं आरती श्रीवास्तव। प्रस्तुत है छाया गीत। शाम ढली और चांद निकल आया, मैंने पलकी मूंदी और तेरा चेहरा नजर आया। हर अंदाज था जुदा, हर अदा थी निराली, बहुत भा रही थी मुझे ये खुमारी। तेरे जलवों में खोया रहूं, तेरी पनाहों में सोया रहूं, तेरी बाहों में ही मेरी रात गुजरे, दिन जो भी गुजरे अब तेरे साथ गुजरे। न वक्त की परवाह है मुझे अब, न जिंदगी की फिक्र है, तू ही मेरी मंजिल है, मेरी सांसों में बस तेरा ही जिक्र है।

0: गूंज इन्होंने सुनी थी। आज धूप की किरणें ज्यादा ही सुनहरी हैं। शायद तुम्हारी मखमली जुल्फों को छूकर ही वो यहां आई हैं। चांदनी को ओढ़कर जब तुम निकलती हो सरे शाम, सारे दिए जल उठते हैं और दिल पुकारता है बस तुम्हारा ही नाम।
1: न झटको जुल्फ से पा

अंतराल के बाद आप सबका स्वागत है छाया गीत में। तुम्हारी हसीन यादों का सफर अक्सर मुझे भीड़ में भी तन्हा कर देता है, फिर बस मैं होता हूं और तुम्हारी खूबसूरत याद। तपता रेगिस्तान भी मुझे ठंडी झील सा लगने लगता है और मैं एक मुसाफिर सा उसके किनारे बैठकर तुम्हें सोचता हूं। फिर बस मैं होता हूं और तुम्हारी खूबसूरत याद। जिंदगी जब थकाने लगती है तो तुम्हारी खुशबू का असर कुछ ऐसा होता है कि हर रास्ता छोटा लगता है, हर मंजिल आसान लगती है। मैं चल पड़ता हूँ फिर से उठकर तुम्हारी उसी खुशबू और खूबसूरत याद को आंखों में समेटे।

0: एक रंग तुम्हारी निगाहों का, एक रंग तुम्हारी अदाओं का, एक रंग तुम्हारे लबों का, एक रंग तुम्हारे गालों का। उस रंग में रंगी हो तुम, उस रंग में रंगा हूं मैं, उस रंग में रंगी हैं हसरतें हमारी, उस रंग में उलझी हैं जुल्फें तुम्हारी, उस रंग में रंगी हैं ये वादियां, उस रंग में खिली हैं कलियां। कहते हैं उसे रंग इश्क का, कुछ मदहोशी का, कुछ सुर्ख सा
1: रंग

तुम्हारी एक एक अदा को पलकों में कैद कर लिया। तुम्हारे हुस्न के साए में है अब मेरी मंजिल, तुम्हें देखकर तुम में ही मैं जी लिया। जब भी शाम आती है तुम्हारी खुशबू सी महक जाती है, जब भी सुबह होती है तुम्हारी सांसों में धुल जाती है। कभी मोहब्बत की आहटों सी तुम गूंज उठती हो, कभी मत भरी शामों सी बहक जाती हो, कभी गुनगुनी धूप बनकर सहला जाती हो, कभी चांदनी बनकर धड़कनों को बहला जाती हो। पास आती हो तो जिंदगी बन जाती हो, दूर जाती हो तो बंदगी बन जाती हो।

0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक वीको नारायण जेल दर्द की जड़ तक जाए, लंबा आराम दिलाए।
2: साधारण जेल सिर्फ ऊपर से दर्द हटाए, यानी दर्द फिर लौट कर आए, वही वीको नारायणी जेल जिसमें 16 जड़ी बूटियां समाए, दर्द के जड़ तक जाए, लंबा आराम दिलाए।
3: वीको नारायणी जेल जड़ तक जाए, लंबा आराम दिलाए।

जमीन पर। ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पर रुमाल रख दो, बस समझ जाओ।

0: नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सानंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि सानंद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। श्री मोदी ने कहा कि ये विकास भारत की जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस वर्ष देश के अंत तक भारत में 5 सेमीकंडक्टर संयंत्र चालू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये संयंत्र केवल 27 महीने में तैयार हो गया। इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश के सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या खनिजों के लिए एक औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 54,000 नव नियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोबो सुबियंतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रोबोबो सुबियंतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्रालय ने मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है। ये एक व्यापक ढांचा है जिसका उद्देश्य रोकथाम, जागरूकता पैदा करना, क्षमता निर्माण, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य जागरूकता, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण के माध्यम से मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकना है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद अली खामनेई के 6 दिन का राष्ट्रव्यापी अंतिम संस्कार आज सुबह तेहरान में शुरू हुआ। ईरान के दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हजारों शोक संतप्त लोग एकत्रित हुए। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। वैभव सूर्यवंशी 15 वर्ष 99 दिन की उम्र में भारत के लिए डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Renuka. Prime Minister Narendra Modi today inaugurated CG Semi's state-of-the-art outsourced

हुए हैं। हमारी आज की ये सभा अब संपन्न होती है। सवेरे 5:53 पर आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।

जब कोई कांवरिया महादेव को भोले बम रूप में पुकारता निहारता हुआ अग्रसर होता है, तब महादेव का मन प्रसन्नता से खिल उठता है।